0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: रात कभी कभी।
1: अगर ट्वेल्थ के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
2: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: हेलो जी, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और आज का जो ये सेशन है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ जुड़े ऐसी एक्सपर्ट जिनको सुन के ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। शी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी बिकॉज ये इतने अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन करती है और साथ ही साथ हमारे आसपास के लोगों को भी मेंटेन करके रखती है भाई साहब, क्योंकि किसी की स्माइल अच्छी बनाती है, किसी की स्किन अच्छी बनाती है, किसी के बालों को अच्छा बनाती है। एंड मतलब शी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। एंड किनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी आवाज आप सुनेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, वेरी वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी। एंड इनके बारे में मैं क्या बोलूं यार, मुझे लगता है कि मुझे नहीं अब इनको बोलना चाहिए। सो डॉक्टर दिशा जग्गी मेरे साथ मौजूद है। हेलो मैम।

0: आपकी आवाज से मेरी वो नहीं अटेंशन नहीं हटती है.
1: मैम थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू फॉर द बिग कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम सो हैप्पी एंड स्पेशली नाइस टॉकिंग टू यू. मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी आपका देखता रहता हूँ और आज आपसे बात कर रहा हूँ. आई एम सुपर हैप्पी.
0: My pleasure.
1: थैंक यू सो मच. अच्छा मैम, आज तमाम लोग आपको सुन रहे हैं हमारे रेडियो स्टेशन के थ्रू, थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस को.
0: हाँ जी, मैंने अपना एस्थेटिक मेडिसिन एंड एंटी एजिंग मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी लंदन से किया है, अलॉन्ग विद

0: on Google and on Instagram. You can find me.
1: That's very amazing, wonderful introduction, ma'am. Seriously. So, ma'am, शुरू करते हैं आज का सिलसिला. सबसे पहला questions मेरा यही होगा आपसे. ma'am, आजकल ना Instagram का जमाना है, digital platform है, आपको भी पता है. Instagram पे जैसे हम Instagram on करते हैं, हजारों deals हमारे पास आ जाते हैं. Specially आप ये वाला formula आजमा लो, आप ये वाली remedies follow करो, चाहे skin से related हो या बालों से related हो. और कई बार लोग वो इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो कितना ज्यादा हमारे लिए सही होता है और कितना ज्यादा wrong होता है. आजकल audience को पता नहीं है, वो कुछ भी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो follow कर रहे हैं.
0: तो देखो, आई विल नॉट से कि ऑल होम रेमेडीज आर रॉन्ग. मैं एक जनरलाइज चीज नहीं बोल सकती, या एक जो होम रेमेडी है वो सबको सूट करेगी, मैं वो भी नहीं बोल सकती. सो सी दिस, अगर आपकी ड्राई स्किन है, सो यू नो समथिंग लाइक अ मसूर की दाल, बेसन विल हेल्प यू आउट टू रिड्यूस योर ऑयल सिक्रीशंस एंड थिंग्स लाइक दैट. कि हल्दी लगा लिया, एंड देन जो ड्राई स्किन टाइप्स हैं उन्होंने अगर कर्ड के साथ में कुछ लगा लिया, कर्ड के साथ मिक्स करके, सो दैट विल ऑब्वियसली हेल्प देम आउट. बट अगेन, हर किसी की स्किन सेंसिटिव होती है. अगर सेंसिटिव स्किन है तो उनको हनी और इवन एलोवेरा से एलर्जी हो सकती है. आई हैव सीन ब्राइड्स जो आती हैं, हल्दी लगाया रात को या नेक्स्ट डे शादी है एंड पूरा फेस बर्न हो गया. क्योंकि पहले के जमाने में जो हल्दी थी और आज के जमाने में जो हल्दी मिल रही है, द थिंग्स हैव चेंज्ड. तो अब उतनी क्लीन सामान हमें मार्केट में नहीं मिल रहा. अंटिल अनलेस आपका खुद का कोई फार्म है या जहाँ से आप सामान लेकर आ रहे हो, पिसवा रहे हो, तो एक अलग चीज होती है. बट अगर नहीं है, सो इट इज बेटर आप वहाँ उस चीज पे स्टिक करें जहाँ पे आपको पता है कि थिंग्स विल नॉट रिएक्ट टू योर स्किन.
1: दैट्स वेरी नाइस मैम. अच्छा मैम, आजकल आपको पता है ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर दूसरे इंसान को हेयर प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है. और आई थिंक इसका रीजन में मुझे लगता है कि आजकल का लाइफस्टाइल भी है, बिकॉज इतने लोग इतना बिजी हो गए हैं अपनी लाइफस्टाइल में, लोग उनको पता ही नहीं है कि हमें खुद के लिए भी समय निकालना है, अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आपको. मैम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: सी नाउ, स्किन का जो हेयर के इश्यूज है, एज यू स्पेसिफिकली मेंशनिंग, तो बाल सिर्फ हमारा, देखो पहले जो जनरेशन था जिसको ये अफेक्ट करता था वो जनरली 40-45 प्लस था.
1: करेक्ट.
0: जैसे अगर जिनको गंजापन आ रहा है तो क्या हो गया था, एक बहुत एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी था कि ठीक है गंजापन है कोई बात नहीं, अब तो उम्र हो गई. अब क्या है, पीपल इन देयर 20s आर हैविंग हेयर फॉल, पीपल इन देयर 30s आर हैविंग हेयर फॉल, जिनकी शादी नहीं हुई है, दे आर स्टार्ट फिनिशिंग कॉलेज, बॉयज गर्ल्स, और उनको मैसिव हेयर फॉल है. और ये सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एक इसमें रीजन होता है, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12 एंड आयरन प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं सीरम फेरेटिन, और TIBC दैट इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, और थायराइड. ये तीन चार टेस्ट आप अगर अपने करा लेते हैं तो आपको अपने स्टेटस, स्किन के अंदर का या बॉडी के अंदर का स्टेटस पता चलता है कि डेफिशिएंसीज किसकी है. अगर ये सारी चीजें आपकी ठीक है सपोज, देन हार्मोनल रीजन एक और होता है.

0: हो रहा होगा, देयर विल बी एम शेप पैटर्न. एक एम शेप का पैटर्न फॉलो करेगा आगे से स्कैल्प पीछे, मतलब फोरहेड और सर के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो हेयरलाइन खत्म होती जाएगी, बोलते हैं रिसीडिंग हेयरलाइन.
1: ऑलराइट
0: राइट. सो वो हार्मोनल पैटर्न है. सो किस वजह से हो रहा है हमें वो पैटर्न फाइंड आउट करना होता है. न्यूट्रिशनल बेस्ड है, हार्मोनल बेस्ड है, एंड कई बार होता है हमारे गट में इश्यूज होते हैं कि हम दवा तो खा रहे हैं मगर बॉडी अब्सॉर्ब ही नहीं कर रही है उसको.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: तो वो एक और इश्यू होता है. सो वी हैव टू, मैं उसका एक वो नहीं बता सकती कि रामबाण ये कर लो हो जाएगा. आपको हमेशा एक एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, कंसल्टेंट डॉक्टर, सो दैट यू नो आप क्या कर रहे हैं.
1: एग्जैक्टली. बहुत ही अच्छा आपने बताया मैम. एंड आई थिंक मैम एक और चीज जो आजकल हम देख रहे हैं मैं यूथ में, इनफैक्ट हर किसी में ये प्रॉब्लम आ जाती है, लोग खुद से कुछ भी यूज कर लेते हैं. जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पिंपल स्किन एक्ने की अगर मैं बात करूं, एक एक्ने एंड पिंपल ये बहुत ज्यादा स्किन में आजकल बढ़ता जा रहा है लोगों को मैं देख रहा हूं. इवन मेरी कजन सिस्टर है उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बट वो क्या करती है कभी भी कोई भी क्रीम उसने मेडिकल स्टोर से ले लिया, कुछ भी लगा लिया, जबकि एक्ने एंड पिंपल इट्स नॉट वेरी इजी प्रॉब्लम. आई थिंक ये बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकती है, एंड मेरे से बेटर तो ऑफकोर्स आप ही जानते हैं. तो मतलब किस सिचुएशन में हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए? जैसे मैंने अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल दिया, मैं कजन सिस्टर वो कुछ भी लगा लेती है, तो क्या ये करना चाहिए अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है?
0: वही वही सबके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर लो, कपड़ों के साथ कर लो, मगर स्किन के साथ मत करो.
1: स्किन में
0: एक बार पिंपल्स आ गए तो खड्डे हो जाएंगे या स्कार्स हो जाएंगे या कहीं पिगमेंटेशन हो गया. जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं माय क्लिनिकल प्रैक्टिस कि मैम बेटनोवेट लगा रहे थे, किसी ने स्किन लाइटनिंग क्रीम दी, स्किन गोरी हो जाएगी. अब उसके क्या होता है, उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं. अब स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, दे आर गोइंग टू गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट देगा वो, मगर साथ में स्किन को डैमेज कर देगा. आपका स्किन का जो बैरियर है ऊपर वाला उसको उड़ा देगा, साथ में बालों फेस पे बाल आने लग जाएंगे, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी धूप से. सो दीज आर द साइड सम साइड इफेक्ट. और साथ में क्या होता है, फिर ऐसी स्किन पे काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि आपने स्किन का बैरियर डिसरप्ट कर दिया है बाय यूजिंग समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड देन उसके बाद जब मैं कोई माइल्ड मॉइस्चराइजर या क्लिंजर कुछ भी देती हूँ तो वो जल्दी काम ही नहीं करता है. सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो स्पेशली एक्ने के लिए यू शुड नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन. अगर पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, आज की तारीख में इफ यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर आप ऑनलाइन दिखा लो एंड देयर विल बी पीपल टू हेल्प यू. एंड ऑल्सो एक्ने में आपकी डाइटरी हैबिट्स प्ले अ वेरी मेजर रोल. कि अगर आप मीठा खा रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो दैट हैज टू बी कट डाउन.
1: ऑल राइट, बिल्कुल सही कहा. अच्छा एक और चीज मैम, आजकल जैसे आपने भी देखा होगा, इवन तो देख ही रहे, आजकल सभी देख रहे हैं कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का चल रहा है आजकल, लोग ये करा रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा क्रेज भी है, बहुत ज्यादा ट्रेंड भी बन गया है और काफी बढ़ भी रहा है ये. बट एक्चुअली क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है?
0: परमानेंट इफ यू आर लुकिंग एट कि जिंदगी भर वो बाल रहेंगे, नो
1: एब्सोल्युटली.
0: सो द हेयर जो आपके पीछे डोनर एरिया से निकाले जाते हैं, फ्रंटली उनको ट्रांसप्लांट या लगा दिया जाता है स्लिट्स बनाते. अब उनकी जो लाइफ स्पैन है, जनरली अगर आप उनका अच्छा केयर करते हैं तो समवेयर अराउंड 8 to 10 years वो रहते हैं. एंड उसमें भी ऐसा नहीं है, वो देखिए हमने बीज लगाया है, अगर बीज लगा के तो उसमें खाद नहीं डालेंगे देन ऑल्सो देयर आर चांसेस दे कैन फॉल ऑफ अर्ली. सो आपको उसकी भी थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है. साल में एक या दो सेशन मेंटेनेंस के आपने लेने रहते हैं जीएफसी या पीआरपी के, एंड वट एवर मेडिकेशन आपका डॉक्टर ने बताया है वो आपको ऑन एंड ऑफ लेना रहता है.
1: ऑल राइट, वेरी नाइस. अच्छा मैम अगर मैं आपसे वही एक आम इंसान के बारे में बात करूँ, सपोज दैट कोई इंसान है जो सुबह से शाम तक बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, बट शाम को एटलीस्ट हर किसी के पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो खुद के लिए टाइम निकाल सकता है और वो इस बात से डिनाय भी नहीं कर सकता इनफैक्ट. सो मुझे लगता है कि अगर मैं एक आम आदमी की बात करूँ, लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है, बट वो दो तीन चीजें ऐसी क्या कर सकता है जिससे उसकी स्किन भी हेल्दी रहे, उसके बाल भी हेल्दी रहे और उसकी पर्सनैलिटी भी शाइन करे, कॉन्फिडेंट बढ़े, अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहें personality to.
0: First of all, which I personally recommend, देखिए nothing can reap a good fit personality, that is इंसान जो की हेल्दी है और फिट है.
1: Absolutely.
0: That is your workout, exercise. जैसे आप मुंह में खाना डाल रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट आपका शरीर हिलाना है. सो प्लीज मूव योर बॉडी, क्योंकि द मोमेंट आप अगर फिट हैं और अगर आप एक कमरे में वॉक इन करते हैं, द कॉन्फिडेंस यू होल्ड, नो बोटॉक्स, नो फिलर, नो लाइपोसक्शन कुछ आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता जो कॉन्फिडेंस आपकी एक फिट बॉडी आपको दे सकते हैं. सेकेंडली योर वट एवर आप मुंह में डाल रहे हैं, देखिए आज की तारीख में एज आई यू सेड इंस्टाग्राम आप खोलो, ओवर नॉलेज है, ठीक है. तो आपको पता है कि आपके कौन से इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड है और आपको पता है कौन से नॉन इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड है, मतलब कि प्रोसेस्ड सबको पता है खराब है, सबको पता है मैदा खाना नहीं है, सबको पता है कि पैकेट से निकला हुआ खाना हेल्दी नहीं है. वी ऑल नो दिस कि हरी सब्जी खाइए, फ्रूट्स खाइए, जो हम लोग क्लास वन से पढ़ रहे हैं, बट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. शाम को वो समोसे आए, हाँ भाई लाओ लेकर खाते हैं. तो दैट इज हाउ हम इंडिया की वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन बन चुके हैं.
1: Exactly.
0: It's a really disgraceful and a shameful thing.
1: Absolutely.
0: So nothing to be proud of. And secondly, yeah, nutrition. As in, आप अपने मुंह में जो भी डाल रहे हैं, please देखिए उसकी nutritional value क्या है.
1: Value क्या? Correct.
0: Yeah. And thirdly, I would say just using the bare minimum which suits you. Like आपको सब नहीं लगा लेना है कि मैं सब देकर सब कर लिया. Basic use करने सामान use करिए to look after yourself, which is a basic part of grooming. जैसे एक sunscreen हो गया medicated. एक मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर, एक मेडिकेटेड फेस वॉश. ये तीन चीजें अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, ज्यादा नहीं कहूंगी बट 60-70% योर लाइफ विल बी अंडर कंट्रोल.
1: That's very amazing, ma'am. बहुत ही wonderful तरीके से आपने explain कर दिया and very very quickly आपने बता दिया. मतलब unbelievable, incredible, ma'am. Lovely talking to you, ma'am. एक question, this is my personal question, so I want to ask you कि जैसे आजकल ना बालों में dandruff की problem बहुत हो रही है और कई लोगों को लगता है कि hair fall अगर हो रहा है, dandruff हो रहा है, तो हम अगर daily shampoo करेंगे तो ये काम हो जाएगा.
0: Okay, so dandruff generally जो होता है हमारा excess में sebum या oil secretion होने के कारण होता है.
1: All right.
0: और एक तरह की फंगस होती है जिसका नाम होता है मेलासीजिया. ये फंगस सीबम या ऑयल पे थ्राइव करती है. उसका खाना है सीबम. तो और कुछ खाने हैं, कुछ फूड्स हैं जैसे कि डेरी, दूध, चाय, कॉफी, शुगर. इन चीजों से हमारा टेस्टोस्टेरोन या डीएचटी की मात्रा बढ़ती है. और जिन चीजों से डीएचटी बढ़ेगा उनसे आपका सीबम सिक्रीशन या ऑयल सिक्रीशन बढ़ेगा स्कैल्प में, फेस पे. तो जब वो होता है तो आप फंगस को खाना दे रहे हैं कि आओ बेटा खाओ खाना. तो इसलिए उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी डाइट में, उससे फर्क पड़ेगा. दूसरी चीज, ऑल्टरनेट डे बाल धोना चाहिए. हम लोग जितनी धूल मिट्टी में रह रहे हैं, आपके स्कैल्प में कन दो दिन बाद अगर हल्का फुल्का भी ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, सो व्हेन यू आर गोइंग आउट तो उस पे धूल मिट्टी बैठ जाती है. सो योर स्कैल्प इज डर्टी, तो उसको क्लीन करना है. गंदा स्कैल्प रखेंगे हेयर फॉल ज्यादा होगा. ऑल्सो जो लोग हेयर फॉल गो थ्रू कर रहे होते हैं वो हेयर वॉश ही नहीं करते चार चार दिन, सात सात दिन, क्योंकि मैम मैं बाल छूता हूँ तो और बाल झड़ता है भाई. फिर ऐसा क्या हो, ऐसे हेयर फॉल बढ़ जाता है. सो केटाकोनाजोल बेस्ड मेडिकेटेड शैम्पू 2% केटाकोनाजोल आप यूज कर सकते हैं. ऑल्टरनेट डे हेड वॉश करना चाहिए विथ ल्यूकवॉर्म और कोल्ड वाटर. गर्म पानी मत यूज करिए.
1: ओके, मतलब इससे हम काफी हद तक फिर हम बच भी पाएंगे. इनफैक्ट
0: इससे काफी हद तक बच सकते हैं. इससे ये इवन अगर आपको डैंड्रफ नहीं है, केटाकोनाजोल बेस्ड शैम्पू अगर वंस अ वीक आप यूज करते हो फॉर योर स्कैल्प, जो भी बिल्डअप हो जाता है हम लोग की स्कैल्प में वो भी क्लीन करता है.
1: करेक्ट. ओके, सी मैम, अच्छा एक और चीज, ये तो हमने ये तो नेचुरल प्रोसेस की बात हमने कर ही ली. अगर मैं बात करूँ डाइट की, थोड़ा सा अगर आप इसकी तरफ अगर हम बढ़ना चाहें, आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है कि नेचुरल डाइट बॉडी में डालना बहुत जरूरी. जैसे आजकल खीरा है, तरबूज, खरबूज, इन सब चीजों को कितना असर पड़ता है हमारी स्किन पे, हमारे बालों पर.
0: सी, नेचर इज अ ब्यूटीफुल थिंग. आप देखेंगे जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, नेचर की सब्जियां और फल चेंज हो जाते हैं. आप वाटरमेलन खा लीजिए, आप हाइड्रेट हो जाएंगे, आप फुल हो जाएंगे.
1: करेक्ट.
0: ठीक है, आपका हाइड्रेशन पार्ट, फाइबर पार्ट आपको फ्रूट से बहुत अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि पता है कि भूख कम हो जाती है व्हेन इट कम्स टू समर्स. एंड आपको थोड़ा सा प्रोटीन का अपना इनटेक का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग की इंडियन डाइट में ज्यादा प्रोटीन कभी भी था ही नहीं. सो हम लोग को प्रोटीन की मात्रा हमेशा खाने में रखनी है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे बाल और स्किन बना प्रोटीन से है. तो आप अगर वेजिटेरियन है तो सत्तू को अपने डाइट में इंप्लीमेंट करिए मॉर्निंग इवनिंग. सत्तू का पाउडर आता है. देखिए नॉन वेजिटेरियन के पास बहुत सोर्सेज है. वेजिटेरियन के ऊपर मैं बात करूंगी ज्यादा.
1: करेक्ट.
0: जैसे कि आपकी दाल हो गई, दाल आप खाइए. ठीक है, बहुत अच्छा सोर्स नहीं है प्रोटीन का, बट कुछ तो मिलेगा.
1: करेक्ट.
0: सेकेंडली छोले हो गए, सफेद छोले, काले चने, योर कड़ी जो दही के अंदर बेस पे बनी हो, और योर राजमा, लोबिया. तो अलग अलग दिन एक एक चीज इनमें से जरूर लीजिए. देन सोयाबीन की वड़ी, तो ये अपने खाने में डाइट में हर रोज बनाइए. एंड इवनिंग के टाइम अगर आप एग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एटलीस्ट दो अंडा खा सकते हैं, 2-3 एग वाइट्स. और इसके साथ अगर आप फ्रूट्स ले हो, ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हो इन योर एवरीडे डाइट, खीरा, ककड़ी, योर वाटरमेलन, मस्क मेलन इन योर फ्रूट्स, जो बेरीज आती हैं जो विटामिन सी रिच होती है, आंवला अगर डाल सकते हैं आप हर चीज में, किसी भी फॉर्म में, जूस में ले लीजिए, मुरब्बा ले लीजिए, अचार ले लीजिए, कुछ भी, एक पूरा आंवला खाइए. सो आपका स्किन ऑटोमेटिकली अंदर से क्लीन होके ग्लो करेगा.
1: That's very nice, ma'am. That's very nice. Ladies and gentlemen, boys and girls, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर दशा सिर्फ लोगों का इलाज नहीं करती है, बल्कि in fact वो एक inspiring lady, जिसे कहते हैं ना inspiring वाली feelings अंदर से आना, inspire होना, वो एक amazing lady है. मैम इतना सारा कैसे आप मैनेज करते हो, मतलब खुद की लाइफ के लिए भी प्रोडक्टिविटी और मतलब सबके लिए इतना सारा कुछ करना, मतलब अनबिलीवेबल. कैसे मतलब इतना एनर्जेटिक है, अभी भी आप इतना एनर्जी साउंड कर रहे हो.
0: I am already working in the clinic. I have one patient already lined on, two people waiting outside.
1: Oh my God.
0: But the point is this, that see, मैं सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, I practice what I preach. मैं जितनी कहानी सुना रही हूँ चार लोगों को, मैं अपने ऊपर भी personally वो use कर रही हूँ. That is why I know how it works. मुझे पता है उसका क्या result है और वो कैसे काम करता है.
1: That's very nice, ma'am. And I think मुझे लगता है कि हर एक women कुछ special कर सकती है अगर वो कुछ अच्छा ठान ले तो करने का.
0: True, आज की तारीख में women, men, they are all doing the same.
1: 100%.
0: So, ऐसा कोई वो specific कब है नहीं रहेगा.
1: अच्छा मैम, मैं एक चीज के बारे में जानना चाहूंगा, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ. मैंने जब मैंने कल आपसे बात करी थी तो आपने एक स्माइल के बारे में बात करी थी कि घूमी हुई स्माइल ठीक करना एंड जिनकी चिन शेप में नहीं होती है वो इंप्रूव करना, फेस का वॉल्यूम वापस लाना, वो सब कुछ कैसे मतलब थोड़ा सा उसके विषय में अगर मैं जानना चाहूँ तो
0: बेसिकली दैट इज अ पार्ट ऑफ फेशियल एस्थेटिक्स ओनली जो मेरी एक्सपर्टीज है. तो जैसे किसी के गम्स दिख रहे होते हैं स्माइल करते समय, उसको हम गम्स को नीचे ला सकते हैं, हल्का सा बोटॉक्स ट्रीटमेंट या बोटुलिनम टॉक्सिन को डाल के आपके लिप्स नीचे आ जाते हैं. इट इज अ 2 मिनट्स प्रोसीजर, हार्डली कॉस्ट यू 3,000 to 4,000 rupees एंड आपके लिप्स जो गम्स दिखते हैं हंसते हुए वो चले जाते हैं. आपकी चिन कई बार होती है पीछे है, आपकी फेशियल प्रोफाइल में अगर आप साइड प्रोफाइल देख रहे हैं तो चिन थोड़ी सी पीछे आ रही है तो फोटोज में अच्छा नहीं लगता है, या आपकी कॉन्फिडेंस लेवल पे अच्छा नहीं लगता है. सो वी डू समथिंग कॉल्ड एज अ डर्मल फिलर. इमीडिएटली यू सी रिजल्ट्स विद इट एंड वो आपको अगले एक साल तक लास्ट करता है एक सेशन आपका. एंड सिमिलरली ऐसी और चीजें होती है जैसे आप स्माइल कर रहे हैं तो नाक आपकी फ्लेयर हो रही है तो हम हल्का सा इस पे बोटुलिनम टॉक्सिन देते हैं और आपके नोज को पतला कर देते हैं. इट लुक्स लाइक कि आपने सर्जरी कराई है बट सर्जरी नहीं होती है, 5 मिनट का काम होता है जिसको हम नेजल फ्लेयरिंग का बोटॉक्स बोलते हैं. दीज आर सम ट्वीक ट्रीटमेंट्स जो आपकी स्किन को और फेस को काफी एस्थेटिक बना सकता है.
1: That's very nice, ma'am. कितनी सारी चीजें आजकल आ गई, लोग सिर्फ AI पे ही निर्भर रह गए. भाई AI से आगे भी दुनिया आ गई. I know AI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है हमारे आसपास जो कि हमें पता ही नहीं है. इनफैक्ट
0: True.
1: Yeah. Well, thank you so much, Dr. दशा मैम. अपना टाइम आपने हमारे लिसनर्स को दिया, थैंक यू सो मच एंड लवली टॉकिंग टू यू. एंड सच बताऊँ तो मुझे तो आपसे बहुत सारी बात करी थी लेकिन कैसे 20 मिनट हो गए, अनबिलीवेबल.
0: सीरियसली थैंक यू सो मच. आई नो हम लोगों को 10 मिनट बात करनी थी, वी आर ऑलरेडी डन 20 मिनट.
1: जाते जाते कोई एक मैसेज जो आप कन्वे करना चाहती हैं तमाम ऑडियंस आपकी आवाज सुन रही है रेडियो पर.
0: जस्ट बी फिट एंड बी योर ऑसम सेल्फ, दैट्स ऑल आई वांट टू से टू एवरीवन.
1: दैट्स वेरी नाइस मैम, वंडरफुल मैसेज.
0: आप मुझे सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ ऑन FM मुरादाबाद एंड आई एम डॉक्टर दिशा जग्गी एंड यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ डॉक्टर दिशा जग्गी.
1: लवली टॉकिंग टू यू मैम, थैंक यू सो मच. बाय बाय मैम.
0: थैंक यू. बाय बाय.
1: नाइस डे मैम. थैंक यू.
0: Bye-bye.
1: गाइस आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6. फिर मिलेंगे किसी और अमेजिंग कॉन्वर्सेशन के साथ. तब तक के लिए कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अमेजिंग रेडियो स्टेशन. स्टे कनेक्टेड.
2: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग. यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386.
3: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है. दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान. ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से. आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जाने और योजना का लाभ उठाएं. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू.

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में। एक और खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का पहला अमेजिंग रेडियो स्टेशन, जो गाने नहीं बजाता है, आपके लिए काम की बातें भी लेकर आता है। और आज जो ये एपिसोड है फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। सो डोंट फॉरगेट, पूरा सुनिएगा, बिकॉज आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है बड़े कमाल के शख्स मौजूद है। तो सर का जो है, आइए जरा आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ श्री प्रदीप कुमार सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ मुरादाबाद से मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू FM मुरादाबाद। कैसे हैं आप?
4: अच्छे हैं
3: जी। सर आप अच्छे हैं, आप बहुत फैंटास्टिक हैं। आपको कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके, पहले ये बताइए।
4: बहुत अच्छा लग रहा है और हमें सबसे बड़ी खुशी है
3: जी
4: कि हमारी बातें आम जन तक बहुत ही आसानी से
3: रेडियो के माध्यम से
4: पहुँचा सकते हैं, जो कि शायद आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी है।
3: क्या बात है सर। मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा वो हीट वेव के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो हीट वेव आपदा बेसिकली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वाले जो लिसनर्स हैं उनको बताइए।
4: देखिए ऐसा है कि हीट वेव आपदा जो है
3: जी,
4: ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा की श्रेणी में आता है। हमारे पास बेसिकली कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं, केंद्र सरकार के तहत होती हैं, उनको हम प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होती हैं। और जो स्थानीय परिस्थितियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा होती है, उसमें जो राहत है वो राज्य सरकार के STRF फंड से रिलीज किया जाता है। तो ये हीट वेव भी जो है स्थानीय आपदा के तहत आता है और इसमें जिला प्रशासन समन्वित रूप से कार्रवाई करता है और उसके हिसाब से हम कार्य योजना बना के उस पर काम करते हैं।
3: वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर मैं अगर बात करूं, इसी में एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आपदा के समय जिला प्रशासन कैसे काम करता है, जरा ये बताइए।
4: इसके लिए ये है कि एक DM एक्ट 2005 है, उसके तहत DDMA का गठन किया गया है जिला में, जिसके अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय होते हैं और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी हैं वो सदस्य होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी सदस्य होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी जी सदस्य होते हैं, इसके साथ एक वरिष्ठ एक्शन जो होंगे वो सदस्य होते हैं। और इस तरह से जब कोई भी आपदा आती है तो उस पे पूरे जिला प्रशासन को इंटीग्रेटेड रूप से काम करना होता है।
3: अच्छा ओके सर। सर जैसे हीट वेव एक बहुत ही गंभीर विषय है, जैसे अभी आपने बताया भी, ऐसे में बहुत सारे अग्निकांड भी हम सुनते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो ये जो अग्निकांड होते हैं, जैसे कहीं पे आग लग जाना, एकदम से ये आपदाई होती है सर, तो ऐसे में इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए सर।
4: क्या आपदा के बेसिकली हम अगर बात करें एक समन्वित रूप से
3: जी,
4: तो हम लोग तीन स्टेप पे इस पे काम करते हैं। एक होता है कि आपदा के पहले, एक होता है आपदा के दौरान और एक होता है आपदा के बाद। ये तीन तरह की कार्रवाइयां होती। तो जब आपदा के पहले होता है उसको हम लोग प्रिपेयर्स फेज बोलते हैं।
3: right.
4: और उसमें क्या होता है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जैसे अभी आपने कहा हीट वेव का सीजन अभी अप्रैल शुरू हो रहा है,
3: 100%.
4: लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हम लोगों ने इसकी तैयारी फरवरी से ही शुरू कर दी। तो फरवरी में सर के निर्देश पे, सर की अध्यक्षता में जिला स्तर पे एक बैठक की गई, जिसमें सभी जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय सारे अधिकारी वहां पे सर के निर्देशन में मीटिंग होती है, उनको कार्रवाई के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया जाता है कि कौन किस जिम्मेदारी को किस तरह से तैयारी करके निभाएगा। अब जैसे आपने अग्निकांड की बात की, तो ये बेसिकली जैसे जो हमारी फायर सर्विस होती है उनको सेंसिटाइज किया जाता है, वो उनका जो एक्शन है वो ये होता है कि अगर कहीं अग्निकांड की घटना हो रही है तो पहले तो जिला प्रशासन ये प्रयास करता है कि प्रचार प्रसार से हम लोगों को जागरूक करें कि अग्निकांड की घटनाएं हो ही ना, जिससे कि लॉस हो। तो एक तो हमारी पहले इसलिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जैसे आज भी हमें यहाँ पे अग्निकांड से लोग कैसे बचें, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे जागरूकता के विषय होते हैं कि भाई हम छोटी छोटी सावधानी, जैसे हम आपको बताएं कि जैसे मोस्टली आप सुनते होंगे कि जो अग्निकांड की घटनाएं होती है वो शॉर्ट सर्किट से होती हैं, जैसे कि कहीं ट्रांसफार्मर में दिक्कत है उसकी वजह से आग लग गई, कहीं हमारे वायर जो है घरेलू वायर ढीले हैं वहां से आग लग गई। तो और कुछ आजकल देखे जा रहे हैं सिलेंडर की लापरवाही, पुराने सिलेंडर है उनकी डेट नहीं देखी गई, वो ब्लास्ट हुआ उससे घटनाएं हो जा रही।
5: बिल्कुल।
4: तो इसके लिए एक ड्राइव होता है कि लोग जागरूक रहें और फायर सर्विस रेगुलर बेस पे जागरूकता अभियान इसके लिए चलाते रहते हैं कि लोग जागरूक रहें, अग्निकांड से बचाव हो। अगर अग्निकांड की घटना हो रही है तो तत्काल आप उनके जो टोल फ्री नंबर है उस पे आप सूचना दे सकते हैं। और उससे ये रहता है कि हम लोगों का ये निर्देश रहता है कि जितनी जल्दी हमारी फायर की गाड़ियां वहां घटना स्थल पे पहुंचेंगी उतनी जल्दी हम आग को काबू पा लेंगे। इसके साथ में हम लोग ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको भी, जैसे अग्निमित्र जो है उसको भी ये माना जाता है कि समुदाय हमारा प्रथम रिस्पॉन्डर होता है, तो अग्निमित्र हैं, आपदा मित्र हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, तो ये जो नजदीकी जहां भी ऐसी घटना हो रही तो उन लोगों को भी ये सेंसिटाइज किया जाता है कि आप मौके पे पहुंच करके और आग को बुझाने का काम करें। तो ये एक पूरा सिस्टम मिलकर काम करता है पब्लिक के साथ।
3: सर अभी आपने जैसे इस पूरी जानकारी में टोल फ्री नंबर का भी जिक्र किया जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, तो वो नंबर अगर किसी को डायल करना है तो वो कौन से नंबर होते हैं?
4: जैसे हमारा आपदा का ये 1077 1077 है जो जिला आपदा कंट्रोल रूम है कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में, वहाँ का नंबर है। कोई भी आदमी 24 आवर कभी भी अगर कॉल करेगा तो वहाँ पे कॉल तुरंत पिक होगी और संबंधित विभाग को उसको तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा।
3: बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसे सुनकर और काफी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, आपदाओं की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने अग्निकांड का जिक्र किया, वहीं से अगर मैं बात करूं किसानों के लिए तो किसानों की फसल जो है वो अपनी फसल को कैसे सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि कहने के उनके लिए भी बहुत लॉस वाली बात हो जाती है अगर हम अग्निकांड की बात कर रहे हैं तो। यहाँ
4: देखिए इस विषय में एक छोटा सा बहुत सारा जो देखा गया है, एक सबसे ज्यादा विषय ये आ रहा है कि अक्सर करके जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस ज्यादातर देखा जाता है कि किसान जब फसल बो रहे होते हैं तो ट्रांसफार्मर के आसपास भी वो फसल लगाए हुए होते हैं। तो इसमें एक सावधानी का ये लेवल बहुत जरूरी होता है कि कम से कम हम 5 से 10 मीटर के दायरे में कोई फसल वहां पे ना रखें, क्योंकि है क्या, आप मान लीजिए कि आपने 10 बीघा गेहूं लगा रखा है और आपने 5 मीटर के दायरे को छोड़ रखा है तो आपने 10 बीघा गेहूं को जोखिम से बचा रखा है, पहली चीज। तो ये तो हमारे किसानों के लिए सुझाव रहेगा कि वो कम से कम जहां भी इस तरह का ट्रांसफार्मर है तो वहां के 4-5 मीटर के दायरे में कम से कम फसल को ना रखें, उस एरिया को खाली छोड़ दें। और बिजली विभाग के लिए निर्देश जाता है जिला प्रशासन से कि आप जो ट्रांसफार्मर है और उसकी पोजीशनिंग जो है उसका मेंटेनेंस सही रखें, तार ढीले ना रहें, उसके फ्यूज सही रखें। पब्लिक के लिए रहता है खेतों में हो या घर में हो, अक्सर करके हम देखते हैं कि अपने सांस सौकत पे और अपनी जरूरतों पे हम ज्यादा व्यय कर लेते हैं, लेकिन जहां इस तरह की बात आती है तो वहां पे जैसे जो घर की वायरिंग है उसको सिस्टमेटिक वे में अच्छे तार डाले जाएं, उसको प्रॉपर चेक कराते रहें, ढीले तार ना रखे जाएं, कटिया बचाने लगाने से बचे, जगह जगह खुले तार हम लोग लगा लेते हैं और जैसे तैसे काम चलाते हैं, ये कभी कभी हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, और अक्सर हम वही चीज अवॉइड कर देते हैं
4: जी।
3: सो दोस्तों आपको ये चीजें बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत काम की चीजें। सर अगर मैं बात करूं वहीं जो लोग पशुपालन करते हैं तो ऐसे में पशुओं का बचाव कैसे कर सकते हैं वो लोग?
4: देखिए पशुओं की बात अगर की जाए तो ये माना जाता है कि पशु जो है वो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं उनके एसेट्स भी होते हैं और वो उससे जुड़े भी होते हैं।
3: करेक्ट।
4: तो जैसे ही हमारा मानव जीवन इस हीट वेव की गर्मी से, भयंकर लू से प्रभावित होता है, वैसे पशु भी इससे अछूते नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें बदलते परिवेश में ध्यान रखना होगा कि पशुओं को जहां तहां छुट्टा ऐसे ना छोड़ें, बल्कि वो आज के समय में आपकी एसेट्स हैं, आप उनको वैसे ही ध्यान रखें जैसे इंसानों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि उनको बंद जगह में जैसे टीन सेट वगैरह है या टाट के बोरे वगैरह से कवर कर ले एरिया को, पानी वगैरह का छींटा मारे, एक दो बार उनको नहलाते रहें, और खास करके जो सुबह का 10 से 4 बजे का समय उस दौरान पशुओं को बिल्कुल भी बाहर न रखें। और अगर आपको लगता है कि पशु ने खाना छोड़ दिया है, चारा राल वगैरह गिर रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा छूने से पता लग सकता है, तो आप नजदीकी जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, आप पशु चिकित्सा केंद्र नजदीकी हैं वहाँ पे आप संपर्क करके उनको वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
3: बहुत बढ़िया। अच्छा सर जैसे आम पब्लिक आपको सुन रही है, आम जनता अगर वो कोई आपकी टीम से कनेक्ट हो होना चाहे या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या कोई अगर इस तरह की आपदाएं उनके आसपास उन्हें देखने को मिलती हैं, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अभी आपने एक तो नंबर भी बताया, मुझे याद है अभी हेल्पलाइन नंबर आपने बताया, इसके अलावा और कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
4: देखिए, आपदा के लिए अगर हम बात करें तो हमारे जो तहसील में नोडल होते हैं,
3: जी जी,
4: ये संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय जो होते हैं वो वहाँ संबंधित तहसील के नोडल होते हैं आपदा के मामले में, चाहे हीट वेव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे फसल क्षति हो, जो भी हो, तो उसके वो नोडल होते हैं, साथ में तहसीलदार महोदय भी होते हैं। तो ये लोग कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो आप वहाँ पे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पे तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हम छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं, जो बच्चे स्कूल्स जाते हैं उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं जो पेरेंट्स को रखनी चाहिए ध्यान में?
4: देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं यही कहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा कि खाने पीने के मामले में ध्यान रखना होगा हमें। हम अक्सर करके जो हमारा फास्ट फूड का ये सिस्टम आजकल जो चल रहा है संस्कृति, इससे तो हमें निजात पाना चाहिए। साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी खाना दीजिए वो ताजा दीजिए और लिक्विड

0: की मात्रा बढ़ा दी जाए बच्चों में। साथ में हम ये देखते हैं कि अक्सर करके देख लेते हैं कि वो जैसे ज्यादा जो नुकसानदायक चीजें उसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। और ये देखते रहें कि अगर टेम्परेचर उनका ज्यादा है, बच्चों का बुखार ज्यादा है, तो आप जिस तरह से उनको स्कूल भेजते हैं, साथ में आप हेल्थ केयर सेंटर भी तत्काल दिखा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें, डॉक्टर की सलाह से जो है इलाज करें। हाँ, ये है कि अगर वोमिटिंग जैसी शिकायत है और अगर उसको लूज मोशन हो रहा है तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं। और साथ में ये है कि अगर आप उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले रहा है, तो रूरल एरियाज में अक्सर देखा गया है कि आदमी उसको बहुत कैजुअल ले लेता है, नॉर्मल ले लेता है, और ये जो आपकी जो झार फूंक है या बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों में, कोई बोलता है कि दांत निकल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, या और सारे बहुत सारे कारण होते हैं, लोग मान के उसको अवॉइड करते हैं, तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो चूंकि एक्टिव भी रहते हैं, तो ऐसे में एक समय तक बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब हेल्थ अंदर से इशू उनका होता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए तत्काल उनको कम से कम, अगर हम बात करें कि उनको वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो कम से कम चीनी, नमक और पानी जो कि हर जगह उपलब्ध है, साफ पानी गुनगुना कर लें, फिर ठंडा कर लें उसको, और उसमें थोड़ा चीनी नमक डाल के जरूर पिलाते रहें थोड़ा थोड़ा, और जहां नजदीकी हॉस्पिटल है वहां दिखा लें।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आपदा के समय में जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ?
0: देखिये, मैंने जागरूकता के स्तर पर तो आपको बता ही दिया, अब इसके साथ कार्रवाई के स्तर पर अगर हम बात करें, हीट वेव की जैसे स्थिति होती है उसके पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पानी, तो पानी के आपूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी तहसीलों में और खास करके नगर निगम एरिया में प्याऊ सेंटर होते हैं, जिनको आप जैसे परमानेंट कुछ लगाए गए हैं जिसको वाटर कूलर, ठंडा पानी की आपूर्ति हो सके। अभी वर्तमान में अगर बात करें हमारे, तो मुरादाबाद में 53 जो है वो परमानेंट वाटर कूलर लगे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस भी हम लोग करा लेते हैं, कुछ कुछ खराब हो जाते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया भी चल रही मेंटेनेंस कराने की। साथ में अस्थायी प्याऊ शेल्टर भी हम लोग लगाते हैं, जिससे कि पानी की आपूर्ति, और इसके साथ साथ नगर निगम के द्वारा जो है टैंकर्स जो पानी के होते हैं उससे भी सप्लाई की जाती है, जगह जगह पानी की आपूर्ति की जाती है, और जलकल विभाग, जल निगम ये भी आपूर्ति सुनिश्चित कराता रहता है। इसके लिए निर्देश है कि पानी की आपूर्ति कहीं भी बाधित ना हो। साथ में ये होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो अस्थायी शेल्टर की बात की जाती है, जैसे आपके मजदूर वर्ग हैं, ये ठेला वाले हैं, साथ में जो आपके ये ई रिक्शा वाले हैं, तो कहीं कहीं जगह में आप देखते होंगे कि अगर हरे पेड़ नहीं है, छावदार वृक्ष नहीं है, बहुत खुला, बहुत बड़ा चौराहा, हीट आइलैंड जिसको बोलते हैं, खुली जगह है, जाम लग गया है, तो वहां पे क्या है कि आसपास कोई ऐसा हम अस्थायी शेल्टर भी बनाते हैं, टेंट तंबू से, जहां कूलर वगैरह की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, फर्स्ट एड किट होती है, डॉक्टर्स की टीम होती है, इसका भी योजना में शामिल किया जाता है, एम्बुलेंस वगैरह की, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है या किसी को वैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम वहां पे वो आराम कर ले और उसको मेडिकेशन दिया जा सके। तो ये भी कार्रवाई हमारे स्तर से होती है, और तहसीलों को भी निर्देश दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में खास करके आपने देखा होगा कि तालाब वगैरह बहुत सारे सूख जाते हैं गर्मी में, तो उसको रिचार्ज करने के लिए पानी वैकल्पिक साधनों से उसमें पानी भर दिया जाता है कि पशुओं को भी पानी पीने, मतलब पानी की उपलब्धता रहे, तो ये भी कार्रवाइयां वहां पे पैरेलल चलती रहती है। हाँ, एक चीज और हमारा कहना है कि आपदा में आप सावधान रहें और जागरूक रहें। साथ में ये है कि अगर आपदा से नुकसान होता है, जैसे हम बात करें जनहानि की, तो जनहानि में सरकार राह देने का कि उसका जो परिवार है वो हम उस किसी के जीवन को वापस तो नहीं ला सकते हैं, अगर किसी की जनहानि हो गई, आपदा से किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन सरकार का प्रावधान है कि 4 लाख रुपए की हम आर्थिक सहायता उसको देते हैं। लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि लोग एक नियम होता है पोस्टमार्टम कराने का, तभी हमको कॉज ऑफ डेथ पता लगता है कि किस कारण से डेथ हुई है, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, प्रावधान है। अब उसमें लोग थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं उस समय और अक्सर करके पोस्टमार्टम नहीं कराते, तो ऐसे में उनको राहत देने की कोशिश करते हुए हम चाहते हैं कि तुरंत राहत दे दें, लेकिन जब इस प्रक्रिया से वो लिख के देते हैं कि नहीं नहीं मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा, मुझे सहायता नहीं चाहिए, तो ऐसे में जिला प्रशासन बहुत कोशिश करता, काउंसलिंग करता, लेकिन फिर ऐसे में हम नहीं दे पाते तो हमें कष्ट होता है। साथ में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई घायल हुआ है, कोई कहीं भर्ती हुआ है, तो उसका भी प्रावधान है, अगर 7 दिन से अधिक कोई किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है तो हम उसको 16,000 रुपए तक का राशि देते हैं उसके उसके इलाज में जो व्यय होता है और अगर 7 दिन से कम रहा है तो उसको 5400 रुपए की सहायता दी जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो भर्ती हो, प्रॉपर प्रक्रिया में तहसील में सूचना दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों की जागरूकता लोगों तक होनी चाहिए और उसके लिए प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
1: बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी, आप आए, आपने तमाम जानकारियां दी हमारे सुनने वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जाते जाते मैं बस कुछ और सवाल है जो आपसे पूछना चाहूंगा। पहले तो यही, जो महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं उन्हें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अचानक से अग्निकांड में जो है कई सारी गाड़ियों को भी हम देखते हैं, अचानक से गाड़ियों में आग लग जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हम देखते हैं, तो उसके में आपका क्या कहना है?
0: देखिए, इसमें दो चीजें मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि सावधानी ही बचाव है।
1: बिल्कुल।
0: और हम आपको इस विषय में थोड़ा सा बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम मॉड्यूलर किचन बना लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने किचन में भी जाके देखें कि क्या वहाँ फायर डिस्टिंग्विशर है, तो शायद लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो छोटे फायर डिस्टिंग्विशर जो किचन में रखे जा सकते हैं, या 2 बकेट पानी या बालू की बाल्टी, ये सब रखी जा सकती है। तो जो, और अक्सर करके देखिए कि बहुत सारे वैसे ज्वलनशील सामान जो किचन में रहते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो इन सब चीजों पे हमके जागरूक होने की जरूरत है कि कम से कम अपने किचन को जैसे हम मॉडिफाई करके रखते हैं, तो साथ में सेफ्टी मेजर्स भी रखें। फायर डिस्टिंग्विशर के छोटे आते हैं उसमें, जो सेफ्टी की आप तुरंत उनसे आग को काबू कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ में ये है कि मॉक ड्रिल कराई जाती है, उसमें प्रैक्टिस करें, और पानी की बाल्टी वगैरह रखें गर्मी के दिनों में खास करके। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी माताओं बहनों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपा करके आप खाने का जो बनाने का टाइम है वो चेंज कर लें। सुबह 8 बजे से पहले खाना बना लें और शाम को 4 बजे या 5 बजे के बाद, शाम में देर रात को खाना बनाएं, दोपहर में खाना ना बनाएं। इसके साथ एक चीज और, ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि हम लापरवाही करते हैं, जो आग वगैरह है कहीं भी चलते हुए छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम उसका भी ध्यान रखें, जो भी आग है उसको बुझा दे ठीक से, जिससे कि कोई भी वैसी घटना ना हो।
1: जी सर, बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम जानकारी दी।
0: और मैं दूसरी बात, जहाँ तक गाड़ियों का है, तो गाड़ी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि एक तो 2-3 चीजें इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप गाड़ियों में भी जैसे वायरिंग वगैरह होती हैं, गाड़ी का इंजन होता है, प्रॉपर सर्विस कराइए, वायरिंग मेंटेन रखिए। और एक छोटे से उसमें भी ये SOP है कि आप छोटा डिस्टिंग्विशर आता है उसको आप गाड़ियों में, फायर डिस्टिंग्विशर रहने से उसको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है, उसकी मॉडल भी कराई जाती है, तो वो कम से कम ये रहेगा कि आग लगती है जब तक आप इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं कैसे आग को बुझाएं, तब तक वो बड़ा स्वरूप कर लेती है। एक आमजन को हम और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आम पब्लिक को भी, कि आप अक्सर करके देखते होंगे बहुत लोग इस तरह से नासमझी करते हैं, हालांकि ये मना भी है, कि आप कोई भी ज्वलनशील जैसे चाहे ये पेट्रोल वगैरह है, ये कभी भी गर्मी के दिनों में इसको डिब्बे में लेने की कोशिश ना करें, ना या डिब्बे में ले करके ना जाएं, क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि कब ये जानलेवा बन जाए। गाड़ी में कभी भी डिब्बे में आप पेट्रोल लेके उस तरह का ज्वलनशील सामान लेके ना चलें, कृपा करके बचाएं। और गर्मी के दिनों में बच्चों को गाड़ियों में बंद करके ना छोड़ें, ये मेरी अपील है, बच्चों को लेके सेंसिटाइज रहें। घर में कहीं अगर आग है, कहीं खाना बन रहा है, तो आसपास छोटे बच्चों को ना छोड़ें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये सब ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जबकि बच्चों में गाड़ी में बच्चे को बंद कर दिया गया, गर्मी का दिन है, वो सफोकेशन से उसको जो है दिक्कत हो गई। तो ये सब थोड़े थोड़े ऐसे उपाय हैं कि हम बचाव कर सकते हैं और इनका ध्यान रखना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी। साथ में एक बहुत बड़ी अपील मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा, जो कि सरकारी अभी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, कि 2 चीजें देखने को मिली हैं कि जैसे ग्रामीण इलाकों में जो चूंकि वेजिटेशन ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है, तो वहां पे गर्मी का इफेक्ट कम देते हैं, लेकिन शहरी इलाके में क्या होता है, चूंकि बिल्डिंगें बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें हैं, तो एयर का जो वेंटिलेशन है वो उस प्रॉपर हो नहीं पाता है। साथ में हमारे ग्रीन कवर भी कम है, तो ऐसे में हमको ये सोचना होगा, ऑक्सीजन भी हमारे लिए जरूरी है, तो अगर हम सब इसको जिम्मेदारी को समझें तो हमारा घर भी अच्छा होगा, कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला अपने परिवार के गार्जियन से आपस में एक दूसरे से, जैसे बहुत सारे होते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं और हम जो है आपके शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट की बात करते हैं, हम चाहेंगे कि बच्चे ये गिफ्ट मांगे अपने पेरेंट्स से कि हमको 10 गमले घर घर पे पेड़ के लगाने हैं। महिलाएं अपने हस्बैंड से मांगे कि 10 पेड़ घर में लगाने हैं जो आप छत पे सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेशन तो होगा ही, और साथ में क्या है कि जो आपका एनवायरमेंट है वो भी थोड़ा फेयर होगा, अच्छा होगा और मेंटेन होगा। अब आप समझिए, अगर 1,00,000 घर मुरादाबाद शहर में मैं मान लूं हाउस होल्ड, तो अगर 10 पौधा हर घर लगाए अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो 10,00,000 पौधे को वो देख भी सकते हैं, उसका प्रॉपर केयर कर सकते हैं और ऑक्सीजन जनरेशन का आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज और देखी गई है कि जो छत होती है, छत आप भी जानते हैं कि जितना काला होता है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है।
1: करेक्ट।
0: तो और व्हाइट शर्ट पहनने के लिए, लूज कपड़े पहनने के लिए भी हम लोग जागरूक करते हैं कि लोग लूज कपड़े पहने, व्हाइट शर्ट पहने, तो क्या है कि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस चली जाती है एनवायरमेंट में। तो अगर छतों को, छत के ऊपर सिरे को व्हाइट करने के लिए रूफ टॉप हम लोग बोलते हैं कि आप पूरे घर को बहुत पेंट कराते हो, और होता क्या है कि अगर छत को आप व्हाइट करा दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आप अपने घर का टेम्परेचर 2 से 4 अंश सेल्सियस तक कम कर सकते। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर 4,000 स्क्वायर फीट, 3,000 स्क्वायर फीट आपकी छत है और उसके टेम्परेचर को हम 2 से 4 अंश सेल्सियस कम कर देंगे, तो उसका एक परिणाम ये भी होगा कि आपको एसी कम चलानी पड़ेगी, ये भी हो सकता है, और घर का टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। तो ये मेरी अपील है कि रूफ टॉप के तहत लोग अपनी छत के ऊपरी वाले सिरे को भी व्हाइट पेंट से ये पेंट कराएं। हालांकि सरकारी भवनों को पेंट कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के द्वारा निर्देश चले गए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, और 10,50,000 स्क्वायर फीट छत हम लोगों ने चिन्हित की सरकारी भवनों की, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग के हैं, ब्लॉक्स के हैं, फायर सर्विस के, थानों के हैं, और जो सरकारी भवन है उनके हैं, जिसपे हमने अभी लगभग 1,00,000 स्क्वायर फीट छतें हमारी व्हाइट रूफ टॉप हो गई हैं, जिससे कि हम इस जो हमारी गर्मी है इसको रिफ्लेक्ट करके वापस कर सकें, एनवायरमेंट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें।
1: सर बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला, इतना महत्वपूर्ण समय हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, और सबसे अच्छी बात आपने जो गमलों का एडवाइस दिया ना, ये बड़ा अल्टीमेट था, बड़ा यूनिक था, और साथ में आपने बताया कि छत को हम कैसे व्हाइट पेंट करा के गर्मी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब एसी कम चलेगी तो बिल भी कम आएंगे, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो जाते जाते तमाम लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई एक मैसेज, कोई एक संदेश?
0: संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के साथ पूरी जिला प्रशासन टीम आपके सेहत स्वास्थ्य को लेके बहुत ही संवेदनशील है, और सरकार स्पष्ट निर्देश है कि लोगों को जागरूक करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए, उनसे अनुरोध करिए। तो जिला प्रशासन की तरफ से, सर की तरफ से आप सबसे पुनः यह अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गर्मी के दिनों में दोपहर में घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें, और बहुत सारे जो उपायों पे बात की गई इसका ध्यान रखें, आपकी सेहत ही हमारी संपत्ति है। धन्यवाद।
1: थैंक यू सर। आप सुन रहे थे एफएम मुरादाबाद 89.6 विद आरजे आनंद। फिर मिलते हैं किसी और नए कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, रेडियो की सुई बिल्कुल घुमाइएगा नहीं। स्टेडियम।
2: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका, नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री, और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
3: माँ की नज़र फिर से साफ हो, पापा बिना चश्मे अखबार पढ़ सकें, बच्चों को कम उम्र में चश्मा ना लगे, यही तो ख्वाहिश है हर परिवार की। तो आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आज ही आए बजाज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर आकाश बजाज और डॉक्टर अशोक बजाज लाते हैं आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी और नेत्र रोगों का विशेषज्ञ इलाज। हॉस्पिटल का पता, ताड़ीखाना चौराहा, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9548088900।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: आवश्यक सूचना, 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉर्पोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें

0: श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद कॉल 7060022430।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 पर। रविवार की सुबह है और खूबसूरत सा दिन है। आज तारीख है 10 मई की और दिन बहुत ही प्यारा सा है संडे का। जी हाँ दोस्तों, और आज क्या स्पेशल है सबको मालूम है, और अगर मालूम है तो वेरी गुड, नहीं मालूम है तो खुशी आपको बताएगी। सबसे पहले आप सभी को खुशी का गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों कहते हैं ना कि माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के आंचल में सुकून है। जिसके पास माँ है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। माँ शब्द नहीं एक एहसास है, मेरे लिए तो माँ सबसे खास है। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ साथियों, मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे टू माय ऑल लवली लिसनर्स। दोस्तों आप भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रविवार की सुबह सब अपनी फैमिली के साथ हैं और इस समय हमारी जो श्रोता हैं कुछ काम में व्यस्त हो गए हैं, कुछ आराम कर रहे हैं और कुछ अभी टुक टुक रेडियो को निहार रहे हैं। दोस्तों माँ वो शब्द है जिसे सुनते ही दिल को सुकून मिल जाता है, जिसकी दुआओं में पूरी दुनिया की खुशी छिपी होती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, उसके प्यार जैसा दुनिया में कोई अनमोल नहीं होता। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस मदर्स डे अगर आप कुछ अपनी मम्मा को कहना चाहते हैं जो नहीं कहा है तो कह सकते हैं हमें कॉल करके। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। दोस्तों मैं सुनवाती हूँ आपकी खूबसूरत सा गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। आज बहुत कुछ स्पेशल हमारे शो में होने वाला है, क्या कुछ खास है आपको धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक गीत। एंजॉय कीजिएगा आप सब।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत सुना। एंड श्रोताओं, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली ममाज के लिए। जितनी भी ममा हमें सुन रही हैं, मैं सभी को गुड मॉर्निंग विश करना चाहूँगी एंड हैप्पी मदर्स डे। दोस्तों, घर की रौनक माँ से होती है, हर धड़कन की राहत माँ से होती है। जिसके होने से ज़िंदगी आसान लगती है, वो कोई और नहीं, सिर्फ माँ होती है। दोस्तों, संडे की प्यारी सी सुबह और खुशी लेकर आई है आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ एंड ढेर सारा प्यार और अपनापन। एंड आज के दिन को स्पेशल बनाएंगे। और मैंने आपसे श्रोताओं कहा है कि आज आप स्पेशल ममा को क्या कहना चाहते हैं, लाइक जो आपने कभी ना कहा हो, वो आज आपका कहने का मन है, तो प्लीज़ कहिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837 8968 9 6 8 9 6। दोस्तों, आपको पता है एक्चुअली क्या होता है ना, आपने भी ये बात नोटिस की होगी, पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इग्नोर भी कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। और मैं आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि आज आप अपनी ममा को क्या स्पेशल कहना चाहते हैं जो आपने नहीं कहा है, तो प्लीज़ कह दीजिएगा। आज बहुत अच्छा मौका है। वैसे हर दिन ममा के लिए ही होता है, कोई दिन ऐसा है जो ममा के बिना हो नहीं, हर दिन ममा के साथ स्पेशल होता है। और आपको पता है श्रोताओं, जो दूर होते हैं ना घर से, उनको पता होता है कि ममा की एक एक छोटी छोटी चीज़, एक एक लाइक जो आदतें हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा हम मिस करते हैं। जब पास होते हैं तो इतना एहसास नहीं होता है, लेकिन जब हम वही चीज़ें हम दूर चले जाते हैं, ममा से दूर हो जाते हैं थोड़ा, काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, एक्चुअली बहुत सारी ऐसी लाइफ में चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है, तब हमें वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत याद आती हैं कि सुबह ममा का जल्दी से उठाना, एक्चुअली सुबह सुबह ब्रेकफास्ट रेडी करके देना गर्मा गर्म, और हर बात में मालूम करना। जैसे कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं, तो बार बार हमें ममा के कॉल आते हैं, जब तक हम सुरक्षित नहीं पहुंच जाते हैं कि कहां पर हो, ठीक से बैठे हो, ठीक से पहुंचे हो, सारी चीज़ें होती हैं। और माँ से ज़्यादा दुनिया में ना, सच बताऊं दोस्तों, कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता, निस्वार्थ प्रेम करती हैं ममा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज अगर आप उनको कुछ कहना चाहते हैं, दो लाइनें स्पेशल ममा के लिए, तो कह दीजिएगा। बहुत ही अच्छा सा ये आपके पास मौका है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और एक खूबसूरत सा गाना मैं आप सभी के लिए एंड स्पेशली सभी ममा के लिए यहाँ पर प्ले कर रही हूँ। लौट कर आती हूँ बस इस प्यारे से म्यूजिकल प्रीक्यूस पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
3: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
2: अरे वाह।
3: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी
2: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
4: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
0: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद। कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
8: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
9: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
8: पर पापा।
9: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी के बहुत ही खूबसूरत संदेश यहाँ पर आ रहे हैं लगातार, एंड उन्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही है और मम्मा के लिए स्पेशली जो आपने बातें लिखी है ना, बहुत ही खूबसूरत हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से आपको भी हम शामिल करते हैं और हमारे जो श्रोता हैं वो क्या पहुँचाते हैं आज की सुबह, हम भी एक नज़र डाल लेते हैं। इतने प्रेम से उन्होंने लिखा हुआ है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है करिश्मा एंड खुशबू का। नाम बहुत ही अच्छा है करिश्मा, खुशबू इधर खुशी भी है, हाय। और ये कहती है हैप्पी मदर्स डे उन सभी मम्मा को जिन्होंने अनगिनत त्याग करके वह बनाया है जो वह आज है। भगवान उनको हमेशा खुश और स्वस्थ रखे और हैप्पी मदर्स डे उन सभी सिंगल्स डैड को भी जो एक पिता के साथ साथ एक माँ का फर्ज भी निभाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा खुशबू आपने एंड करिश्मा, क्योंकि कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जहाँ पर मम्मा नहीं होती हैं लेकिन पापा मम्मा का पूरा रोल निभाते हैं, कभी कमी महसूस नहीं होने देते हैं कि मम्मा नहीं है। तो उन डैड्स को भी हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं और स्पेशली मम्मा को तो हम बोलेंगे ही हैप्पी मदर्स डे। अभी सुन भी रही हैं, मुस्कुरा भी रही हैं सभी मम्मा। देखिए कैसे तैयार हो गई है आज तो सुबह सुबह, क्या बात है, बहुत ज़्यादा सोनी लग रही हो तुसी, नज़र ना लग जाए, काला टीका लगा के भी रखो। कुछ मम्मा तो अभी किचन में है, नाश्ता बना रही हैं गर्मा गर्म स्पेशल। हाँ बच्चों, आज की सुबह आप भी मम्मा को कुछ स्पेशल बनाकर खिलाओ, अगर आपको कुछ आता है तो कुछ तो क्रिएटिविटी करके दिखाओ आज। हाँ हाँ, मम्मा ने इतना कुछ आपके लिए किया है तो आपका भी फर्ज बनता है ना आज मम्मा को कुछ स्पेशल फील कराने का। जल्दी से बताओ आपको क्या क्रिएटिव चीज़ें आती हैं जो आज आप मम्मा के लिए स्पेशली करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी लाइन्स जो आज आपने आज तक मम्मा को नहीं बोला है बट आज बोलना चाहते हैं, तो बोल दीजिएगा अपने दिल की बात। बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आपके अपने शहर का फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। अगला मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर, ये मैसेज हमें मिला है बहुत ही प्यारा सा आया है। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये प्यारा सा मैसेज हमारे पास आया है रहमत नगर छपर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड भी हैं शाद अंसारी जी, शारिक अली जी, महराज अंसारी जी। और ये कहते हैं कि माँ बच्चों का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में सबसे अनमोल है, माँ की तुलना हम किसी और रिश्ते से नहीं कर सकते। बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं, माँ की ज़रूरत हर उम्र में होती है, हर वक्त होती है। हैप्पी मदर्स डे, आज के दिन सबसे खास है एंड माँ के लिए कोई दिन नहीं होता, तो माँ की माँ से हर दिन होता है। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और बहुत ही खूबसूरत सा आपने मैसेज पहुंचाया है, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? मेरा नाम कामिनी है और ये पिपिट पूरा मुरादाबाद से मैसेज पहुंचाती है। यदि मम्मी के लिए कुछ लाइनें हैं कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, दुनिया की हर महंगी से महंगी चीज़ से बढ़कर माँ का प्यार होता है। हैप्पी मदर्स डे सभी मम्मा को। अरे वाह कामिनी, क्या बात है, आपने तो दिल जीत लिया हमारा। और भी यहाँ पर लगातार बहुत ही खूबसूरत मैसेज आ रहे हैं लगातार, उनके भी हम उन मैसेज को भी हम जल्दी से शामिल करेंगे एंड कुछ और लाइनें भी मेरे पास हैं, उन्हें मैंने संभाल के रखी हैं एंड सभी मम्मा को मैं अभी डेडिकेट करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। एवरीवन, आप कहीं मत जाइए, खुशी आपसे कहती है कि रेडियो की सुई को बिल्कुल भी मत घुमाइए और मुस्कुराइए, संडे की सुबह है। अगर आप उठ गए हैं तो वेरी गुड, नहीं उठे हैं तो उठ जाइएगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है एंड हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं तो उनको हम आकर शामिल करेंगे। और एक खूबसूरत सा गीत जो बेसब्री से बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं और स्पेशली सभी मम्मा को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ आज की सुबह, और बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में है एंड लता मंगेशकर जी की आवाज़ सुनकर सुबह एकदम खूबसूरत हो जाती है। और ये प्यारा सा गीत उसी तरह का कुछ है जो आपकी सुबह को और भी स्पेशल बनाएगा।
तो लौट कर आती हूँ मैं इस प्यारे सी गाने के इस पर।

0: एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: Japanese tire expert for over 100 years, Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
3: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
2: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412211111.
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सभी का आरजी खुशी बहुत बहुत स्वागत करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और आज हमारा जो शो है वो स्पेशली है मदर्स के लिए, क्योंकि आज मदर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो ममा के लिए आज हम शो हमने रखा हुआ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज आप अपने दिल की बातें जो आप ममा से ना कह पाए हों वो आज कह सकते हैं स्पेशली ममा के लिए. दोस्तों, इस बार मदर्स डे पर सिर्फ फोटो लगाकर मत निकल जाना, एक बार उस माँ को भी महसूस करना जिसने पूरी जिंदगी तुम्हें महसूस किया है. सिर्फ हैप्पी मदर्स डे लिख देना काफ़ी नहीं होता, कभी उनके पास बैठकर उनकी खामोशियों भी, जी हाँ, उनकी खामोशियाँ भी सुनी जाती हैं. और कहते हैं ना कि इस बार माँ के साथ बैठिए, उनकी अधूरी बातें सुनिए, उनके पुराने किस्सों पर मुस्कुराइए और एक बार उनसे ये भी पूछिए, माँ आप सच में कैसी हैं. क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम में ना, जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है, तो ज़्यादातर बच्चे फ़ोन में टाइम स्पेंड करते हैं, वक्त होते हुए भी ऐसे शो अप करते हैं, ऐसे बिजी रहते हैं कि हमारे पास पता नहीं दुनिया का सारा काम हमारे पास ही आ गया है. तो मैं कहना चाहती हूँ कि ममा को कोई बड़े बड़े तोहफे नहीं चाहिए होते हैं, उनके पास आप 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, उनसे बात कीजिए, उनके हाल चाल जान लीजिए, वो उसी में खुश हो जाती हैं. क्योंकि दोस्तों, माँ वो रिश्ता होती है जो खुद टूटकर भी अपने बच्चों को बिखरने नहीं देती. और सच कहूँ तो माँ को सबसे ज़्यादा खुशी महंगे तोहफों से नहीं, बस अपने बच्चों के थोड़ा सा वक्त देने से मिलती है. इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज आपके, देखिए आज संडे भी है एंड मदर्स डे भी है, तो दो दो आपके पास चांस है ना. अब आपके पास ये बहाना नहीं है कि आज मुझे जॉब पर जाना है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज छुट्टी है आपकी, तो आज भरपूर अपनी फैमिली को टाइम दीजिए. आज कोई बहाना नहीं, आज कुछ स्पेशल उनके लिए बनाइए या फिर उनको कहीं बाहर घुमाने लेकर जाइए. और हमारे पास यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत संदेश आए हैं, तो जल्दी से मैं शामिल करूँगी बिना किसी देरी के. एंड बहुत ही प्यारा से यहाँ पर मैसेज हमारे पास आया हुआ है सबा से भी, सिमरन की साइड से. और नेहा मैम के लिए स्पेशली मैसेज उन्होंने पहुँचाया है आज की सुबह कि माँ एक ऐसी ब्लेसिंग होती हैं जो हर मुश्किल में अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती हैं. जब दुनिया समझ नहीं पाती, तब माँ बिना बोले सब समझ लेती है. मेरे लिए माँ मेरी स्ट्रॉन्ग, मेरी मोटिवेशन और मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है. आज अगर मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर पा रही हूँ, तो उसमें उनकी दुआएं और उनकी ब्लेसिंग्स का सबसे बड़ा हाथ है. एग्जैक्टली, एक्चुअली ममा वो कर सकती हैं जो कोई नहीं कर सकता बच्चों के लिए स्पेशली. वो सबसे लड़ लेती हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए. वो अपनी तकलीफें भी छुपा लेती हैं, अपनी खुशी को भी वो कम कर देती हैं अपनी बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि उन बच्चों में ही माँ का सब संसार छुपा होता है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है. अगर बच्चे खुश होते हैं तो माँ भी खुश हो जाती हैं. और आज हम भी इस मुकाम पर हैं यहाँ पर, तो हमारे मम्मी पापा ने हमें बचपन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर चीज़ के लिए, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए हमें मना नहीं किया है. और उनकी ब्लेसिंग्स तो हमेशा हमारे साथ हैं. एक्चुअली मम्मा पापा की दुआएं, ब्लेसिंग्स हमेशा बच्चों के साथ होती हैं. और वो बच्चा हमेशा कामयाब होता है जिसके ऊपर माँ पापा का आशीर्वाद होता है. और कहते हैं ना कि पूरी ईमानदारी से जब हम मेहनत करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है. और बाकी मैं क्या बोलूँ, मैं खुद चुप हो जाती हूँ. एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल लड़की हूँ, जब बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और जब रोती हूँ तो बहुत ज़्यादा रोती हूँ, और जब हंसती हूँ तो बहुत ज़्यादा हंसती हूँ. इसीलिए मैं अभी कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पर और भी मैसेज आए हैं, उनको जल्दी से मैं शामिल कर लेती हूँ. थैंक यू सबा, आपने इतना प्यारा सा ममा के लिए मैसेज भेजा, बहुत अच्छा लगा मुझे. और नेहा मैम इस समय सुन भी रही होंगी, मुस्कुरा भी रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल भी है. और आज स्पेशल क्या आप कर रहे हो बताओ हमें सबा, हम जानना चाहते हैं. एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें लिखी है हमारे पास. एक छोटे से बच्चे का मैसेज हमारे पास आया हुआ है, कहते हैं
कि माँ वो एहसास है जो बिना कहे हमारी हर तकलीफ समझ जाती हैं, माँ वो एहसास है जो बिना बोले हमारी हर तकलीफ समझ जाती हैं, माँ की गोद में दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है। एग्जैक्टली जब हम कभी परेशान होते हैं ना, और जब हम चुपचाप जाकर कुछ कह भी नहीं पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मन बहुत ज़्यादा, मतलब हम ना बातें कह नहीं पाते हैं, कहने को बहुत कुछ होता है पर कह नहीं पाते, ज़ुबान से बात नहीं निकल पाती है। जब बहुत ज़्यादा हम टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे आसपास होती हैं, तो हम चुपचाप जाते हैं और माँ की गोद में हम सर रख कर बैठ जाते हैं ना, और मम्मी प्यार से जब हमारे सर पर हाथ रखती हैं, बालों को सहलाती हैं, तो मानो कि आधी टेंशन आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं ख़त्म हो जाती हैं। और सबसे बड़ा सुकून तो माँ की गोद में ही है। एंड इन्होंने और बड़ी फैंसी सी लाइनें लिखी हैं कि माँ की मुस्कान ही हमारी असली खुशी है, दुनिया छोड़ सकती है माँ नहीं, माँ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होती हैं। एंड माँ मीरा, इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक लग रही है मुझे। और कहते हैं कि माँ का प्रेम एंड मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, मेरी सब कुछ होने के लिए, मुझे सब कुछ देने के लिए धन्यवाद माँ। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा आपने मैसेज यहाँ पर पहुँचाया है, थैंक यू सो मच। बट अपना नाम नहीं लिखा, ये तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे आपको यहाँ पर अपना नाम भी लिखना चाहिए, आपने इतना प्यारा मैसेज भेजा है, तो जल्दी से अपना फटाफट नाम भी पहुँचाओ। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, हेलो खुशी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड इन्होंने हमें बड़ी प्यारी सी लाइनें भी लिखी हैं यहाँ पर हमारे लिए। एंड इन्होंने लिखा है कि खुशी जी, जब हम आपकी आवाज़ सुनते हैं तो हमारा दिन बन जाता है, और सुबह सुबह इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स आप प्ले कर रही हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं। एंड मैं अपनी मम्मा से अभी दूर हूँ, लेकिन उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, और सुबह मैंने उनसे बात की वीडियो कॉल पर। ये सोशल मीडिया बड़ा ही कमाल की चीज़ है। एंड पहले हम महीनों इंतज़ार किया करते थे, एंड अब हम इतने सुपरफास्ट हो गए हैं, टेक्नोलॉजी इतने सुपरफास्ट हो गई है कि हम इतनी दूर हैं। एंड ये मैसेज हमें लखनऊ से आया है, और इन्होंने अपनी मैसेज पहुंचाया है, एंड ये रहने वाले बिजनौर के हैं, और कहते हैं कि अभी हम लखनऊ में जॉब करते हैं और बिजनौर में हमारी फैमिली रहती है, तो अभी जा नहीं पाए हैं काम की वजह से, बट मम्मा को बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरह से गाने प्ले किए एंड जिस तरह से आप बातें कर रही हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी एंड हैप्पी मदर्स डे अपनी मम्मा को ये विश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर अपना मैसेज पहुँचाने के लिए। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है पूजा जी का लाइन पार से, और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। अगला मैसेज हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर अंकित कुमार शर्मा एडवोकेट जी का, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद यूपी से। एंड इन्होंने भी बड़ी प्यारी सी लाइनें लिखी हैं, कहते हैं हेलो खुशी जी, हाय। कहते हैं कि माँ वो शख्स है जो खुद अधूरी नहीं, इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइनें लिखी हैं, मैं दोबारा से बताती हूँ आप सभी को कि क्या लिखा है सर ने, कि माँ वो शख्स हैं जो खुद अधूरी नींद में रहकर हमारे सपनों को पूरा करती हैं, जो अपने हिस्से की खुशियाँ काट कर हमारे चेहरे पर मुस्कान सजाती हैं, हमारी हार में भी जो हमसे ज़्यादा भरोसा रखती हैं वही माँ होती हैं। एक आम भारतीय घर की माँ किसी सुपर हीरोइन से कम नहीं होती। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड कहते हैं कि हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही प्यारा सा ये मैसेज पहुँचाया है आज की सुबह, दिल से धन्यवाद। और एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं श्रोताओं, उसके बाद लौट कर आते हैं। अगर आप भी कुछ मम्मा के लिए स्पेशली कहना चाहते हो तो बिल्कुल मैसेज कर सकते हो, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अंबाला जाने अपने
1: जिसमें जो है पुरा
2: बिल्कुल नहीं झूठ मैं नहीं मानता एयरफोर्स के पास
1: कब तक विचार कर सुधारे बिल्कुल हमारे जवान

0: थी जाए, ना कि अजय राठौर जैसे।
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
6: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान।

बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा अभी आपने गीत सुना। और ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। और मम्मी पापा से ज़्यादा दुनिया में ना कोई भी आपसे प्रेम नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा भी ना तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होगा, लेकिन एक मम्मा पापा ही है जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए अपने बच्चों से, और वो ही होते हैं जो अपने बच्चों को सक्सेसफुली देखना चाहते हैं। और कोई तो जेलेसी इतना करते हैं। अगर आप ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, जब आपका संसार में नाम होता है तो लोग खींचने वाले, पीछे गिराने वाले हजार खड़े होते हैं कि क्यों, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। बट आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो जानते हैं कि मेरा बच्चा उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जहां पर वो जाना चाहते हैं कितनी दिन रात मेहनत करते हैं। और अकेला बच्चा ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी बराबरी की मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए दिन रात जागते हैं, मेहनत करते हैं, उनके बड़े सपनों में पूरा अपना योगदान देते हैं। और बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर संदेश भी आ रहे हैं, तो और ये गाना भी बहुत प्यारा मैंने यहाँ पर प्ले किया आप सभी के लिए। एंड बहुत ही प्यारा सा, और ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, हम साथ साथ। एंड मैं इस फिल्म को जितनी बार देखती हूँ ना, मेरा दिल ही नहीं भरता है। ऐसा लगता है कि मैं और देखूँ, और जब भी मैं इसको देखती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इस फिल्म के सारे गाने एंड सारे स्टार्स, बहुत ही कुल मिलाकर अच्छी फिल्म है। जितनी बार मैं देखती हूँ उतनी बार बार बार दिल जो है वो मानते ही नहीं है। एंड मैंने अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म आई रिमेम्बर एंड 10 से 12 बार देख चुकी हूँ। और अभी भी मैंने जब ये सॉन्ग प्ले किया तो मुझे वही सारी मूवीज एंड पिक्चराइजेशन मेरी आंखों के सामने नज़र आ रहा था, वही सारा नज़ारा एंड सब कुछ। और आपको भी इस फिल्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम है ना दोस्तों। पहले की फिल्मों की बात ही अलग थी। और हमारे पास यहाँ पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। वक्त हुआ है 11:13, संडे का दिन है, खुशी आपके साथ है। और तारीख मैं आपको बताती हूँ, 10 मई की तारीख है। और समय भी मैंने आपको बता ही दिया है। एंड लगातार यहाँ पर आज मैसेज हमारे पास आ रहे हैं। मदर्स डे स्पेशल मैं शुरू कर रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ आपसे, जो आपने कभी मम्मा से ना कहा, कुछ कहना चाहते हो जो नहीं कहा है अभी तक, कह दीजिएगा, बहुत अच्छा मौका है। आज तो कह दो, आज कंजूसी मत करो, और अपने दिल से भी बोलो कि आज वो आपको ना रोके, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि हम दिल की बातें कहना चाहते हैं लेकिन वहीं रुक जाते हैं कि अभी नहीं। थोड़ा सा होता भी है, शर्माते भी, घबराते भी है, लेकिन माँ के सामने घबराना, शर्माना, डरना नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्वीट है, बहुत प्यार

0: नहीं है एंड उनके जैसा कोई भी नहीं है संसार में। और हमारे पास कुछ और मैसेज यहाँ पर आए हैं, तो उनको भी हम जल्दी से शामिल करते हैं। एक वॉइस नोट आया है, बहुत ही खूबसूरत सा है, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई थी, लेकिन हाँ अभी मैं उसको क्विकली प्ले करती हूँ। एंड क्या पहुँचाया है हमारी प्यारी सी स्वीट सी लिसनर ने, ज़रा उनकी आवाज़ में आप सब सुनिएगा।
1: मुरादाबाद रहमतनगर। गुड मॉर्निंग मैम,
0: वेरी गुड
1: माय नेम इज
0: मॉर्निंग।
1: सबीना खान, मुरादाबाद रहमतनगर। मैम, मैं सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहूँगी। मैम, मैं अपनी माँ को भी हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहूँगी। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे तो उनकी डेथ हो गई थी। मगर हमारे पापा ने हम लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ा, और उन्होंने बचपन से आज तक हमारे साथ हैं हर कदम पर। उन्होंने हम लोगों को आज इतने हम लोग बड़े हैं, जब हम बहुत छोटे थे मैम, हमारे पापा ने ही हमें पाला है और हमारे पापा ने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। वो जब बहुत यंग थे, मगर उन्होंने शादी भी नहीं की हमारे वजह से, और इसीलिए हम अपने पापा को ही, हमारे पापा ही हमारे लिए माँ और बाप दोनों हैं। इसलिए आज मदर्स डे के दिन मैं अपने पापा को हैप्पी मदर्स डे विश करना चाहूंगी, क्योंकि वो ही हमारे लिए माँ है और वो ही हमारे लिए बाप है। थैंक यू मैम।
0: मोस्ट वेलकम शबीना, आपके लिए तालियां, और अंकल जी के लिए भी, एंड हैप्पी मदर्स डे हमारी तरफ से भी। और आपने अपना ये ब्यूटीफुल वॉइस नोट पहुंचा कर हमारा दिल जीत लिया, थैंक यू सो मच। और अंकल जी के लिए भी हम दिल से सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं उनको कि उन्होंने आपको कभी मम्मा की कमी महसूस नहीं होने दिए, उन्होंने हर कदम पर आपको सपोर्ट किया एंड आपकी अच्छे से परवरिश की, आपको ढेर सारा प्यार दिया। और चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर और भी बड़े प्यारे प्यारे से मैसेज आए हैं, उनको भी हम जल्दी से शामिल करते हैं। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप भी कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ स्पेशल मम्मा को फील कराना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप जल्दी से बोल दीजिएगा, अपने दिल की बातें अपनी मम्मा तक पहुँचा दीजिएगा। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? आज़ाद नगर करूला मुरादाबाद से शहीद शारिक अली जी का मैसेज आया है, और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं इरशाद अंसारी जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कहते हैं कि दुनिया की हर कहते हैं कि दुनिया की हर सुकून की शुरुआत मन की गॉड से होती है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू मैम, एंड माय नेम इज सुहानी, एंड शिवपुरी मुरादाबाद से मैसेज पहुंचाती हैं। थैंक यू सो मच सुहानी, अपना प्यारा संदेश पहुंचाने के लिए। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है उमेश कुमार प्रजापति जी का, लोधीपुर मुरादाबाद से, और ये भी हैप्पी मदर्स डे विश कर रहे हैं टू ऑल मदर्स को, और कहते हैं कि मेरी रूह में मेरी जान है, तू ही मेरी अरमान है, दिल से तमन्ना है मेरी, ये माँ तुझे सलाम है, मंदिर भी तू, पूजा भी तू, लक्ष्मी भी तू, दुर्गा भी तू, मेरी दोस्त दिल से, अच्छा इन्होंने कहा है कि मेरे दोस्त दिल से झांक लो, इनमें बसा भगवान है तू, दिल से तमन्ना है मेरी, ये माँ तुझे सलाम है। अरे वाह क्या बात है, बहुत प्यारी सी लाइनें आपने लिखी हैं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है जिला अमरोहा नई बस्ती पतेह खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, एंड इन्होंने भी गुड मॉर्निंग पहुँचाया है, और साथ में इनके पूरी फैमिली पूरा परिवार रेडियो को इस वक्त सुन रहा है। तो चलिए श्रोताओं एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, उसके बाद हम लौट कर आते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप भी अगर कुछ पहुँचाना चाहते हैं आज, तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करो, जल्दी से पहुँचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर रहेगा 9837896896, और हमारे पास कुछ टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, तो उनको भी हम आएंगे तो शामिल करेंगे। क्या क्या पहुंचाया है हमारी प्यारी प्यारी से श्रोताओं ने, उनकी दिल की बातें भी हम सुनेंगे यहाँ पर। और दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं सुनवाती हूँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, एंड स्पेशली मम्मा पापा के लिए, तो आप भी इंजॉय कीजिएगा।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत सुना एंड फ्रॉम द मूवी जानवर से तेरंगनी जी की खूबसूरत सी आवाज़ में। और दोस्तों, नज़रें शहरों की भीड़ में हैं पर दिल गांव की मिट्टी को तराशता है। जिम्मेदारियों ने भले ही दूरियां कर दी हों पर माँ का आंचल आज भी सबसे महफूज साया है। वो एक्चुअली ना आपको मैं बताती हूँ दोस्तों, एंड जब बच्चे घर से दूर होते हैं ना, तब वो एहसास करते हैं हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन जहाँ पर हमने जन्म लिया है, जहाँ हम खिले कूदे हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं, वहाँ की चीज़ों को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और वो माँ की प्यारी प्यारी बातें, माँ की डांट एंड माँ की वो खुशी कैसे भूल सकते हैं, है ना? और माँ के हाथ का वो गर्मा गर्म खाना, ओए होए, बड़ा लजीज होता है, बहुत टेस्टी होता है। हम अपने हाथों से कितना भी टेस्टी खाना बना लें, कितना भी स्वादिष्ट हम कुछ भी नो उसको किसी भी तरह से बना लें, लेकिन वो स्वाद नहीं आता है जो मम्मा के हाथ में है। जो मम्मा के खानों की टेस्ट एक अलग ही होता है, खुशबू से ही ना आओ हो दौड़े चले जाते हैं, है ना दोस्तों? होता है ना? और हम भी बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि अभी हम मम्मा से दूर हैं, लेकिन हमने मम्मा से बातचीत की। सुबह ही मम्मा का कॉल आ गया, जैसे ही मैं उठी 6 बजे, आई रिमेम्बर, आज मैं थोड़ा सा लेट उठी, तो मम्मा का सुबह ही कॉल आता है। सबसे पहले बोलती हैं हेलो, मैंने बोला हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मम्मी ने कहा मैं ठीक हूँ राधे राधे, तुम बताओ अभी तक सोकर उठे हो अभी या सो ही रहे हो? मैंने कहा नहीं, अब सोकर उठ गई हूँ, आपका कॉल आ गया है ना। तो कहते हैं कि उठ जाओ बेटा, आज ऑफिस भी जाना है। मैंने बोला हाँ, आपको बहुत फिक्र है। कहती हैं क्या हुआ, दूर हूँ तो क्या हुआ, फिक्र तो रहती है ना बच्चों की। तो सुबह ही उठ के फिर मैंने उनको विश किया और मम्मा ने फिर से ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, दुआएं दी और बहुत सारा प्यार भी दिया। कहा कि अब उठ जाओ, बहुत सारे काम हैं आपको ही करने हैं और ऑफिस भी जाना है। मैंने कहा हाँ मम्मी, या तो आपने दिला दिया है, थैंक यू। एंड सुबह दिन इतना प्यारा हो गया, जब हम माँ से बात करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली दिन खूबसूरत हो जाता है। और हमारे पास एक बहुत प्यारा सा वॉइस नोट आया है, तो चलिए उनको बिना किसी देरी के जल्दी से हम प्ले करते हैं। क्या पहुंचाती है हमारी बड़ी प्यारी सी लिसनर एंड बहुत प्यारी मीठी सी आवाज है, तो सुन लेते हैं क्या पहुंचाती है आज की सुबह।
1: कैसे हो आप?
0: आई एम गुड।
1: हाय, गुड मॉर्निंग खुशी।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। ओहो, इनका वॉइस नोट जो आया हुआ है ना, बड़ा ही प्यारा है, लेकिन वो चलने में बड़े नखरे कर रहा है, लेकिन हम भी कम नहीं है। चलिए सुन लेते हैं क्या पहुंचाती है हमारी लिसनर्स।
1: वेल, कैसे हो आप? वेल, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल मदर्स। मेरी माय, हाय, गुड मॉर्निंग खुशी।
0: ओहो, ये टेक्निकल इशू बड़ा होता है दोस्तों। चलिए इस वॉइस नोट को हम अभी प्ले करेंगे। एक्चुअली ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम चाहते हैं कि वो अच्छे से करें, लेकिन गड़बड़ हो ही जाती है। कोई बात नहीं है, अभी प्ले करेंगे उस वॉइस नोट को, बहुत ही प्यारा सा आया हुआ है हमारे पास। उससे पहले एक और हमारे पास मैसेज आया है, उसको भी हम जल्दी से शामिल करते हैं यहाँ पर। ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं, बहुत ही प्यारी सी लिसनर है ये। मधु जी का मैसेज हमारे पास आया है और कहते हैं कि खुशी जी, आपने तो हमारा दिन बना दिया, सुबह सुबह इतने प्यारे प्यारे ट्रैक आपने प्ले किए, थैंक यू। एक वॉइस नोट और आया है, उसको भी प्ले करते हैं यहाँ पर।
2: हाय बी, केम छो, मजा माँ।
0: हाँ जी, बहुत अच्छे हैं।
2: हैप्पी मदर्स डे। और मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। माँ तो जन्नत का फूल है, माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है, माँ को नाराज करना इंसान की भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। दे मुझे सॉन्ग सुनना है मेरी माँ, और साथ में मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा कासमी, मेरी सिस्टर नजमा अपी, तरक्सा राबिया, रुकैया और आसिया।
0: थैंक यू सो मच अफरोज, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था अफरोज आपकी आवाज़ में जैसे आप अभी सोकर उठे हैं, थोड़ा सा उदास हैं, ऐसे बात कर रहे हो। हाँ, सुबह इतनी खूबसूरत है, एनर्जेटिक आवाज़ में मैसेज पहुंचाओ, एक और प्यारा सा हम सुनना चाहते हैं। वन, थैंक यू सो मच, आपने ये भी अपनी आवाज़ में बहुत प्यारा सा यहाँ पर अपनी आवाज़ में वॉइस नोट में इतना प्यारा मैसेज पहुँचाया है, दिल से शुक्रिया। एक और वॉइस नोट आया है, तो चलिए इसको बिना किसी देरी के सुन लेते हैं एवरीवन।
3: हाय,
0: एंड ये क्या पहुंचाती है, हाय गुड मॉर्निंग के अलावा इनका मैसेज जो है ना वो यहीं पर रुके जा रहा है, लेकिन अब नहीं रुकेगा, अब प्रॉपर हम सुनते हैं।
3: हाय गुड मॉर्निंग खुशी, कैसे हो आप? वेल हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल मदर्स मेरी साइड से। माँ एक ऐसी ब्लेसिंग्स होती है जो हर मुश्किल में अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती है। जब दुनिया समझ नहीं पाती तब माँ बिन बोले समझ लेती है, और मेरे लिए मेरी माँ मेरी स्ट्रेंथ, मेरा मोटिवेशन और मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है। आज अगर मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर पा रही हूँ तो उसमें उनकी दुआओं और उनकी सेक्रीफाइस का सबसे बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच मामा, लव यू, आपकी प्यारी सी बेटी सबा।
0: थैंक यू सो मच सबा, इतना प्यारा वॉइस नोट पहुंचाने के लिए दिल से शुक्रिया। और आपने जो लास्ट में बोला है ना, आपकी प्यारी सी डॉटर सबा, ये तो बहुत ही खूबसूरत था। नेहा मैम सुनकर खुश हो गई होंगी। और यहाँ पर एक और मैसेज हमारे पास आया हुआ है, और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं विकी सागर जी, गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। आर जी खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर दीपिका का आया है, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड इन्होंने बड़ा प्यारा सा अपना मैसेज यहाँ पर पहुँचाया है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के उसको भी यहाँ पर हम प्ले कर लेते हैं। एंड क्या पहुँचाती हैं ये, बड़ी प्यारी सी इन्होंने लाइनें लिखी हैं और कुछ कहना चाहती हैं, तो क्या कहना चाहती हैं ज़रा सुन लेते हैं उनकी बातें भी। कहती हैं कि खुशी जी गुड मॉर्निंग, आपका शो हम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कहती हैं कि सक्सेस मेरे लिए वो दिन होगा जब मैं अपनी मॉम से कह पाऊंगी कि मम्मा प्राइस मत देखो, जो पसंद है वो आप ले लीजिएगा, बस उस दिन लाइफ कंप्लीट हो जाएगी और मेरा ड्रीम भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी मम्मा को वो हर खुशी देना चाहती हूँ। एक्चुअली जो मम्मा ने मतलब लाइक सोचा भी नहीं, क्योंकि मम्मा ने हमें वो कुछ दिया है जो हमें कभी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब भी हमें मिलेगा। और आज हम जो भी यहाँ पर हैं, एंड आज मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, अरे वाह क्या बात है आप टीचिंग करते हैं। एंड इन्होंने कहा है कि मुझे मम्मा ने जब मैं मेरी एग्ज़ाम हुआ करते थे तो मम्मा रात रात भर जागती थी मेरे लिए, और मुझे उन्होंने बहुत गाइड किया, पढ़ाया, मेरे को बहुत सपोर्ट किया। एंड आज मैं और भी यू नो प्रयास कर रही हूँ लाइफ में कुछ और भी अच्छा करूँ, और इस मतलब इस मैं चाहती हूँ कि और सक्सेसफुल हो जाऊँ, और दुनिया की सबसे प्यारी बेस्ट बेटी मम्मा को मैं बनकर दिखाऊं, और जो मम्मा चाहती हैं वो सब मम्मा को मिल जाए। अरे वाह क्या बात है भाई, लड़की रुलाओगी क्या? हाँ इतना प्यारा प्यारा मैसेज करके यहाँ पर। चलिए एवरीवन मैं भी गाना सुनवाती हूँ, उसके बाद लौट कर आती हूँ, वरना पता चला कि खुशी यहाँ पर भर भर के आंसू टपका रही है, और फिर आगे कैसे कौन संभालेगा मुझे। स्टूडियो में तो मैं अकेली यहाँ पर हूँ, कुछ चुप भी नहीं कराएगा, इसलिए अभी ये गीत सुनते हैं उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit kijiye Yokohama Club Network. Chawla tires aur Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
3: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
2: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 9412-111-111.
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
8: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
7: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
8: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
7: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
9: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: Japanese tire expert for over 100 years. Yokohama, ab Moradabad mein. Visit TJ Yokohama Club Network. Chawla tires or Pi premium tires ki wide range. Alloy wheels, 3D wheel alignment, road force wheel balancing and nitrogen gas services.
7: Free assured gifts on purchase of 4 Yokohama tires.
6: Visit Yokohama Club Network. Chawla tires, Kant Road, Madhubani Park, Moradabad. Call 94122-1111.
8: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
9: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
10: कॉल 8826213131।
11: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को बताया कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं, उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नार्कोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ। राजेश कुमार, आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
12: क्या?
11: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे, अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
12: मैं क्या करूं साहब?
11: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
12: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
11: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सब खुशी स्वागत करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, देखिए, इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। स्मार्टफोन आजकल सभी के हाथ में है, छोटे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक सभी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोबाइल इस्तेमाल करने के साथ साथ जानकारियां भी होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं और कुछ जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि कभी भी कोई ऐसा लिंक आ जाता है जिस पर वो क्लिक करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं एंड कुछ फेक कॉल्स भी आते हैं। तो उससे रिलेटेड आपने ये मैसेज अभी सुना और सुनकर आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली होंगी। दोस्तों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ संदेश यहाँ पर आए हैं उनको भी जल्दी से शामिल करते हैं। हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने क्या क्या पहुँचाया है एंड एक मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, यहाँ पर ममता जी का, और ये टेक्स्ट मैसेज हमें पहुँचाती है। कहती हैं, राधे राधे मैम। ममता सैनी जी का ये मैसेज हमारे पास मुरादाबाद से आया है और कहती हैं, मैम कुछ शब्द हैं ममा के लिए, जो सर पर हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, जो माँ मुस्कुराए तो जन्नत मिल जाए। अरे वाह, क्या बात है, दो लाइनों में इतनी गहरी बातें आपने लिख दी हैं। थैंक यू सो मच, ये प्यारा सा मैसेज आपने पहुँचाया है ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन नगर मुरादाबाद से ही मैसेज पहुँचाती हैं। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सैयद शारिक अली जी का, और ये भी मदर्स डे विश कर रहे हैं सभी ममास को। एंड मैं भी कहना चाहती हूँ श्रोताओं कि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो दुआ है जो बिना मांगे भी हमारी सलामती मांगती है। वो छांव है जो धूप में रहकर भी बच्चों को ठंडक देती है। आज मदर्स डे पर दुनिया की हर माँ को दिल से सलाम, जो अपने बच्चों की मुस्कान में ही अपनी खुशी ढूंढ लेती है। माँ के कदमों में वो जन्नत है जहाँ हर दर्द को सुकून मिल जाता है। सभी माताओं के लिए एक प्यारा सा संदेश, खुद का भी ख्याल रखिए, क्योंकि घर की खुशियाँ आपकी मुस्कान से ही रोशन होती हैं। एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल वंडरफुल मदर्स। आप सभी के लिए ये प्यारा सा संदेश, आप सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि गर्मियों का सीज़न है एंड इस मौसम में अपना अच्छे से ध्यान रखिए और खुश रहिए। खुशियाँ तो आप सभी के लिए बांटती ही हैं, लेकिन आप भी खुश रहिए और मुस्कुराती रहिए। हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन टू ऑल मदर्स। एंड श्रोताओं, अब मेरे जाने का भी वक्त हो गया है। जाने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा, जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे। और आई होप आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। बस इसी बातों के साथ अब मैं आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति। मिलूंगी आपको मैं बहुत जल्द, तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
4: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन

0: कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किससे पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए। हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना। उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना ही होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है। यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूँ अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसों वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए, छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षात करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दोगुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे, पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार, संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा? इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी। मैं बेटी के साथ गई थी, पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है। जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुप्पी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है, पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें?
1: यही तो हुआ मेरे साथ। एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो, पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है, पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा समझ नहीं तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा। किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुँचाना भी जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
0: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र PHC CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे ही राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
0: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपने पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नई अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे, वे हमेशा कहती हैं हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
0: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
0: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ कही, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है, जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है, इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
2: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है, व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है, क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
0: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
2: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
0: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
0: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
2: टायर लो सोना जीतो।
0: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रीना। दोस्तों सोचिए, अगर हमारी थाली में हरी सब्जियां, दालें और दूध जैसी चीजें गायब हो जाए तो क्या होगा? कमजोरी, थकान और बीमारियां हमें घेर लेगी, है ना? लेकिन अगर हमारी थाली में रंग बिरंगी हो, हरी सब्जी, पीली दाल, लाल टमाटर और सफेद दूध से भरी हुई, तो सेहत भी खिल उठेगी और जिंदगी भी। तो आज सेहत से ही लाभ कई में हम बात करेंगे पोषण की, यानी स्वस्थ जीवन की असली चाबी। इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस कड़ी के एक बहुत नित्य साथी सेहतिया जी। सेहतिया जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, और मुझे उम्मीद है हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे होंगे। मुझे आपकी यही बात अच्छी लगती है कि आप हर बार एक नई थीम लेकर आती हैं हमारे श्रोताओं को, और इस बार तो सबसे जरूरी पोषण। अगर हम पोषण अच्छा लेना शुरू कर दें तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी और हम ऐसे ही काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। हमने सोचा जब पूरे देश में राष्ट्रीय

0: पोषण सप्ताह 2025 में मनाया जा रहा है तो हम क्यों पीछे हटे अपने श्रोताओं को बताने से?
1: आरजे जी, यही तो रेडियो की खूबी है कि आप अपने श्रोताओं को हर जानकारी हमेशा जोड़ कर रखते हैं। आप अपने श्रोताओं को हर जरूरी जानकारी से हमेशा जोड़ कर रखते हैं। पोषण की बात चल रही है तो मुझे अपने गाँव की घटना याद आ रही है। हमारे गाँव में एक नन्ही सी बच्ची है, त्रिशा, घर की इकलौती और सबकी लाडली। प्यार इतना ज्यादा था कि घर के बड़े बुजुर्ग भी मना करते थे, मगर उसके माता पिता और उसके रिश्तेदार हर रोज उसे चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे के और पैकेट वाले खाना ला लाकर खिलाते थे। सोचिए, मासूम बच्ची जब खुश होकर खाती थी तो किसी ने रोकना ठीक नहीं समझा। लेकिन अचानक से ही उस बच्ची के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और हालत ये हो गई कि लगातार उल्टियां होने लगी। परिवार घबरा गया, डॉक्टर के पास उसको लेकर गए। कई दिनों तक इलाज चला। डॉक्टर ने साफ दिया, इस बार बाहर का जंक फूड बिल्कुल मत देना, वरना हालत और भी बिगड़ सकती है। देखा आपने, थोड़ा सा स्वाद, थोड़ी सी लापरवाही और बच्ची की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है।
0: हाँ, हम अपने श्रोताओं को ये गलती नहीं करने देंगे।
1: जी, चलिए बिना देरी के अब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात करते हैं और इसकी थीम है सही आहार बेहतर जीवन, यानी ईट राइट फॉर बेटर लाइफ।
0: तो आप हमारे श्रोताओं को सही बताइए कि सही आहार का मतलब आखिर है क्या और ये हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाता है।
1: सच कहूँ रीना जी, तो पोषण का विषय हर परिवार के लिए उतना ही जरूरी है जितना घर की नींव। बिना सही पोषण के कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि ये राष्ट्रीय सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई?
1: देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में हर साल 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और तब से लगातार इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, लोगों को जागरूक करना है और सही और संतुलित खानपान और पोषण से ही स्वस्थ जीवन संभव है। और इस साल सन 2025 का थीम है ईट राइट फॉर बेटर लाइफ। इसका मतलब है कि अगर हम सही खानपान अपनाएंगे तो न केवल बीमारियों से बचेंगे बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे।
0: वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन सिहतिया जी, जब हम पोषण की बात करते हैं तो अक्सर सुनते हैं कि भारत में बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: जी आरजे रीना जी, बिल्कुल। भारत में कुपोषण अभी भी एक गंभीर चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के आंकड़े हमें बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 35.5% बच्चे अवरुद्ध यानी कम लंबाई के हैं और 19.3% बच्चे यानी उनका वजन कम है और 32.1% बच्चे अंडर वेट हैं। यही नहीं, अमीनिया यानी खून की कमी भी सबसे बड़ी समस्या है। 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में 67%, 5 बच्चों में 59% किशोरियों और लगभग 57% महिला अमीनिया से पीड़ित हैं।
0: ओहो, ये तो सचमुच चिंता की बात है। तो क्या इसका असर सिर्फ शरीर पर होता है या फिर पढ़ाई लिखाई और काम काज पर भी पड़ता है?
1: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल असर पड़ता है। कुपोषण से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं। वो जल्द ही बीमार पड़ते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग, आगे चलकर वो समाज और देश की प्रगति में भी पूरा योगदान नहीं दे पाते। एक कुपोषित बच्चा बड़ा होकर भी एक कमजोर रहता है और अक्सर बीमार रहता है।
0: ठीक है, अब ये बताइए कि सही पोषण का मतलब क्या है, हमारी थाली में आखिर क्या क्या होना चाहिए?
1: बहुत ही अच्छा सवाल आरजे रीना जी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने इसके लिए गाइडलाइंस दी हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी थाली संतुलित होनी चाहिए। इसमें 3 बड़े हिस्से जरूरी हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल, रोटी, आलू और अनाज, जो हमें ऊर्जा देते हैं।
0: सेहतिया भैया, प्रोटीन का भी और विटामिन का भी तो बताइए।
1: हाँ हाँ अर्जेरीना, बताता हूँ। एक तो तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है, तो श्रोताओं, दूसरा प्रोटीन, जैसे दाल, अंडा, दूध, मछली और मांस, जो शरीर की मरम्मत और विकास में काम आते हैं। और तीसरा विटामिन और मिनरल्स, जो फल और सब्जियों से मिलता है, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं।
0: ये सब तो काफी अच्छी जानकारी है, पर सेहतिया जी, लोग सोचते हैं तेल घी से मोटापा और हृदय की बीमारी होती है। खैर, हमारा मन तो अटपटा चटपटा खाने से मानता ही नहीं है।
1: हाँ भाई, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, पर कभी कभार तो चल जाता है। हमारी रोजमर्रा की थाली में थोड़ी मात्रा में तेल घी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। नमक 6 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सबसे जरूरी, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
0: तो क्या इसका मतलब है कि हर इंसान को दिन भर में लगभग कितनी कैलोरी लेनी चाहिए?
1: बहुत ही अच्छा सवाल अर्जेंटीना जी। प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में 2000 से 2500 कैलोरी की जरूरत होती है, लेकिन उम्र, लिंग और काम के अनुसार बदलता है।
0: अच्छा सेहतिया जी, इतना सब कुछ बताया तो ये भी हो सकता है कोई सही मात्रा में ना ले पोषण, तो सभी अंगों का कितना भाग होना चाहिए?
1: प्रोटीन लगभग 50 ग्राम रोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कुल ऊर्जा का 55 से 60% होना चाहिए और वसा यानी फैट 30% से ज्यादा नहीं। साथ ही 25 से 30 ग्राम फाइबर रोज लेना जरूरी है, जो हमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज से मिलता है।
0: वाह, अब ये सबके लिए बड़ी उपयोगी जानकारी है, लेकिन क्या सिर्फ संतुलित आहार से ही सब ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा? सरकार भी तो कई कार्यक्रम चला रही है।
1: बिल्कुल, सरकार कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है, जैसे एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB। इसका लक्ष्य है बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया कम करना। इसके लिए आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं और समय समय पर कीड़ों की दवा दी जाती है और जागरूकता फैलाई जाती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस यानी NDD, इसमें स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को साल में 2 बार अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है, उनके पेट में कीड़े ना पनपे।
0: और वो माँ करके एक प्रोग्राम था वो?
1: अरे हाँ हाँ भाई, वो भी बता रहा हूँ, माँ का स्नेह माँ कार्यक्रम। इसका मकसद है कि हर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध पीना शुरू करें और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। लैक्टेशन मैनेजमेंट सेक्टर्स LMCS, यह बीमारी या समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए माँ का दूध सुरक्षित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। पोषण पुनर्वास केंद्र यानी NRCS, ये ऐसे बच्चों के लिए है जो गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। यह उन्हें इलाज और पोषण यहाँ उन्हें इलाज और पोषण दोनों दिए जाते हैं।
0: सेहतिया भैया, आप एक और भूल रहे हैं, विटामिन ए वाला एक प्रोग्राम था ना?
1: अरे हाँ भाई हाँ, वहाँ भी पहुँच रहा हूँ। और आखिर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, 5 साल से छोटे बच्चों को हर 6 महीने पर विटामिन ए की खुराक दी जाती है।
0: वाह सेहतिया जी, आपने तो सारी जानकारी एक साथ दे दी, लेकिन हमारे गाँव में लोग अक्सर कहते हैं कि फल और सब्जियाँ महंगी है, तो क्या पोषण सिर्फ अमीरों के लिए है?
1: आरजी रीना जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोषण हर किसी के लिए है। हमारी लोकल और मौसमी चीजें जैसे चना, मूंगफली, दालें, गुड़, हरी सब्जियां और मौसमी फल, ये सब बहुत पौष्टिक होते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं है। जरूरी है कि हम इन्हें रोज अपनी थाली में शामिल करें।
0: बहुत बढ़िया सेहतिया जी, हमारे गाँव और मोहल्ले में लोग पोषण को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, कई बार समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। क्यों ना आप आज हमारे श्रोताओं को कुछ आम मिथकों की सच्चाई बता दीजिए।
1: जी बिल्कुल अर्जेरीना, ये तो जरूरी है। चलिए कुछ बड़े मिथक की परत खोलते हैं।
0: सबसे पहले तो यही सुना है, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खाना खाना चाहिए, चाहे जैसा भी हो।
1: देखिए, ये पूरी तरह गलतफहमी है। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा नहीं बल्कि संतुलित और पौष्टिक भोजन चाहिए। अगर वह सिर्फ तली भुनी चीजें या सिर्फ चावल रोटी खाएंगी तो माँ और बच्चा दोनों कमजोर रहेंगे। थाली में हरी सब्जियाँ, दालें, दूध, फल और अनाज सब होना चाहिए।
0: ठीक है, अब दूसरा मिथक, लोग कहते हैं बच्चों को 6 महीने से ऊपर ही ऊपर का दूध या खाना देना चाहिए।
1: अरे नहीं आरजेरीना जी, WHO और भारत सरकार दोनों की गाइडलाइन साफ कहती है कि बच्चे के जन्म के पहले 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, यही उसका सबसे और पर्याप्त पोषण है। ना पानी, ना शहद, ना ऊपर का दूध, सिर्फ माँ का दूध।
0: अब सुनिए तीसरा, लड़कों को दूध, घी और फल ज्यादा देना चाहिए, लड़कियों को उतना ही जरूरी नहीं।
1: यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है, यही लैंगिक भेदभाव और बच्चों की सेहत बिगाड़ता है। सच्चाई ये है कि लड़के और लड़कियां दोनों को बराबर का पोषण मिलना चाहिए। किसी को कमजोर रखने का मतलब पूरे परिवार और समाज को कमजोर करना है।
0: बहुत सही, लेकिन एक और मिथक है, मीठा और जंक फूड बच्चों की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस दांत खराब करता है।
1: नहीं आरजे रीना जी, ये तो सबसे खतरनाक सोच है। लगा लगातार मीठा और जंक फूड बच्चों को मोटापा, डायबिटीज और पेट की बीमारियां देता है। सिर्फ दांत ही नहीं, पूरा शरीर बीमार हो जाता है।
0: अब अगला मिथ, पानी या दाल में डाला गया आयरन फॉलिक एसिड पाउडर दवा है और इसे साइड इफेक्ट होगा।
1: बिल्कुल गलत, यही सुरक्षित पोषण सुधार तकनीक है। खाना खाने का स्वाद नहीं बिगड़ता और शरीर को जरूरी आयरन मिलता है, इससे बच्चे और महिलाओं में अमीनिया कम होता है।
0: ठीक है, एक और सुना है खून की कमी सिर्फ औरतों को होती है, पुरुषों को नहीं।
1: गलत फहमी, ये भी गलत फहमी है। अनीमिया पुरुषों में भी होता है, बस दर महिलाओं और बच्चों में ज्यादा। खून की कमी किसी को भी कमजोर बना सकती है।
0: और आखिरी मिथक, नाश्ता छोड़ने से वजन कम होता है।
1: ये तो सबसे बड़ा झूठ है रीना जी। नाश्ता छोड़ने से शरीर थका थका रहता है और दिन भर इंसान ज्यादा खा लेता है। यह सच्चाई है कि नाश्ता करने से वजन नियंत्रण रहता है और सेहत अच्छी रहती है।
0: वाह सेहतिया जी, आपने तो आज पोषण से जुड़े सारे मिथक तोड़ दिए। मुझे लगता है हमारे श्रोता अब और ज्यादा जागरूक हो गए हैं। अब अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर?
1: आरजी रीना जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सही पोषण ही असली धन है। अगर हम अपने बच्चे और परिवार को संतुलित आहार देंगे तो बीमारियाँ कम होंगी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी। इसलिए सब लोग इस सप्ताह यह संकल्प लें कि हम अपनी थाली को रंग बिरंगी और संतुलित बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तो तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कहीं।
0: वाह सेहतिया जी, आज आपने बहुत ही काम की बात बताई। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1 सितंबर से लेकर यानी कि 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, यानी कि पोषण। हमें अपने डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो शामिल करने चाहिए जिससे हमें यानी कि एनर्जी मिले और हमारे बाल भी सही रहे और हमारे स्किन भी सही रहे। कहते कि हेल्दी खाना ही आपको हेल्दी रखता है। तो आज मेरे साथ कनेक्ट है डॉक्टर किरण मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए।
2: मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, महिला चिकित्सालय में और मुरादाबाद में, और हमारा SNCU का वो है मेनली। तो हम यूनिट्स को देखते हैं, 28 दिन तक के बच्चे सारे हमारे पास ही आते हैं और साथ में लैक्टेशन यूनिट भी है हमारा। तो उसमें हमारा मदर का भी हमारा पूरा होता है, KMC का भी हमारा यूनिट है जिसमें कि हम बच्चों को गर्म करना और कैसे उनको गर्माई दे करके लो बर्थ वेट को हमारे को सही करना है।
0: ओके मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक आखिरकार मनाया क्यों जाता है? ये
2: हमारे पास पोषण वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से सरकार भी ये प्रयास करती है कि इस तरह के वीक्स अगर वो बनाते हैं तो हर जना सेम टाइम पर पे उस चीज को पोटेंशिएट कर देता है, उस बात को, उस हमारे जो भी हम एक थीम को लेकर के चलेंगे। तो पोषण वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत है, क्योंकि भुखमरी भी काफी है।
3: बिल्कुल,
2: और गरीब लोग भी काफी हैं, है ना। एंड दूसरा, अमीर भी हैं तो दे डोंट नो द स्टाइल ऑफ ईटिंग, तो वो फिर ज्यादा वो मीडिया और उसके हिसाब से जैसे जो चीजें ज्यादा पब्लिसाइज हो रही हैं उस पे चले जाते हैं। तो मतलब ओबेसिटी भी कुपोषण है, ओवरवेट होना भी
3: बिल्कुल
2: कुपोषण है और अंडरवेट होना भी कुपोषण
3: है।
2: तो वी कैन नॉट से कि कोई अमीर है तो वो वेल न्यूट्रिश्ड है ना, वेल नरिश्ड है, क्योंकि उसके अंदर भी हमारा हम देखें तो वो बच्चे ओवरवेट हैं, क्योंकि उनका जो मोड ऑफ ईटिंग है एंड चॉइस ऑफ ईटिंग है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इस वजह से कुपोषण दोनों हर लेवल पे, हर जगह पे हमारे को मिल रहा है।
3: तो मैम, जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने डाइट में, रेगुलर डाइट में ऐसा क्या शामिल करना चाहिए जिनसे उनको एनर्जी मिले, और डाइट में अपने क्या क्या ऐसी चीजें जो शामिल करें वो?
2: देखिए, जो भी हम जिस भी लोकेलिटी में रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, जो वहाँ का लोकल फूड है वो हमारे लिए बेस्ट डाइजेस्टेबल है। जो फ्रूट है वो क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से है, क्योंकि वो महंगा है इसलिए वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। जो सीजनल फ्रूट होगा, भले ही वो अमरूद हो, वो केला हो, है ना, जिस सीजन में जो चीज हो रही है, एप्पल है तो एप्पल का हमें लेना है। सीजनल फ्रूट अगर हम लेंगे तो उसमें हमारे को सारे विटामिन एंड जितना भी उसका मिनरल्स अगर मिल रहे हैं वही मिलेंगे। सेम चीज हमारे पास वेजिटेबल्स के लिए है, जितनी फ्रेश होंगी एंड जितनी टाइमली हम उसको यूज कर लेंगे। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि मंडी से गए, वहां से मतलब खेत से आया तो मंडी पे आया,
3: हाँ जी,
2: ठीक है, फिर मंडी से वो मार्केट में आया, मार्केट से हमारे फ्रिज में गया, फिर मंडी हम धीरे धीरे ओवर अ वीक हमने से खाया, तो जितना वो स्टेल होता चला जाएगा, पुराना होता चला जाएगा, उतना उसके जो मिनरल्स एंड जो उसकी पौष्टिकता है वो चीज कम होती चली जाती है। इसलिए हमारे को हर चीज कोशिश करनी की फ्रेश खाएं, जो भी हम खाएं, जैसे हमारे सिस्टम में है रोटी सब्जी दाल चावल, हम दाल लें या नॉन वेज लें, प्रोटीन हमें उसी से मिलता है, ठीक है, दूध दही फल एंड सैलड, ये अगर हमारे न्यूट्रिशन, जैसे हमारा ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन है जो हमारी थाली बनती है, तो वो सबसे अच्छा फूड है, चीपेस्ट भी है एंड बैलेंस्ड भी है। जितना हम अलग अलग चीजों में जाते हैं, जितना ये फास्ट फूड्स आ गए, ठीक है, विच इज कॉल्ड जंक फूड, तो वो वाकई में जंक है, बिकॉज उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं है और उसमें हमारे पास अमाउंट ऑफ फैट एंड चीज ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, तो वो पब्लिसाइज इतना हो गया है मीडिया, उसमें एडवर्टीजमेंट उसकी वजह से ना, तो बच्चे उसकी तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट हमारे को उनको इस चीज को एजुकेट करना चाहिए। सरकार ने तो अपनी तरफ से अच्छा कर रखा है, क्योंकि साइंस जब से भी स्टार्ट होती है फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर हमेशा न्यूट्रिशन एंड डाइट ही होता है, तो दैट इज एन अवेयरनेस जो कि बच्चे को अपने स्कूल में ही मिल रही है, टीचर से ही मिल जा रही है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, और उसमें वो समझ में आता है उनको कि क्या क्या चीजें उनको किस तरह से मिल रही है, बैलेंस डाइट क्या है, वो सारा स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। अब इस वीक में हमने उसको और पोटेंशिएट कर दिया, हमने और अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन कर दिया, तो उन्हें मीडिया में भी सुनने को मिल गया,
3: हाँ जी,
2: जो कि एक मीडिया की तरफ से कोई मैसेज आता है तो बच्चे काफी अटेंटिव हैं, मोर ऑन द मीडिया, और एज के हिसाब से हम लोग रिलेटिवली काफी कम उसको यूज करते हैं, तो ये एक मैसेज हमारा बड़ा अच्छा सा जाता है उससे।
3: तो मैम, जो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाती हैं, उनके लिए डाइट कितना जरूरी है और अपने डाइट में ऐसा क्या शामिल करें ताकि बच्चों को भी पोषण मिले और उनको भी पोषण मिले?
2: जैसे पूरी प्रेगनेंसी रही तो सब वो जो भी न्यूट्रिशन बच्चे को मिला वो मदर से ही मिला,
3: हाँ जी,
2: अब डिलीवरी के बाद भी उसको मदर से ही मिलना है, तो इस वजह से मदर अब डबल तो खा नहीं सकती,
3: बिल्कुल,
2: इसलिए हमारे को कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनसे हमें सप्लीमेंट करना होता है, उसमें हमारे पे ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, है ना, मिल्क आ जाता है, जो चीज वो इजिली ले ले, कंज्यूम कर ले, और उसको हमें ध्यान देना है कि उसकी डाइट में प्रोटीन्स भी अच्छी हो, दो बार मुंह से डाल दें, दलिया दें, ठीक है, क्योंकि दलिया में हमारा फाइबर्स भी आ जाता है, और जिसमें फाइबर आएगा साथ में विटामिन्स भी आ जाते हैं,
3: बिल्कुल,
2: ठीक है, साथ में हम फ्रूट्स दे सकते हैं जो भी सीजनल फ्रूट्स हों, एंड ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, जैसे बोले, बस हमें इतना ध्यान रहना पड़ता है कि जो सिजेरियन वाले हैं, क्योंकि उनमें हीलिंग होनी है, जितने टाके हैं, तो उसमें जो फैटी चीजें हैं, ऑयली चीजें हैं, घी का इस्तेमाल संभल के कर लें, बाकी और चीजें ले सकते हैं।
3: और ऐसी क्या चीज है जो उनको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए?
2: कोई चीज ऐसी नहीं है नहीं लेनी चाहिए, ये जो हमारे सिस्टम में बना हुआ है परहेज फॉर 3 मंथ्स, और कितनी मदर आज तक भी ऐसी आती हैं जो कि सिर्फ मूंग की दाल खा रही है 3 महीने, विच इज इम्पॉसिबल, कोई जना 3 महीने मूंग की दाल लगातार खाए तो वो खा ही नहीं सकता, है ना,
3: बिल्कुल,
2: अल्टीमेटली अवॉइड ईटिंग इट। और हमारा जो बच्चादानी है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज बिल्कुल डिफरेंट, है ना, तो बच्चा डिलीवर हो गया, बच्चादानी अपनी जगह पे आ गई, नसें बंद हो गई 42 डेज में, है ना, तो हमारा 6 वीक्स का जो है उस बीच अगर हमें परहेज करना है तो हम ठंडे का कर लें। आप ऐसे मान लो कि नसें खुली हैं, अगर उनको करना भी है तो ठंडी वाली चीजें, बर्फ की चीजें, कोई भी ऐसी चीज है फ्रिज व्रिज की रखी हुई, उसका परहेज कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फूड में दे कैन ईट एवरीथिंग, सब कुछ डाइजेस्ट होता है, इसे कोई ऐसा परहेज नहीं है कि हमारे को सिर्फ मूंग मसूरी खानी है 3 महीने के लिए, कुछ करनी है नहीं, उससे क्या है, मतलब मदर का तो न्यूट्रिशन हमने खराब करी थी, उसका दूध भी नहीं अच्छा उतरेगा।
3: अच्छा अच्छा,
2: जितनी अच्छी डाइट उसकी होगी उतना ही हेल्दी उसका मिल्क भी होगा, वही चीज है, क्योंकि 6 मंथ तक हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं, ठीक है, तो बच्चे को हमें कुछ भी नहीं देना है, तो वो टोटल डिपेंड करे, उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगा,
3: हाँ जी, हाँ,
2: ठीक है, तो मदर का हम जितना न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगे तो उतना हमारा बच्चा ही तो हेल्दी होगा।
3: और जो हमारे जो ओल्ड बुजुर्ग होते हैं मैम, उनको एक्चुअल में जो सही डाइट है उनके लिए, बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि उनके दांत भी टूट जाते हैं, तो उनको ऐसा डाइट में क्या शामिल करना चाहिए जिससे उन्हें दिक्कत भी ना और पूरी हेल्दी, यानी कि पूरी अच्छे से पोषण उनको मिल जाए?
2: देखिए, डाइट तो बेसिकली वही है, है ना भाई, हमारा जल्द है, दाल है, सब कुछ। तो ये हम कर सकते हैं कि मतलब बहुत हैवी वाली चीजें उनको ना दे, क्योंकि थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो आई जाती है उनको विद टाइम। तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको हमने जैसे खिचड़ी के फॉर्म में दे दिया, उसी में हमने वेजिटेबल्स भी मिला दी, ठीक है, हमने रोटी या कुछ बोती तो हमने उनको दे दिया दाल में, क्योंकि प्रोटीन्स की कमी होती है मेनली एज के साथ। रोटी तो वो खा ही लेते हैं पर प्रोटीन्स का इतना वो ध्यान नहीं रखते, सब्जी अपना मन के हिसाब से खा ली। एंड ओल्ड एज एक बड़ी ही डेलिकेट एज है एज अ चाइल्ड विद ईगो, मतलब अपना चाहते भी हैं, अटेंशन देना भी पड़ता है, नहीं दे पाए तो नाराज भी हो जाते हैं, है ना? पर बच्चे को थोड़ा डर होता है।
3: हाँ, बिल्कुल जी।
2: और उनसे हम डरते हैं है ना, ये डिफरेंस होता है।
3: बिल्कुल जी।
2: इसलिए इट इज अ वेरी नाइस थिंग कि

0: हमारे को उनको प्यार से भी रखना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, डांट भी खानी पड़ती है, पर यह है कि मतलब उस हिसाब से उनको बस उनकी उन्हें एक अफेक्शन मिल जाए, उन्हें टाइम मिल जाए हमारा।
1: तो मैम हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि मोटापे और कुपोषण से बचने के लिए हमें क्या करना है?
0: देखिए मोटापा हटाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे को खाना बंद कर देना है, ठीक है, डाइट प्लान्स चल रहे हैं, बिल्कुल भूखे रहते हैं वो, या तो आप उस चीज को बिल्कुल ही किसी डाइटिशियन के अंडर ही करें, ठीक है। मेन थिंग इज जो हम खा रहे हैं, हमारी लाइफ इतनी स्टैग्नेंट हो गई है, ठीक है ना, तो हर चीज तो अब आप सोचिए बाहर निकलो तो वो खेलने की जगह नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: दे आर नो फील्ड्स, तो बच्चे खेले तो कहाँ खेले, छत पे खेलते हैं या घर पे खेलते हैं या मोबाइल पे खेलते हैं,
1: छत पे भी खेलने से मना करते हैं।
0: हाँ वही वहाँ भी गिर जाते हैं बच्चे, भी एरिया ना अटेंडेंट हमेशा चाहिए उन्हें देखने के लिए, बाहर रोड में नहीं खेल सकते, ट्रैफिक इतना है, बाहर कहीं दूर जाएं तो बच्चे चोरी हो जाते हैं, है ना, तो पेरेंट्स वैसे भी डर के मारे भेजना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा मेन थिंग ये है कि एक्टिविटी कोई हो जाए, मतलब जो हम खा रहे हैं वी शुड हैव अ बैलेंस डाइट, खाना सब कुछ है, साथ में हमारे को उसको बर्न आउट कर देना है, तो बच्चे कोई साइकिलिंग कर लें, डांस कर लें एक घंटे का, है ना, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लें जिसमें कि उनको पसीना आए, ठीक है, और वो कंटिन्यूस हो, एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज कर लें, ठीक है, और अगर पॉसिबल है तो जिम कर लें, एनीथिंग, मतलब एक्सरसाइज करनी है, जरूरी नहीं हम जिम जाए तभी हमारी एक्सरसाइज होगी, घर पे भी कर सकते हैं, या अपना खेल लें कुछ एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी हो जिसमें कि हमारी वो एनर्जी बर्न हो, है ना, तभी वो हटेगी। नहीं खाने से हमारा बीएमआर कम हो जाता है और वो दोबारा वेट गेन करता है।
1: अच्छा अच्छा, मतलब डबल वेट गेन करता है वो।
0: मतलब बीएमआर क्या करता है, बीएमआर इज हमारे बर्निंग ऑफ द कैलोरीज वी आर ईटिंग, तो उसमें हमने क्या करा, जब हमने अपनी कैलोरीज कम कर दी, 1000 से भी कम कर दी, अब हमारी बॉडी में बीएमआर भी कम हो जाएगा अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है, तो बीएमआर कम हो गया मतलब अब हमारी रिक्वायरमेंट कम हो गई, हम जितना खा रहे हैं उतना भी बर्न आउट होकर के कंज्यूम नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उसके बाद अबव दैट जो हमने खाया वो फिर हमारा वेट गेन नहीं आ जाएगा, ठीक, इसलिए इट इज नेसेसरी कि खाना हम पूरा खाएं जितनी हमारी डाइट बनती है 1500-2000 कैलोरीज तक का, ठीक है, और उसके बाद उसको हम बर्न आउट भी करें, एल्डर्स हैं वॉक कर लें,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, और बच्चे हैं तो डांस कर लें, साइकिलिंग कर लें, एक्टिविटी कर लें, खेल कूद करें, मतलब अच्छा प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी।
1: एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे?
0: खाना तो हमें बैलेंस ही खाना है, एंड जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है दैट इज द बेस्ट, दैट इंक्लूड रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और सारा हमारा सैलेड, यही बैलेंस्ड है।
1: थैंक यू मैम।
2: आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, सही पोषण बेहतर जीवन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे और सेहतिया जी को अनुमति।
3: नमस्कार।

0: होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
5: टायर लो, सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।

0: हे नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, हमारी जो सोच है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जिंदगी को, लाइफ को मस्त और झकास बनाने के लिए, है ना रीना। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो सब कुछ हम अच्छे से कर पाएंगे, अच्छा ही होगा और अच्छा भी कर पाएंगे, है ना। तो देखिये ये जो प्रोग्राम है ना ये सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है, और चाहे आप विमेन्स हैं या फिर आप मेन्स हैं या आप बच्चे हैं या आप युवा हैं, ये जो कार्यक्रम है वो आप सभी के लिए है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी राय अपने विचार रख सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, बिल्कुल हम आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो रीना तुम कैसी हो पहले ये बताओ।
1: आनंद मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ। आई होप कि तुम बहुत अच्छे
0: हो। अच्छा हूँ यार मैं। और देखो दोस्तों, मैं और रीना आए हैं चटपटी बातें लेकर। तो रीना हमारे शो का नाम है सोच बदलो, ये डेली हम प्रसारित करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्या मानना है, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा या नहीं?
1: अरे बिल्कुल, अगर हम सोच बदलेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा और हमें जो आसपास सुन रहे हैं उनकी भी सोच बदलेगी, फिर वो एक दूसरे तक बताएंगे कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो आज सोच बदलो का जो टॉपिक है वो है भैया ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बचें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक पे बात करना। तो जितने भी हमारे इस वक्त दोस्त हमारे प्रिय मित्र रेडियो से जुड़े हैं बिल्कुल जुड़े रहिएगा। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद में रीना वापस आएंगे। उसके बाद हम इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं। तमाम जानकारियां हैं आज आपके लिए इस प्रोग्राम में, तो आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। श्रोताओं आई लव यू।

0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो श्रोताओं, आज हम मुद्दा लेकर आए हैं आपके लिए कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। रीना, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया है, हर इंसान जो है डिजिटली आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को जो है अब डिजिटली ग्रो करना है, मतलब सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल तो लेने देने का सीन भी ऑनलाइन हो गया। और इसी बीच तमाम सारे जो हैकर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनकी भी कतार मार्केट में बढ़ती जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं
1: ज्यादा बढ़ रही है
0: जी। जो फ्रॉड के मामले रही ना, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई सीन या कोई कहानी या किस्सा है तुम्हारे साथ या कभी हुआ हो? हाँ तो रीना, वही मैं आपसे पूछ रहा था, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो?
1: देखो, मैं किसी और से किसी और की कहानी बताने से पहले मैं अपनी बता देती हूँ।
0: बता, बिल्कुल बता यार।
1: एक्चुअली ये हुआ ना कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, कपड़े बहुत खरीदती हूँ,
0: सभी करते हैं।
1: हाँ, तो मेरे को ना, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा बहुत अच्छे से सूट के, जो उन्होंने अपना खुद का पेजेस बना रखा था कि यहाँ से सूट ऑर्डर करो और कम दाम में आपको अच्छे सूट मिलेंगे। तो उन्होंने ऑफर डाला था कि 500 में आपको दो सूट मिलेंगे, अगर आप 1000 डालते हो तो आपको 5 सूट मिलेंगे। तो मैंने सोचा वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने उन्हें मैसेज वगैरह किया, तो मैंने जो भी सूट लेने थे मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको इतने इतने पेमेंट करने पड़ेंगे। मैंने पेमेंट कर दी 1000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरा ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम चेक करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपने जो ये 1000 रुपए पेमेंट कराया ना, तो ये हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा, आपको 8000 और करने हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं वही समझ गई, मैं कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पर।
0: तो मतलब तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो गया ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: दोस्तों। अब देखिए, रीना के साथ तो जो है धोखाधड़ी वाला सीन हो गया, आपके साथ ना हो आप क्या कर सकते हैं? और अगर आप इस चीज का शिकार होते हैं तो आप कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कहाँ पर जाकर आप जो है इसकी सुनवाई करा सकते हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। श्रोताओं, सबसे मजे की बात पता है क्या है कि आजकल ना जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड करते हैं लोग, जो स्कैम करते हैं मार्केट, इतने इनके जो तरीके हैं ना, बहुत सारे बदल गए, एकदम आपको जेन्युइन लगते हैं। रीना, जैसे KYC अपडेट के नाम पर आपको कॉल आ जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: कभी आपको व्हाट्सएप पे कोई अचानक से लिंक आ जाएगा।

0: कभी बोलेंगे बैंक वाले बोल रहे हैं,
1: कॉल्स आ जाती हैं, और आजकल तो शादी के कार्ड भी आ रहे हैं, ऐसा लगेगा किसी ने भेजा है, क्लिक करूंगी तो पैसा गायब,
0: पैसे कट जाते हैं,
1: ऐसा वाला सीन भी चल रहा है। तो दोस्तों आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और इसी बात को जो है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक अंतराल का समय है, म्यूजिकल ब्रेक भी लेंगे, अंतराल का समय है, और उसके बाद आपको सुनवाएंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, और बचने के लिए आपको कहां कैसे शिकायत दर्ज करानी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद,
0: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे,
1: ये आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलिए एक छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
1: श्रोताओं एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रीना और मैं प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं सोच बदलो, और इस प्रोग्राम का नाम ही इतना प्यारा है, तो ये सोचे प्रोग्राम कितना प्यारा होगा। वेल आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मैं और रीना आपसे, ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक खास जानकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ एक छोटा सा आपके साथ एक प्रोग्राम साझा कर रहे हैं। आप इसको भी सुनिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम थोड़ी देर में मिलेंगे मैं और रीना। क्यों रीना, दोस्तों बहुत जरूरी है, देखिए सही सोच के साथ साथ सही जानकारी का होना भी जरूरी,
0: बहुत जरूरी है।
1: तो आइए सोच बदले प्रोग्राम के अंतर्गत सुनते हैं ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी।
5: आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है उससे, पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रूपए में दे रही है,
6: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रूपए का है।
5: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं। फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, ना तो डिलीवरी आई है ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले, छात्र और गृहणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, आपके शहर रेडियो स्टेशन जो आपको एंटरटेन तो करता ही है साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना वो जितने शातिर है ना आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज।
1: तो श्रोताओं मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये जानकारियां कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगी। और इसी तरह के प्रोग्राम हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं ताकि भैया हमारा जो ये समुदाय है, हमारा जो ये कम्युनिटी है, हमारी जो मुरादाबाद की जनता है उसको अवेयरनेस मिले और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी सोच भी बदले। जब हम सोच बदलेंगे तो हमारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी, क्यों रीना?
0: बिल्कुल, और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो भी आज से बंद कर देंगे।
1: बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग तो बंद मत करो यार रीना, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है ना। शॉपिंग तो मतलब आप कर सकते हो लेकिन हाँ कोशिश करो लोकल फॉर वोकल को ज्यादा बढ़ावा मिले तो बेहतर है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ऑनलाइन तो आप करिए खरीदारी लेकिन ऑफलाइन भी करिए, क्योंकि लोकल फॉर वोकल बहुत जरूरी है। अपने आसपास के प्रोडक्ट को अगर हम ही नहीं खरीदेंगे तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे बढ़ेगी।
0: लेकिन ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम से शॉपिंग करते हैं उसको कम करें,
1: कम करें आप ऑनलाइन पे। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अगर आपको कोई लिंक आ रही है, आपको ऑफर दिख रहा है, तो इन चीजों पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए श्रोताओं अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी अपनी बातों को विराम देते हैं और उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो आपसे जाने की अनुमति देंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं और रीना आपके साथ छोड़ के जाएंगे। प्रोग्राम चल रहा है सोच बदलो, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत ही अच्छा ये गीत, और आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम, जिसे लेकर आज हाजिर हूँ मैं आनंद, और साथ में आरजे रीना। तो रीना, फाइनली दोस्तों के साथ बातचीत करते करते कैसे हमारा समय बीत गया, हमें पता ही नहीं चला है ना।
1: बिल्कुल भी नहीं पता चलता
0: जी
1: है।
0: हाँ, तो अब बस जाने का समय है, लेकिन बस छोड़ के जाएंगे कुछ खास बातें आपके लिए। देखिये दोस्तों, याद रखिये, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो कोई भी फ्रॉड आपका नुकसान नहीं कर सकता है ना, और ना ही कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। तो बस आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक मत कीजिए। कोई भी दोस्त अगर आपको फेक आईडी या फ्रॉड आईडी बनाकर आपसे पैसे मांगता है, कोई लिंक आपको भेजता है, तो आप उन चीजों से जरा बचकर रहिए। कुछ भी इस तरह की आपके साथ बातचीत होती है या कोई भी ऐसी हरकत होती है, तो आप जो है पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके जरूर शिकायत दर्ज कराएं, क्यों रीना।
1: और जिसके नाम से आईडी बनाकर आपको मैसेज किया जा रहा है, उस आदमी को भी जरूर सूचित करें इसके बारे में कि आपके नाम से आईडी बनाकर पैसे मांगा जा रहा है,
0: पता चल सके ना बिल्कुल कि उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ। तो दोस्तों, आज के सोच बदलो में बस इतना ही। अपनी सोच बदलिए, सतर्क रहिए और सेफ रहिए, और ऐसे ही सुनते रहिए
1: एफएम मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो,
1: बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए जी, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय
1: बाय गाइस।
2: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
7: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
6: अरे वाह।
7: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
6: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
8: टायर लो सोना जीतो।
9: क्या?
8: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
10: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

कोमल है तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हेलो हाय, मेरा नाम आनंद है, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। और आज की जो स्टूडियो की वाइब है ना, बहुत अलग है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारी स्टेशन में एक ऐसी महिला मौजूद है, एक ऐसी नारी शक्ति मेरे साथ आज हमारे

0: है जिनके बारे में मैं जितनी बातें बोलूंगा ना शायद मेरा समय कम पड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहीं रहा है। जब एक महिला कुछ करने की ठान ले तो वो सब कुछ कर लेती है। और वैसे ही आज सेशन में, इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस इंटरव्यू में हमारे रेडियो का हिस्सा बनी है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी जो हमारे शहर के अंदर ऑटो चलाती है, ऑटो रिक्शा चालक है। आज हम इनसे बात करने वाले। वैसे तो हमने बहुत बड़ी पुरुषों को ऑटो चलाते हुए देखा है ना। जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हम ऑटो में अक्सर मेल्स को देखते हैं, लेकिन मैंने पहली फीमेल मुरादाबाद के अंदर देखी है। और आज वही फीमेल को हम स्टूडियो लेकर आए, उसी नारी शक्ति को। हेलो मैम, कैसे हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मैडम रामवती शर्मा।
0: रामवती शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जोरदार तालियां रामवती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसी है पहले ये बताइए मैम?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा, आपने सोचा था कभी अच्छा कि आप किसी जगह आएंगी?
1: नहीं नहीं, वैसे आपसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
0: अरे थैंक यू सो मच आंटी। तो आंटी बोलूँ या मैम बोलता हूँ मैं?
1: आप
0: तो आपको
1: जो चाहो वो बोल सकते।
0: अच्छा, क्या नाम बताया आपने?
1: रामवती शर्मा।
0: रामवती शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। रामवती जी, थोड़ा अपने हमारे जो सुनने वाले हैं आप उनको थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए।
1: अरे मैं बहुत परेशान थी पहले, बहुत अपने मतलब शादी जब हुई थी तो मैं बहुत दुखी थी। मेरे बच्चे मतलब ये था भूखे मरने लगे थे।
0: ओहो अच्छा,
1: हाँ।
0: तो मतलब आपकी शादी यहीं हुई है मुरादाबाद?
1: नहीं नहीं, मेरी शादी बिलारी में हुई थी।
0: अच्छा बिलारी, तो मुरादाबाद कैसे आना हुआ?
1: मुरादाबाद जब मेरे बच्चे मतलब हमारे मेरे हस्बैंड का काम नहीं चला। वो है साइकिल टायर पंचर थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो उनका काम नहीं चला तो देखो बच्चे हम बहुत परेशान रहने लगे थे।
0: हाँ।
1: तो मैं अपने एक जनी मुझे लेके आई थी यहाँ पर।
0: हाँ।
1: काम पे लगवाने के लिए।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनके साथ मतलब पहले फैक्ट्री में जॉब करी।
0: अच्छा,
1: पैकिंग हॉल में।
0: अच्छा,
1: उसके बाद करते करते मैं चेकर बनी।
0: अच्छा, अरे वाह। फिर
1: चेकर बनने के बाद फिर मैंने लड़के की शादी करी तो मेरी बहू खत्म होगी किसी मतलब दिक्कत में आके।
0: ओके ओके।
1: उसके बाद मेरा एक छोटा सा पोता है, आपने देखा भी होगा।
0: हाँ हाँ, मैंने देखा है आपके साथ।
1: तो मैंने उसकी वजह से ये रिक्शा लिया है।
0: अच्छा, तो उसकी वजह से रिक्शा चला रहे हैं?
1: उसे पाल रही हूँ।
0: हाँ।
1: और अपना पेट भी पाल रही हूँ।
0: अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आंटी आपके?
1: मेरे एक लड़की एक लड़का है।
0: एक लड़की और लड़की। हाँ। की शादी हो गई?
1: शादी दोनों बच्चों की हो गई।
0: अच्छा, दोनों बच्चों की हो गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ऑटो चलाने का ख्याल कैसे आपके आया दिमाग में?
1: ऐसे आया जब फैक्ट्री में काम करने लगी तो मैंने सोचा फिर कहीं ऐसा ना हो कि पहले इतना मैं फिर मुसीबत उठाने लगूं। तो मैं मेरे दिमाग में आया कि मैं ऑटो चला के देखती हूँ। तो मैंने एक पहले पुराना ऑटो लिया था।
0: अच्छा,
1: उससे मैं सीखी।
0: अरे वाह।
1: उससे सीखने के बाद
0: पहले ट्रेनिंग ली आपने? अच्छा,
1: सीखी अपना भी थी।
0: अच्छा, अच्छा,
1: किसी ने सिखाया नहीं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: उसके बाद मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा, मैंने मेरे मन है ऑटो चलाने के लिए।
0: हाँ, तो क्या कहा सर ने? तो, मतलब परमिशन दी? हाँ, पति देव ने?
1: तो उन्होंने क्या बोले, ठीक है ले लो।
0: अच्छा,
1: फिर मैंने ऑटो ले लिया।
0: तो मतलब पति की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी?
1: नहीं।
0: परिवार की तरफ से कोई रोक
1: टोक?
0: अच्छा अच्छा। तो मतलब पहले ट्रायल लिया, पहले ट्रेनिंग ली, उसके बाद जब आपको लगा मैं मजबूती के साथ चल सकती हूँ, चला सकती हूँ, तब आप सड़क पे उतरे। तो कितने समय से आप ऑटो चला रही
1: हैं? मुझे अब एक साल लगातार हो गया।
0: एक साल हो गया?
1: मार्च में हो गया।
0: अच्छा अच्छा, एक साल से आप ऑटो चला रही हैं मार्च में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइएगा मैम, जब आप ऑटो पहली बार सड़क पे लेके निकली थी तो आपको कैसा लगा? मतलब थोड़ा अजीब लगा।
1: अजीब सा लगा। हाँ, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि मैं चलाती रहूं।
0: अच्छा अच्छा, अभी ये लगता है कि चलाती रहूं।
1: हाँ।
0: ओके, तो मतलब जब आपके ऑटो में लोग बैठते हैं, लेडीज बैठती हैं, जेंट्स बैठते हैं, तो कुछ कभी कोई सवाल जवाब करते हैं कि आप कैसे क्यों चलाती हैं?
1: पूछते हैं।
0: हाँ।
1: पूछने वाले तो क्या बताया, किसी को क्या बताया,
0: क्या बताया
1: जाए, तो नहीं बताई जाती है, कहते हैं हमारी मर्जी, हम चला रहे हैं।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्हें आप सुन रहे हैं, ये मुरादाबाद की नहीं है रहने वाली, लेकिन अभी हम कह सकते हैं मुरादाबाद ही है ये। कितने समय से मुरादाबाद में आप रह रही
1: हैं? हमें 25 साल हो गए।
0: 25 साल से जो रह रही है तो वो मुरादाबाद ही होगी गाइस। तो मतलब आपका जो मतलब घर था वो चंदौसी, आपने बताया?
1: नहीं,
0: बिलारी,
1: बिलारी,
0: बिलारी, बिलारी से आप थी। तो मुरादाबाद आके फिर आपने शुरू किया अपना कारोबार और ये काम का सिलसिला?
1: पहले हम किराए पे रहे, फिर हमारा अपना हो गया।
0: अरे वाह, क्या बात है,
1: अभी हमारा अपना ही है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आंटी मुझे ये बताइएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई?
1: हाई स्कूल पास।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाई स्कूल पास है? हाई स्कूल पास थी आप, उसके बाद आपने कंपनियों में काम किया नॉर्मली जो आप बता रही पैकिंग वगैरह में, फिर आपने क्यों सोचा कि मुझे ऑटो ही चलाना चाहिए?
1: ये मैंने सोचा फैक्ट्री लेके बच्चे उजा नहीं सकते।
0: हाँ।
1: बच्चा बिना माँ के रह नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अब मैं उसे पालने वाली हूँ, मैं उसे रखने वाली हूँ, तो मैंने सोची फिर मैंने काम छोड़ दिया बच्चे के खातिर, उसके वजह अगर फिर मैंने सोचा मैंने फिर मुसीबत ना आ जाए मेरे बच्चों पे।
0: जी,
1: इसीलिए मैंने सोचा ऑटो भी चलता रहेगा और मेरा बच्चा भी पलता रहेगा
0: और साथ ही साथ अपने मन की मालिक हो।
1: हाँ।
0: जब मर्जी ऑटो चलाओ, जब मर्जी अपना नहीं जाओ, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको जाना ही जाना है।
1: कोई जबरदस्ती नहीं
0: है ना, जबरदस्ती नहीं है। तो कौन कौन सी रोड से आप ऑटो लेके निकलती हैं?
1: वैसे मैं सब रोड पे चला लेती हूँ।
0: सब रोड पे चलाती
1: हूँ। गुलाब बाड़ी, अभी तो मैं गुलाब बाड़ी से आई।
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइएगा मैम, मतलब आपने जब ये ऑटो का सिलसिला शुरू किया, जब आपका पहला दिन था, तो घर पर जब आप पहली कमाई लेकर गई तो कैसा लगा? घर वालों को? घर वालों को दिखाया आपने?
1: सब, और क्या ना, अभी मैं अपने घर वालों के हाथ में देती हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब पति देव क्या करते हैं वैसे?
1: वो टायर पंचर का काम करते हैं।
0: टायर पंचर का काम करते हैं, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक अलग ही खुशी होती है जब आप ये मेहनत से पैसे लेकर जाती हैं।
1: ये लगता है कि हाँ देख, पैसे, पहली बात तो पैसा देते हो आप लोग।
0: हाँ।
1: दूसरी बात मैं आपकी सेवा भी करती हूँ।
0: बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बहुत सही कहा। सो दोस्तों वो कहते हैं ना, जहाँ पर इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा होती है, जब आपके हौसले बुलंद होते हैं तो आप वो सब कुछ कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। और कहते हैं ना, एक नारी जिसे हम शक्ति नारी बोलते हैं वो सब कुछ कर सकती है। तभी तो कहा जाता है कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और ऐसे ही आज नारी शक्ति, एक सशक्त नारी, आज के जमाने की नारी मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में इस वक्त, जिनको आप सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आंटी आप वैसे कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में?
1: खदाना गांव में।
0: खदाना गांव में, तो ये मुरादाबाद में पड़ता है? अच्छा, अरे वाह, तो वहाँ से डेली आप सफर करते हैं, कितने बजे सुबह आपकी शुरुआत हो जाती है?
1: सुबह तो देखो दो बच्चे हैं, दो लेडीज हैं मेरे पास लगी बनी है वो।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैं 7 बजे अपने घर से निकल कर आ जाती हूँ, खाना वाना बना के सारे काम घर के,
0: मतलब खुद करती है सारा काम।
1: हाँ जी। और
0: तो सुबह कितने बजे निकलती हैं?
1: सुबह मैं 7 बजे
0: 7 बजे निकल जाती हूँ। और शाम को कितने बजे घर लौटती
1: हैं? शाम को 6 बजे घर पहुँच जाती हूँ।
0: 6 बजे आप घर लौटती हैं। ओके, रामपति शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मुरादाबाद की सड़कों पर ऑटो चलाती है, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं, और ये काम बहुत आसान नहीं होता, स्पेशली एक महिला के लिए जब वो घर से बाहर निकलती है। लाइफ में बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। लाइफ इतनी आसान जितनी मुझे और आपको लगती है ना सामने वाले की, उतनी एक्चुअली होती नहीं है। परेशानियां सबकी जिंदगी में आती है। रामपति जी आपकी जिंदगी में थोड़ी मोड़ी परेशानियां आती होंगी,
1: तो
0: कैसे डील कर लेती हैं आप?
1: ये तो होता
0: है, मतलब एक तो आप इतनी प्यारी है, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी सुंदर मुस्कान के साथ मैम बात कर रही है, इतनी पोलाइटनेस के साथ, मतलब कैसे आप इतना कर लेती है? सब हो जाता है, मतलब आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं।
1: हाँ।
0: ऐसे ही मुस्कुराते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको हमारे ऑफिस में आके अभी कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा।
0: बातचीत करके कैसा
1: बहुत
0: लगा?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा, मतलब कुछ डर तो नहीं लगा आपको?
1: नहीं, ऐसा लगा मैं अपने घर में बैठी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बस हमें यही चाहिए। थैंक यू सो मच। ये रामपति शर्मा जी है जिनके बारे में हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं जो आपकी तरह काम करना चाहती हैं, पेट पालना चाहती हैं, अपने बच्चों को पालना चाहती हैं, क्योंकि एक सही काम करके अगर आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है मैम। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो आपकी आवाज सुन रही हैं, जो करना चाहती है लेकिन घर की तरफ से रोक दिया जाता है?
1: वो भी हिम्मत रखें।
0: हाँ।
1: हिम्मत नहीं हारना चाहिए किसी को भी, मैं हूँ चाहे कोई सी भी लेडीज हो
0: जी,
1: उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत हार जाता है तो इंसान समझ लो गया।
0: बिल्कुल, अगर आपकी बिल्कुल
1: दिल बुलंद होना चाहिए, अपनी हिम्मत बुलंद होनी चाहिए।
0: क्या बात है, और आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर आप सही है तो सब सही है, है ना। देखिए बहुत अच्छी बात बोली रामपति शर्मा जी ने, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जज्बा है, कुछ करने की आप ताकत रखती है, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। बहुत अच्छी और मजबूती तरीके से जो है जवाब दे रही है। और मुझे बड़ी मजे की बात यह है कि देखिए हम बहुत लोगों से मिलते हैं लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से बातचीत पा रही हैं, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, और मैम बिल्कुल मतलब जो है ना एक होता है कि थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा अनकॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर रही है रामपति जी, मतलब बहुत ही बढ़िया। पहले कभी बोला है आपने ऐसे?
1: नहीं।
0: तो इतनी मतलब ऐसे कैसे आप बोल पा रही है?
1: जैसे जैसा इंसान मिल जाता है ना, मुझे उसी में रमना पड़ जाता है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। तो दोस्तों ये होता है एक असली कॉन्फिडेंस, एक असली जज्बा, और ऐसे जज्बों की कहानियां और ऐसे ही बुलंद कहानियां हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां आप सुनते हैं तमाम वो बातें जो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलती हैं। रामपति शर्मा जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम आपसे जानना चाहूंगा मैं थोड़ा सा आपके संघर्ष के बारे में, थोड़ा सा जैसे बहुत सारी महिलाएं जैसे मैंने कहा करना चाहती हैं पर वो नहीं कर पाती, उन्हें लगता है परिवार रोक रहा है, बच्चे रोक रहे हैं, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है, तो आपके साथ आपके बच्चे सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ की मम्मी आप क्यों चला रहे हो जब हम हैं? तो
1: किसी ने नहीं कहा, मैंने सबकी मर्जी से काम।
0: अच्छा, सबने आपको परमिशन दे दी। तो अभी मुरादाबाद सड़कों पे आप इकलौती महिला ऑटो चलाती हैं या और भी हैं?
1: मैंने तब तक कोई देखा नहीं है।
0: आप ही चलाती हैं ना? तो गाइस अगर आपको अगली बार कोई महिला दिखती है पीली कोठी की तरफ, कहाँ कहाँ से आप गुजरती हैं?
1: मैं सब तरफ दिख जाती हूँ।
0: सब तरफ जाती हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो एक बार नाम पूछ लीजिएगा, कहीं आप वही रामपति तो नहीं जो रेडियो पे बात कर रही थी? तो आपको लोग पहचानेंगे तो आप भी पहचान जाइएगा, ठीक है मैम? चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ कहना चाहती है? बहुत लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं रेडियो पे, कोई मैसेज देना चाहे, कोई संदेश महिलाएं जो लेडीज?
1: मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, जैसे मैं हिम्मत रखती हूँ वैसे सारी महिलाएं हिम्मत रखें। देखो घर परिवार चलाना है तो हिम्मत अपने अंदर रखनी चाहिए।
0: अब मैम आपकी कितनी उम्र होगी अभी?
1: मेरी 45।
0: देखिए 45 की उम्र में भी सड़कों पर ऑटो चलाती हैं, और जिसे कह सकते हैं कि अपना भरण पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो एक सही डायरेक्शन में काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है मैम, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच आप आए और आपने हमारी तमाम महिलाओं को एक इंस्पिरेशन दी है, जो यहाँ पर आपने बातें रखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। आपको यहाँ आके अच्छा लगा?
1: बहुत अच्छा।
0: आगे भी आना चाहोगे?
1: बिल्कुल, जब आप बुलाओगे मैं पक्का हाजिर हो जाऊंगी।
0: चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइज आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानी के साथ, किसी और नई लेडीज के साथ, कुछ और नई संघर्ष की कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் 9 மந்திரியோ நே பி சபத் லீ ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. இஸ் அவசர் பர் லோக்சபா மே விபக்ஷ் கே நேதா ராகுல் காந்தி ஆர் தமிழ் ஃபில்ம் உத்யோக் கி கை ஹஸ்தியாம் மௌஜூத் தீ. முக்கியமந்திரி சி ஜோசப் விஜய் நே फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और NDA दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि NDA का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद AGP और BPF के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से NDA का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और NDA का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। NDA सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर GST के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी विन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमेरिकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
5: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद ये जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी दिल्ली का

0: इस साइड आर्जेरीना एफ एम मुरादाबाद 89.6 और हम फिर से लेकर आ गए आप सभी के लिए महिला मंच। आपको ही पता है कि रीना अकेली नहीं आती है मेरे साथ।
1: आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी। और बहुत ही खूबसूरत है हमारे शो का नाम महिला मंच, और इस महिला मंच में हम फिर से हाजिर हो गए दोनों। हाँ जी रीना जी, और खुशी तो आपके साथ रहती ही है। तो दोस्तों, आज हमारा विषय जो है, आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही खास है, जहाँ हम बात करते हैं समाज और जिंदगी से जुड़े उन मुद्दों की जो घर से जुड़े होते हैं। आज का विषय हमारा है लड़कियों की जिंदगी बचपन से शादी तक।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही कोई लड़की 25 साल की होती है, घर परिवार और समाज की बातें शुरू हो जाती है। अब तो शादी कर दो, लड़की बड़ी हो गई है।
1: हाँ यार, ऐसा मैंने भी सुना है अक्सर आसपास में। धीरे धीरे ये बातें तानों में बदल जा रही, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और लड़की भी सोच में पड़ जाती, क्या सच में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ शादी ही है।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। आज हम समझेंगे कि एक लड़की की जिंदगी में बचपन, पढ़ाई, सपने, शादी और

0: अब हम जानने वाले हैं समाज के लिए संदेश। समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लड़कियों को ताने देने के बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। उन्हें पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का मौका देना चाहिए। अगर हम लड़कियों को सम्मान और बराबरी देंगे तो समाज भी मजबूत बनेगा।
1: तो दोस्तों, आज हमने साझा की एक लड़की की जिंदगी, बचपन से लेकर शादी और उसके बाद तक की कितने बदलावों से गुजरती हैं। जरूरत है कि हम लड़कियों को समझने, उनका साथ दें और उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका दें, क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं
0: और कल मिलेंगे हम सेम टाइम एंड सेम जगह।
1: तब तक के लिए साथियों, सुनते रहिए अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
0: नमस्कार श्रोताओं।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको अनुभवी डॉक्टरों से इलाज मिलेगा, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, मूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और सर्जन। इसके साथ साथ सभी प्रकार के परीक्षण, सिटी स्कैन, आधुनिक कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, आयुष्मान, TPA और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो सही इलाज के लिए आज ही आएं डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गंगन तिराहा, संभल चंदोसी रोड, मुरादाबाद। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर UKG तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, AI, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस, सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।

0: हेलो हाँ जी, कैसे हाल चाल? यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आप सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय। और सुपर मॉम्स की तलाश कर रहा था मैं अपने मुरादाबाद की, वो टॉप 5 सुपर मॉम्स ढूंढ रहा था। एंड फाइनली आज हमारे स्टूडियो में तीसरी सुपर मॉम्स यहाँ पर आ गई। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये सुपर मॉम्स के होने के साथ साथ बहुत सारे और भी काम करती है। एंड शी इज वेरी ब्रिलियंट यार, मतलब शी इज वेरी एक्टिव। और जितना मैं इनको देख पाया हूँ, जितना मैं इनको जान पाया हूँ, मतलब इतनी तारीफें अगर मैं करूंगा तो शायद पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। ये बिना किसी देरी के वार्म वेलकम करते हुए आज के सेशन में इनवाइट करते हैं हमारी आज की सुपर मॉम्स को। एंड मतलब इनके बारे में क्या बोलूं, शी इज वेरी वेरी आइकॉनिक पर्सनालिटी यार। सो मैम, जोरदार तालियां एंड वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप?
1: हेलो, आप कैसे हैं आज आनंद?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, थोड़ा सा पतला हूँ बट आई थिंक अब मोटा हो जाऊंगा शायद। सो टेल अस मैम,
1: आई थिंक आपका काम की चर्चा तो पूरे मुरादाबाद में ही है, सो मेरी तारीफ तो बहुत कम, बट यू आर डूइंग एन इनक्रेडिबल जॉब।
0: थैंक यू मैम,
1: थैंक यू फॉर मेकिंग दिस सिटी मोर एलिवेटिंग। आई थिंक आपके काम की वजह से और आपने जितना एक्सपेंशन किया है लोगों के वजह से सिटी में अवेयरनेस नहीं क्रिएट करी है, तो वो तो हमारे लिए मतलब बहुत बहुत गर्व की बात है। सो थैंक यू फॉर ऑल दैट हार्ड वर्क।
0: थैंक यू सो मच मैम, सच अ ब्यूटीफुल यू नो इंट्रोडक्शन। आपने को मेरे को इंट्रोड्यूस करना था, आपने मेरे को मेरी ऑडियंस से कर दिया। इट वॉज रियली नाइस। वेल थैंक यू फॉर यू कॉम्प्लीमेंट मैम। प्लीज टेल अस, थोड़ा अपने बारे में भी बताएं हमारी ऑडियंस।
1: हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूँ वंदना आत्रे। हमारा रेस्टोरेंट है थाई चिली लाउंज, रामगंगा विहार, उसकी मैं ओनर हूँ। साथ ही साथ मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एक आईटी फर्म में, और एक किड्स एक्टिविटी क्लब की फाउंडर भी हूँ।
0: प्लस
1: मैं अभी कुछ सोशल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो एज अ सोशल कॉज आई एम ट्राइंग जितना मैं हेल्प कर सकूँ सोसाइटी की, तो मैं उसमें भी करने की कोशिश कर रही हूँ।
0: दैट्स वेरी नाइस, जोरदार तालियां। सो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है वंदना जी आपसे, आप रेडियो स्टेशन पहली बार आई हैं या पहले कभी आ चुकी हैं?
1: मैं रेडियो स्टेशन तो पहली बार आ रही हूँ, बट ये मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, बिकॉज मेरी मदर एक आरजे रह चुकी हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: तो उनका हमेशा से एक चाइल्डहुड, अभी समझिए एक बच्चे के लिए जो होता है माँ का ड्रीम, तो वो ये था कि हमेशा एक मतलब बनू
0: या मैं
1: मैं रेडियो में जाऊँ, रिकॉर्डिंग करूँ। पहले तो आकाशवाणी होते थे, तो वो चाहती थी कि हमारे घर से, आपने सुना होगा नैनीताल से अल्मोड़ा बहुत दूर था,
0: तो वही था।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: बहुत बढ़िया। तो फिर आगे का
1: वो कभी हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। आप बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिकली हम लोग थोड़े से चैलेंज लोकेशन में रहते थे, तो आना जाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता था मान ले, तो इसलिए आज शायद वो ये देख के बहुत खुश होंगी और सुन के बहुत खुश होंगी, मेरा फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट होगा जो भी रेडियो में होगा। तो आई एम थैंकफुल टू यू।
0: आंटी जी प्रणाम। देखिए आज वंदना जी ने आपका सपना पूरा कर दिया, नमस्कार, थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा जो है टैलेंट सिखाया आपने, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है एंड शी इज आरजे। तो गाइज मतलब गलती से मिस्टेक मत करना, वंदना जी हमारी गेस्ट है, कभी आप सोच रहे हो कि यार नहीं आरजे आ गई है। वेल आवाज में आपकी क्वालिटी तो है, नो डाउट, कभी ट्राई नहीं किया आपने फिर?
1: नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैं एंकरिंग एंड ऑल तो बहुत कर चुकी हूँ, लेकिन कभी रेडियो के टुवर्ड्स मेरा टुवर्ड्स मैं कभी इतनी इंटरेस्टेड नहीं हो पाई बिकॉज क्योंकि बहुत सारी चीज और प्रायोरिटी में आ गई थी। तो आज यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड पहली बार ये मौका मिला है कि मैं रेडियो में सभी सुनने वालों को अपने सुपर मॉम की क्वालिटीज एक्सप्रेस कर सकूं। सो
0: दैट्स वेरी नाइस।
1: आई थिंक सभी यहाँ पे बहुत फ्रेंडली है और बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। आज जैसे ही मैंने मतलब मैं आई हूँ तो एक स्माइल के साथ कैसे ग्रीट करना है क्या है आपका, और एक जेस्चर एक होता है कि आप कैसे अपने जो भी आपके आ रहे हैं इंटरव्यूई, तो आप कैसे उनके साथ डील करते हैं, उनको कितना होमली फील कराते हैं, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
0: एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम तारीफों में रह जाएंगे तो शायद हमारा जो मेन पॉइंट है वो पीछे ही छूट जाएगा। सो आज हम मदर्स डे पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे। मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा वंदना मैम, कि जैसे आप बाहर भी देख रही हैं, आपने बताया आप रेस्टोरेंट भी कर रही हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, आपने अभी जिक्र किया कि आपने एंकरिंग भी बहुत की है, तो कहीं ना कहीं एक लड़की के लिए ये सफरिंग इतना आसान तो नहीं होता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज है हमारे जेंसी के पास, बहुत सारी चीजें आ गई हैं सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। जब आपका टाइम होगा आई थिंक तब तो इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं होंगी ना, जब आप स्टडी कर रहे होंगे।
1: हाँ, और जब मैंने नैनीताल में हमारा एक लोकल टीवी चैनल था वहां पे मैंने एंकरिंग करी थी, जो हमारे लोकल शोज होते थे, तो वहाँ एक चैनल था ताल चैनल, तो वहाँ पे हमें स्कूल के साइड से एज एंकर्स जो हमारे जैसे फेस्टिवल्स होते थे वहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइज करते थे लोकली हम लोग, तो वहाँ पे हमें बुलाते थे एंकरिंग के लिए। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम एज एन एंकर कैसे बिहेव करते, कैसे बात करते हैं, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, तो मैंने तब वहाँ पे सीखा था।
0: मतलब ओवरऑल सारी चीजें आपने वहाँ पे सीखी।
1: हाँ जी, तो रुचि तो मेरी हमेशा मतलब स्टेज में जाने की, पार्टिसिपेट करने की स्कूल में, डिबेट में, मतलब मैं पीछे बैठने वालों में से मुझे
0: मतलब हमेशा क्रिएटिविटी को लेकर काफी आप एक्टिव थी,
1: काफी
0: कि मतलब कुछ करना है, कुछ नया सा करना है।
1: मतलब आई हैव ऑलवेज बीन एम्बिशियस, मतलब मैं उसमें नहीं रह सकी।
0: कम्फर्ट जोन होता है एरिया की भैया आपको यहीं तक सीमित रहना है,
1: कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी मेरे, हाँ मेरे लाइफ में, और मेरा मोटो ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता। लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, इट्स ऑल इन द माइंड। आई थिंक कोई भी जो भी लड़की सुन रही है ये, तो आई थिंक आपको यही सोचना चाहिए आपकी लाइफ में जो जो आपकी मतलब इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, आप वो सारी पूरी करिए, बिकॉज दिस लाइफ इज ओनली

0: क्या बोलना चाहोगे?
1: आरजे आनंद, देखिए पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। पेरेंट्स अपने बच्चों को हर चीज के लिए इनकरेज करना चाहिए। स्कूल में बच्चे बहुत कुछ चीजें सीखते हैं, लेकिन जो स्कूल के बाद, ठीक है, बच्चे सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कैसे हमें आगे बढ़ाना है, तो वो पेरेंट्स का ही रोल आता है। पेरेंट्स तो मतलब हर एक जो अच्छे, आपने देखा होगा कितनी लड़की जैसे सानिया नेहवाल हैं आपकी, कितनी आगे मतलब
0: एक्ट्रेस को ले लो, बॉलीवुड करीना कपूर
1: मॉडल्स हैं आपकी, हमारी कैसे कितने पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया है उनको। तो कौन सा मतलब एरिया नहीं है,
0: क्षेत्र नहीं है जहाँ लड़कियां
1: नहीं गई हैं, तो भैया पेरेंट्स का तो मैं ये बोलूंगी इसमें पेरेंट्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल, क्योंकि उनको ही आगे बढ़ाने के लिए अपनी लड़कियों को हमेशा इनकरेज करना चाहिए।
0: इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा बोला है उन्होंने। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब एक बार आप ट्रस्ट करके अपनी घर से बाहर निकालते हैं ना बेटियों को, लड़कियों को, तो वो भी आपके ट्रस्ट को कायम रखती हैं। और आज की डेट में लड़कियां, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं बचा है, कोई ऐसा काम नहीं बचा है जहां लड़कियां काम ना कर रही हों। हर क्षेत्र में लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी है सुपर मॉम्स के साथ, हम आए हैं आप सभी को वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। एज अ बीइंग अ मॉम, आपसे पूछना चाहता हूं कितना हेक्टिक होता है एक मदर का लाइफ स्टाइल, बाहर संभालना प्लस घर संभालना, और बीच बीच में हस्बैंड की दो चार बातें हो जाती है साथ में, वो चीज भी है, तो मतलब कैसे मैनेज होता है, मेरे को जानना है।
1: यही सुपर मॉम की होती है जो आपने सारा बता दिया है, कि हर चीज को बैलेंस करके चलना। हाँ। अगर आप यही लोड लेते रहोगे ये कैसे होगा, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर अभी को ये करना ही करना है तो आप हमेशा कर पाओगे, क्योंकि आपके पास, आपने ये अपने दिमाग में डाल लिया कि इसके बाद कोई आपका भैया ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको करना ही करना। चाहे वो मदर की ड्यूटीज हो, चाहे वो आपकी बिजनेस की ड्यूटीज हो, चाहे वो आपकी घर की ड्यूटीज हो। तो एज अ सुपर मॉम मुझे ऐसा लगता है, एक मदर मतलब एक औरत हमेशा ही ड्यूटीज पे पूरा खरी तरीके से उतरती है। तो वो सभी मदर्स के लिए मैं बोलूंगी, ऑल मदर्स आर सुपर मॉम्स बिकॉज दे हैंडल थिंग्स सो वेल, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन डू दैट।
0: एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छा बोला मैम। अच्छा, आप बेसिकली, आपने बताया आप घर के साथ साथ बाहर भी कुछ कर रहे हैं, जैसे आप कोई रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो अभी मतलब वो कैसे आप करते हैं मैनेज, कौन सा रेस्टोरेंट आप चला रहे हैं, कहाँ क्या चल रहा है, थोड़ा बताइए।
1: हाँ जी, सो हमारा,
0: आप खुद ही करती हैं क्या सारा मैनेजमेंट?
1: सो मेरे हस्बैंड और मैं रेस्टोरेंट संभालते हैं, ही इज ऑल्सो वर्किंग और आई एम ऑल्सो इन टू आई टी एज आई मेंशन। सो हम दोनों ही रेस्टोरेंट को भी साथ साथ संभालते हैं,
0: ठीक है।
1: और ये हमारा रेस्टोरेंट है थाई चिली लाउंज, जो है रामगंगा मिड टाउन क्लब के एडजेसेंट में। सो बस ये है कि मल्टीटास्किंग है, तो एक सुपर मॉम की क्वालिटी आप कह सकते हैं वो है।
0: नहीं तो वो तो है मैम, आई एग्री विद यू। और ऐसे आपके जैसे बहुत सारी लेडी हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह से सफरिंग कर रही हैं, और वो चाहती भी हैं कि हम खुद का भी कुछ करें, बट एक होता है कि आपने कर दिया है, अब आप उसको मैनेज करो। एक लेडी है आपकी तरह जो उसके पास सारी सोर्सेज है, वो करना चाह रही है बट वो कर नहीं पा रही है, वो स्टार्ट कैसे करे उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ कैसे।
1: इसके लिए ना मैं ये बोलूंगी कि देखिए, शादी के बाद ना एक हस्बैंड का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, एंड माय हस्बैंड इज वेरी मच सपोर्टिंग।
0: क्या बात,
1: ही नेवर टॉप्स मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। लाइक जो मेरे फादर हमेशा रहे हैं मेरे लिए, आई थिंक शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे हर वो पंख दिए हैं टू फ्लाई। सो तभी मैं आगे मतलब हर चीज को, कभी ये नहीं कि तुम ये मत करो वो मत करो कौन कहेगा, आई थिंक ही इज द वन जो हमेशा मुझसे कहते हैं तुम किसी की मत सोचो, तुम अपनी मन की करो।
0: क्या
1: तो
0: बात?
1: यही मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ टू लिव फ्रीली, कि मतलब हर चीज वो करे और वो आगे बढ़े लाइफ में, और उसके लिए मैं हूँ। जैसे मेरी मदर हमेशा मेरे लिए रही कि आपका, उन्होंने मुझसे एक चीज, मैं अपनी मदर के लिए, क्योंकि मदर्स डे स्पेशल है, ये बोलूंगी कि मेरी मम्मी ने मुझे मेरे अंदर एक चीज जरूर मतलब सिखाई मुझे, कि हार नहीं मानना है, क्योंकि हारते वो है जो दिमाग में बैठा के बैठ गए कि ये कैसे होगा, हम कैसे करेंगे क्या। उन्होंने बोला जब तुम ये काम कर लोगे ना, उस दिन से तुम विनर, तुम सीख जाओगे उस दिन से तुम विनर। तो मैं शायद वही चीज आज भी अपनी बेटी भी सिखाती हूँ कि नेवर गिविंग अप स्पिरिट, मतलब यस, कि आपको कभी हार मान के नहीं बैठना है कि मैं ये कैसे, क्या कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, वो भी मत सोचो, आगे बढ़ाओ। जो आप मुझसे कह रहे हैं ना कि कैसी मतलब इतनी सारी लेडीज है जो नहीं कर सकती हैं, फैमिली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, क्योंकि 100%। वो आप, मैं तो इस रेडियो के माध्यम से ये भी बहुत सारे हस्बैंड्स को भी बोलूंगी कि वाइफ्स को प्लीज इनकरेज करिए, बिकॉज वो भी बहुत कुछ करती हैं एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, तो उनको भी सपोर्ट की और मॉरल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है इन द एंड ऑफ द डे। तो ये रिक्वेस्ट सभी दैट्स
0: वेरी नाइस। तो यार मैं भी ये अपील करना चाहता हूँ, जैसे वंदना मैम ने कहा सुपर मॉम्स बनना तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले एक सुपर डैड बनना भी बहुत जरूरी है। एंड सुपर डैड आप तभी बन पाएंगे जब आप छोटी छोटी चीजों को समझ पाएंगे। अगर आपका पार्टनर कुछ चाह रहा है तो एक बार उसको मौका, एंड आई थिंक अगर आप उनको मौका दोगे तो उनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। जैसे अगर वंदना मैम के हस्बैंड ने सपोर्ट किया है तभी आज वो इतना चीजों को खुल के कर पा रही है और इतने अच्छे से अपना

0: वो काम भी बना पा रही है। आई नो दैट आज के डेट में सोशल मीडिया पे हम आपको देखते हैं, आप बहुत एक्टिव भी हैं, सारी चीजें मैनेज करती हैं, ये वो अपना रेस्टोरेंट्स, अपने घर, फिर इवेंट्स में जा रहे हैं आप सारे की टीम, ये वो इन ऑल दैट, तो ये इतना इजी तो नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अभी अभी मैम को अगर मैं बोलूँ तो इस टाइम दोपहर का 4:45 हो रहा है और वो इतनी गर्मी में आई है यहाँ पे। सो अगर बहुत से लोग होते हैं भाई मेरे को नहीं जाना, धूप है, टैनिंग इन ऑल, बहुत सारी चीजें लगी होती है, बट आपने सारी चीजों को चीरते हुए आप तुरंत पहुंच गए, मेरे को जाना है, दिस इज माई डेस्टिनी, आज मेरे को करना है। और मैम खुद से अप्रोच भी करते हैं कि यार मतलब कुछ भी चीज अच्छा होता है से कि वो कुछ भी जब मैं लगाता हूँ तो कोई क्रियोसिटी होती है, मेरे को भी आना है, मेरे को भी करना है। तो मतलब ये हर किसी में नहीं होता वंदना मैम, तो आपके अंदर जो एक फायर है, जो एक क्रियोसिटी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्टूडियो से बाहर हो जाऊँ और आप अंदर ही बैठे रह जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना।
1: नहीं,
0: आपको एक बार आरजे तो बनना चाहिए, मैं तो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ।
1: ठीक है, सोचा नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं, बट एक दिन का आरजे जरूर बन सकते हैं,
0: डेफिनेटली। बट गाइस सपोर्ट जो है हमें भी करते रहना, कभी पता चल रहा है लाइफ टाइम के लिए आगे। सी वेल, आपसे बात करके बहुत मजा आया। एक छोटी सी चीज जो मैं अभी हम यहाँ पर आपसे पूछने वाले, आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वंदना आत्रे जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बातें कर रही हैं और मुझे लग रहा है कि आज ये मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इनसे बात करके बहुत मजा आया। एज अ सुपर मॉम की कैटेगरी में मैं इनको लेकर आया, बिकॉज मुझे लगा यार शी इज वेरी एक्टिव और ऐसे लोगों को ना आना चाहिए और ये डिजर्व भी करते हैं यार। एंड आई रियली होप आपने इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा। वेल वंदना मैम, जाते जाते बहुत सारी सुपर मॉम्स आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज मदर्स डे है, अपनी मम्मी के लिए जो खुद ऑलरेडी रेडियो में काम कर चुकी हैं, वो चाहती भी थी कि आप भी रेडियो में आओ, आज आप रेडियो से उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करोगे? और
1: सो आई थिंक मैं अपनी मदर के लिए तो ये बोलूंगी कि आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हर एंड आई विल ऑलवेज बी थ्रू आउट माई लाइफ, क्योंकि उनके जो सिखाए हुए चीजें हैं वो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ और वही चीज मैं चाहूंगी कि मैं अपनी बेटी को भी सिखाऊं। सो आई थिंक बाकी मॉम्स के लिए मैं यही बोलूंगी कि एवरी मॉम इज अ सुपर मॉम एंड दे आर डूइंग एन इनक्रेडिबल जॉब इन देयर लाइफ, हर एरिया में, चाहे वो किचन हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो रिश्ते निभाना, वो बहुत बाखूबी से हर चीज को बहुत अच्छा कर रही हैं। सो बी प्राउड अबाउट योरसेल्फ एंड बी द क्वीन ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच,
0: लवली टॉकिंग टू यू, इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। वंदना आत्रे जी मेरे साथ मौजूद थी आज इस कॉन्वर्सेशन में। मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपको और आपकी मॉम्स को, आपकी मदर इन लोगों को बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे एंड थैंक यू सो मच। जल्दी फिर आपसे नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, वन डे आरजे के लिए आपने बोला है, आपको बुलाते हैं। एंड आई रियली होप आपको भी ये कॉन्वर्सेशन करके, और फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपके लिए, बट आई होप आपको अच्छा लगा हो।
1: यस,
0: मुरादाबाद की जनता से कुछ कहना है? मौका दोबारा जरूर मिलेगा, बट सी जाते जाते कुछ कहना चाहते हो?
1: आई विल ऑलवेज से कि मुरादाबाद इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, सो यहाँ के लोगों की जो जिंदा दिली है वो कायम रखिए और इस सिटी को आगे बढ़ाने के लिए अपने छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिए,
0: बाकी रेडियो स्टेशन
1: हमारे आरजे आनंद को
0: भी बिल्कुल, और एफएम मुरादाबाद भी सुनते रहिए। गाइज मैम लवली मीटिंग यू, एंड बाकी इसके कुछ अच्छे अच्छे वीडियोज आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, सो डोंट फॉरगेट फॉलो कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6। आरजे आनंद को भी फॉलो कर सकते हो यार, थोड़ा प्यारा दिख जाता हूँ मैं, जाके फॉलो करो रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से। बाकी के लिए स्टे ट्यून्ड, सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। हैप्पी मदर्स।

0: बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखूना एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद। कॉल 9548088900।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
8: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और श्रोताओं, यहाँ पर समय हुआ है अभी 3:30 एंड शो आपका फेवरेट शुरू हो चुका है। नाम क्या है मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए, अभी तो मैं आई हूँ ना, थोड़ा सांस तो लेने दीजिए। श्रोताओं, शो का नाम है बिंदास बोल और आपको बिंदास होकर मेरे साथ बातचीत करनी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, देखिए आज का दिन खूबसूरत तो है क्योंकि आज रविवार है, संडे है, और संडे एक ऐसा दिन होता है जब हम आराम करते हैं। और कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो संडे के दिन सिर्फ काम ही काम करते हैं, उनके लिए लगता है कि भाई ये संडे क्यों आया है। बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े धोना, घर की साफ़ सफाई करना, एंड कुछ श्रोताओं के लिए होता है संडे सिर्फ सोना, कि नहीं भाई पूरे दिन वीक में मेरे को पूरे दिन लाइक पूरे टाइम मेरे को हफ्ते में सोने का समय मिलता है, लेकिन वो नहीं, पूरा नहीं मिल पाता है क्योंकि काम की वजह से सब लोग इतना बिजी होते हैं। एंड संडे के दिन ऐसा होता है जब कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, और उस समय होता है कि बस मैं सो जाऊं, अलार्म को भी बंद कर देते हैं आप, उसको भी छुट्टी पे भेज देते हैं कि चलिए आज आप भी रेस्ट कर लीजिए। लेकिन श्रोताओं, आज और स्पेशल डे है, बताती हूँ क्या है। आज मदर्स डे है एंड आज उनका दिन है जिनसे हमारी पूरी दुनिया है,

0: जो हमारी पूरी दुनिया है, एंड उनके बारे में अगर बात करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे साथियों। और मैं बात कर रही हूँ अपनी स्वीट हार्ट, अपनी मम्मा की, और जो इस वक्त हमें सभी सुन रही हैं, ऑल मदर्स, सभी को मैं गुड आफ्टरनून बोलना चाहूँगी एंड दिल से सलाम भी करती हूँ आपकी जज्बी को एंड आपके हौसले को, आपकी हिम्मत को, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और आपके बिना तो हम सोच भी नहीं सकते लाइफ के बारे में। आपसे हर सुबह हमारी होती है और रात अभी मम्मा को भी देखते हैं, हम सुबह उठते हैं और 4 बजे उठना, लाइक 11 बजे सोना, सबके बाद सबका ख्याल रखना, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को भूल जाती हैं। हम सबकी खुशियों में वो खुश हो जाती हैं और अपनी खुशी को वो पीछे छोड़ देती हैं। साथियों, हम बहुत सारी बातें करेंगे आज एंड मेरे साथ में, और मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पर 2 कुड़ियाँ और बैठी हैं जो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही हैं, थोड़ा सा सोच में भी पड़ गई हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें खुशी जी ने कह दी हैं मम्मा के लिए, जो जेन्युइन हैं। और चलिए उनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं, आपको मिलवा देते हैं। अब हम इंतज़ार नहीं करवाते आपको, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा इंतज़ार करवा दिया एवरीवन। सो हाय एवरीवन, हेलो, गुड आफ्टरनून खुशी एंड प्राची।
1: गुड आफ्टरनून,
0: हाउ आर यू?
1: आई एम फाइन।
0: ओके, फाइन। एंड बताइएगा प्राची, आपके कैसे हाल हैं?
2: मैं भी अच्छी हूँ और आपकी बातें सुनकर और भी अच्छी होती।
0: अरे वाह, क्या बात है, इतने स्वीट, इतना यू नो, आप बोल रही हो ना खुशी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इधर से ना उधर पहुँच जाऊँ आपकी साइड, इतना मीठा कैसे बोलती हूँ, हाँ बताओ जरा।
1: ये आपको देख देख के सीखने का असर है।
0: ओ, ये खुशी का असर है? हाँ
1: बिल्कुल।
0: अरे ये तो
1: खुशी का असर हो गया,
0: खुशी का असर हो गया है बिल्कुल। तो प्राची बताएगा, आज मदर्स डे स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं हम मदर्स के लिए, वैसे तो हर दिन उनका होता है, उनके लिए होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतना बिजी हो जाते हैं काम में, स्टडी में, जॉब में, कि हम टाइम ही नहीं दे पाते हैं। एंड आज ऐसा दिन है, संडे भी है, आज कोई बहाना नहीं है कि आज मम्मा हमारे पास बहुत काम है, आज तो आप फ्री हैं, तो आज स्पेशल आप क्या मदर्स के लिए कर रहे हैं, ये हम अपने श्रोताओं से पूछेंगे। लेकिन प्राची, हम आपसे जानना चाहते हैं, 2 लाइन अगर आप मम्मा के लिए कुछ कहना चाहते हो।
2: थैंक यू खुशी कि आपने मुझे 2 लाइन बोलने का मौका दिया।
0: मोस्ट वेलकम।
2: और आज में बहुत प्यारी बातें हैं, और हम जानते हैं कि मदर्स डे हर दिन मदर्स के होते हैं, पर ये जो डे है जो स्पेशली हमें याद दिलाता है कि मदर्स का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हम अपने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भूल जाते हैं और उन्हें टाइम भी नहीं दे पाते सच में। वो हमारे लिए ज़िंदगी भर हमारे लिए लगी हमेशा काम करती रहती हैं और 24/7 हमारे लिए अवेलेबल रहती हैं। उनका हमारी लाइफ में होना बहुत बहुत मैटर करता है, और इसी को लेकर कुछ प्यारी बातें हैं जो मुझे याद आ रही हैं। माँ के बिना हर घर सूना लगता है, हर रिश्ता अधूरा लगता है।
1: जिसके सर पर माँ का हाथ हो उसे हर मौसम प्यारा लगता है।
0: क्या बात है भैया, आपने तो मौसम ही बना दिया, इधर बाहर इतनी गर्मी है लेकिन अंदर एकदम कूल यू नो वेदर है, क्योंकि इन कुड़ियों की आवाज़ इतनी प्यारी है। देखिए, मैं खुशी यहाँ पर खुशियाँ तो लेकर आई हूँ, लेकिन खुशियों के साथ साथ ढेर सारी खुशियाँ और लेकर आई, क्योंकि 2 कुड़ियाँ और मेरे साथ हैं, करेंगे ढेर सारी बातें एवरीवन इस दोपहर को, बनाएंगे और भी ज़्यादा आपके साथ खूबसूरत। और जो इस समय हमें सुन रही हैं हमारी सारी फीमेल्स, जो मैम सुन रही हैं हमें, उनको हम कहना चाहेंगे कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, साड़ी पहन के, ओहो रेड कलर की चूड़ियाँ पहनकर, वाह वाह वाह क्या बात है, और ये बालों में जो गजरा लगाया हुआ है ना आपने, हाँ जोड़ा बनाकर, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं कहती हूँ आपको कि पता है क्या, काला टीका लगा लो, नजर ना लग जाए आपको। हाँ देखो कितनी प्यारी स्माइल कर रही हैं आप, ऐसे ही मुस्कुराती रहो। और ये गाना है बहुत ही अमेजिंग ट्रैक, आपके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ स्पेशली आपको, तो ये ट्रैक आप इंजॉय करें, ऑल मदर्स के लिए है। मैं लौट कर आती हूँ बस इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, करेंगे ढेर सारी बातें खुशी और प्राची के साथ। तो एवरीवन, आप भी अपने यहाँ पर वॉइस नोट एंड अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं अपनी मम्मा के लिए, कुछ कहना चाहते हैं, और हाँ कुछ और भी स्पेशल बात करेंगे, लेकिन पहले गाना सुन लेते हैं, क्योंकि वो सबरे से इंतजार कर रहा है और मैं भी, क्योंकि मुझे पानी पीना है। और मैं आपको भी कहना चाहूंगी कि प्लीज पानी पी लीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
7: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
6: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यहीं चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
7: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
8: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
9: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हे हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का आरजे खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है। और मैंने जैसे आपसे कहा था श्रोताओं कि आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में दो दो कुड़ियाँ बैठी हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। सादगी में भी भाई ये कहर ढा रही हैं। एंड कहते हैं ना दोस्तों कि असली खूबसूरती ना इंसान की सादगी में होती है एंड उसके व्यवहार में होती है। तो वैसी ही ये लड़कियां हैं, देखने में बड़ी मासूम हैं लेकिन बातें बहुत प्यारी हैं। तो चलिए सीधा इनसे कनेक्ट करते हैं और इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। हेलो
1: हेलो खुशी,
0: यस प्राची, कैसे हो आप?
1: अच्छा।
0: कैसे लग रहा है आज इस चेयर पर बैठ के लाइव शो कर, मतलब मेरे साथ आप लाइव में हैं, ज्वाइन किया है आपने, तो कैसा लग रहा है बताइए?
1: बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी बातें सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बहुत अच्छा लग रहा है, बस बहुत अच्छा लग रहा है, मत पूछिए कितना अच्छा लग रहा है। प्राची ये कहना चाहती
1: है
0: अच्छा, तो मैं जानना चाहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल प्राची आपसे कि आपकी लाइफ में आपका सबसे यू नो होता है कि लाइफ में सबकी बेस्ट फ्रेंड होती है, तो कहीं ना कहीं आप भी अभी टीचिंग भी करती हैं और कहीं ना कहीं आप यू नो कॉलेज में भी स्टडी की है आपने, तो आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? वैसे तो बहुत सारी फ्रेंड होती है लेकिन बेस्ट फ्रेंड कौन है आप मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ।
1: मेरी बेस्ट फ्रेंड वैसे तो हाँ बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड होती है, पर जो एक माँ से रिश्ता होता है उसकी बात अलग होती है। ये हमें पता है कि वो हमारा कभी भी कुछ बुरा नहीं चाहेंगी, हमें हमेशा अच्छा बताएंगी।
0: राइट।
1: तो मेरा रिश्ता मेरी मम्मी से ऐसा ही है कि हमेशा उन्हें जो भी कुछ बताओ वो समझती है। और ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे मोमेंट्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि जो मम्मी हमें मतलब कुछ चीज़ें हमें पापा से छिप के कुछ करना होता है,
0: हाँ, तो वो मम्मा वहाँ पे सपोर्ट करती हैं,
1: हेल्प करती हैं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
0: राइट।
1: तो ये मतलब मम्मी इतना समझ लेती है, तो ये सच में ये बेस्ट फ्रेंडशिप का एक बहुत अच्छा साइन है जो मुझे लगता है कि मम्मी के अलावा कोई नहीं कर सकता।
0: राइट, बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। और दोस्तों कहीं ना कहीं देखो माँ तो माँ होती है लेकिन माँ के साथ बेस्ट फ्रेंड वाला जो रिश्ता है ना, जो कनेक्शन है वो अलग ही होता है। उसमें ना हम एक बेस्ट फ्रेंड में ये रहता है कि कुछ माँ जब होती है तो माँ से हर बात हम छिपा नहीं पाते हैं क्योंकि वो बिना जाने सब कुछ जान लेती है। मैजिकल है, मैजिकल पावर है ये। और लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि माँ में माँ और बेस्ट फ्रेंड का दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, क्योंकि एक लड़की ना अपनी माँ से तभी वो अपनी बातें खुलकर कह पाती है जब मम्मा बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाती हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्राची कि एक जगह तो लगता है हमें, एक तरफ लगता है कि मम्मा है, हम मम्मा से क्या बोलें, खुलकर अपनी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन जब वहीं पर मम्मा जब हमारी दोस्त की तरह, हमारी सखी की तरह हमसे हर बात मालूम करती हैं, हमारे सुख दुख में हमारा साथ देती हैं, जैसे आपने कहा कि कहीं कभी कभी ऐसे मोमेंट हो जाते हैं जहाँ पर पापा से हम बोल नहीं पाते लेकिन मम्मा से हम बोल देते हैं और उस चीज़ में मम्मा हमें सपोर्ट करती हैं, हमें हेल्प करती हैं, वो जानती हैं कि हमारी बेटियाँ कहीं ना कहीं अच्छा कर रही हैं और वो आगे और भी बेस्ट करेंगी, तो उसके लिए मम्मा यू नो आपको हेल्प करती हैं। तो कहीं ना कहीं बेस्ट फ्रेंड वाला साइन है जो आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम बातों को आगे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं खुशी से कि खुशी आप मुझे बताइएगा आपकी सबसे फेवरेट डिश जो मम्मा बनाती हैं और आपको बहुत पसंद है, जब आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप उस चीज़ को मिस करते हो कि नहीं, ये मैं भले ही 5-स्टार होटल में आई हूँ, रेस्टोरेंट में आई हूँ, लेकिन मम्मा के जैसा हाथ का खाने का स्वाद नहीं है। वो कौन सी डिश है
1: सबसे प्यारा जो बनाती हैं? वो है आलू टमाटर चावल, क्योंकि
0: आलू टमाटर चावल वाह
1: वाह, आगे सभी कुछ फेल है। अगर मुझे कोई कहे कि रेस्टोरेंट में खाने चले जाओ और घर पर ये चीज बनी है तो मैं रेस्टोरेंट को स्किप करके घर पर ही खाऊंगी, क्योंकि मम्मा वो बहुत टेस्टी बनाती है।
0: ओके, तो उस दिन आप कितना, एक प्लेट खाती हो, दो प्लेट खाती हो?
1: उस दिन मत पूछिए, प्लेट तो ऐसे भरती हुई चलती है, 5 प्लेट तो मैं आराम से खा सकती हूँ।
0: वैसे लड़की को देख के लग नहीं रहा कि 5 प्लेट खा लेती है, क्योंकि इतनी मतलब अच्छी लड़की है, गुड गर्ल है एंड हेल्दी भी है, पर ज्यादा नहीं है जितना उसने बोला ना कि 5 प्लेट खा लेती हूँ, उस अकॉर्डिंग नहीं लग रही है, बट मुझे देख के लग रहा है कि मैं 5 प्लेट पक्का खा लेती हूँ।
1: आप खा भी सकती हो क्योंकि, अच्छा, मेरी मम्मा बहुत टेस्टी बनाती है।
0: ओके, तो फिर डन, एक दिन हम जरूर आएंगे आपके घर, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हमारी बातें यहाँ पर चलती रहेंगी कंटिन्यू, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपनी मम्मा का प्यारा सा किस्सा, प्यारा सा मोमेंट, आप अपना जो आज भी आप मिस करते हैं लाइक बचपन वाला, एंड जब आप अकेले में होते हैं तो आप मम्मा की वो बातें, वो मोमेंट अभी भी याद करते हो तो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल भी आती है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन भी रहता है। तो मुझे बताइएगा वो मोमेंट कौन सा है, कैसा है, एंड उसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको जाना होगा, लाइक अपना फ़ोन उठाना है और व्हाट्सएप पर जाना है, और हमारा मोबाइल नंबर आपको डायल करना है 9837896896। इस पर आप अपने मैसेज, अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वो मोमेंट जो आप बहुत ज़्यादा आज भी मिस करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है प्राची कि आज के टाइम में सब इतना बिजी हो गए हैं, कोई स्टडी की वजह से है, कोई जॉब की वजह से है, किसी ना किसी रीज़न की वजह से फैमिली से दूर हो जाते हैं। आजकल का जैसा टाइम है, जैसे जैसे कहीं ना कहीं फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पर इतना बिजी रहते हैं, पास में अगर पेरेंट्स बैठे भी हैं ना तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आजकल ऐसा हो गया है प्राची एंड खुशी, आपको भी पता है कि एक रूम में अगर चार लोग हैं ना तो लगते ही नहीं कि चार लोग बैठे हैं साथ में, सब अपने अपने फ़ोन में बिजी होते हैं, एंड मम्मा बच्चों का चेहरा देख रही है और बच्चे मोबाइल का चेहरा देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। लेकिन वो भी चाहती है ना, उनकी भी तो उम्मीदें होती हैं ना कि 2 मिनट बच्चा मुझसे बात करे, मेरा हाल चाल जाने। तो मैं कहना चाहती हूँ कि उन बच्चों को टाइम देना चाहिए अपनी फैमिली को, क्योंकि ठीक है सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना मैं नहीं कहती आज के टाइम में कि थोड़ा गलत है, क्योंकि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा भी है, क्योंकि एक पहलू के दो सिक्के वो क्या बोलते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, आपके हाथ में होता है। तो मैं प्राची आपसे जानना चाहूँगी, आप मुझे बताओ कि जैसे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं, अपने पेरेंट्स को बहुत कम वक्त देते हैं, तो क्या उनको क्या करना चाहिए, आप क्या मैसेज देना चाहोगी उन बच्चों को जो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं?
1: मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, क्योंकि हम हर वक्त जब फ़ोन में बिजी रहते हैं। हाँ, वैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बच्चों के माइंड को डाइवर्ट कर रही हैं।
0: हाँ,
1: स्नैपचैट और बच्चों की गेम्स
0: गेम्स वगैरह, राइट।
1: तो ये जो सारी चीज़ें हैं सबने इतना डाइवर्ट कर दिया हमारा माइंड, बच्चे ही नहीं बड़े भी टाइम नहीं दे पाते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक रिमाइंड कराना चाहिए खुद को कि अब हमें स्किप कर कि अब हमें थोड़ा ब्रेक देना है और अपनी फैमिली से बात करनी है।
0: रियल की जिंदगी से रियल वाली जिंदगी में भी आना चाहिए।
1: कहा आपने कि हमें रियल की लाइफ से रियल लाइफ में भी आना है। उसके लिए हम अगर हमारा सारा टाइम हमारे काम ऐसे है कि हमें पूरे दिन फोन ही यूज करना पड़ता है, तो हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं,
0: राइट,
1: कि अब मुझे इस टाइम फ्री रहना है और अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है लाइफ में।
0: एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बोला है कि वो भी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है प्राची कि देखो हमारे पास जो टाइम है, जो इस पल हमारे पास वक्त है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास आगे भी हो, समय का कुछ नहीं पता है। तो आपके पास जो टाइम है इतना ब्यूटीफुल, आपको भगवान ने यू नो सब कुछ दिया है, पेरेंट्स दिए हैं, है ना, आपके सिस्टर ब्रदर आपके फ्रेंड सब कुछ तो है आपके पास। तो आप, मैं कहना चाहूँगी कि इस समय को ना, इस पल को, इस मोमेंट को आप अच्छे से जियो, टाइम स्पेंड करो अपनों के साथ, क्योंकि जो वक्त बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता है। तो इसको ब्यूटीफुल बनाओ यार, इतना बोरिंग क्यों बनाना। सोशल मीडिया ठीक है, थोड़ा बहुत चलाओ, हटाओ, साइड में रखो फोन को, थोड़ा अपनी फैमिली को टाइम दो। हाँ, बात नहीं मानते हैं मेरी
1: मम्मी स्टाइल
0: हाँ वो थोड़ा सा आ जाता है ना, क्योंकि मम्मी के साथ जब टाइम स्पेंड करती है ना लड़कियां स्पेशली, तो वो उनकी चीजें सीख जाती हैं। अच्छा, कोई ऐसा टोंट जो मम्मा बार बार मारती हैं, आप मुझे बताओ प्राची एंड खुशी दोनों बताओ, कौन सा है जो मम्मा बार बार बोलती हैं?
1: वैसे मेरी मम्मी तो मुझे बोलती है हमेशा, जब देखो तब आती है, अपना काम करती है और बस
0: फोन चलाती रहती है,
1: चलाती रहती है।
0: अच्छा,
1: पर आपको पता है मैं एक अच्छी बात बताऊँ, मैं उन्हें फोन चलाना बताती हूँ कि मम्मी ऐसे ऐसे करना है, और वो भी मुझसे पूछती हैं। उनको काफी सारी चीजें मैंने सिखाई हैं, तो उनको भी काफी इंटरेस्ट आते हैं।
0: हाँ, कुछ नई नई चीजें सीखने में अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हम भी पेरेंट्स को वो सिखा रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं आपको बताती हूँ प्राची, मेरी मम्मा को जब हमने फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन दिया तो मम्मा को फोन चलाना नहीं आता था प्रॉपरली, क्योंकि मम्मा तो छोटा फोन रखते थे, कीपैड फोन रखते थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने कॉल किया तो मम्मा ने बोला कि कैसे रिसीव करना है, मुझे आता नहीं है। उन्होंने रिसीव करने की जगह कट कर दिया दो बारी। तो मैंने उनको फिर सिखाया और फर्स्ट टाइम उन्होंने वीडियो कॉल किया स्पेशली मामा जी को, तो वो इतना खुश हो गई। मामा जी से कहाँ पे कॉल पे बात किया करते थे, चेहरा नहीं देख पाते थे, लेकिन जब उन्होंने फेस टू फेस एक दूसरे को देखा, मामा जी को एंड अपनी उन्होंने पूरी फैमिली को देखा, भाई अपने भाइयों को कौन मिस, शादी के बाद कितना मिस करते हैं अपनी फैमिली को। तो मम्मा बहुत मिस कर रही थी और वो बहुत खुश हुई और उस दिन उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट दिया है। वो क्या दिया है मैं आकर बताऊंगी दोस्तों, अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है? अभी थोड़ा सा सस्पेंस तो बनाकर रखना चाहिए, क्यों प्राची? बहुत सारी बातें हो गई हैं दोस्तों एंड खुशी से भी हम मालूम करेंगे बहुत सारी बातें, क्योंकि खुशी टुकड़ टुकड़ निहार रही है हमारी तरफ कि कब हमें खुशी मैम मौका देंगी बोलने का। तो बिल्कुल आपको भी पूरा हम चांस देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों के ना वॉइस नोट आए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से, तो उनको भी हम प्ले कर देते हैं एंड बच्चों के दिल की बातें भी जान लेते हैं कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं आज, सुन लेते हैं, है ना? ठीक है, सुनते हैं। चलो बच्चों सुनते हैं बच्चों के मन की बात और मैं कराती हूँ। दोस्तों अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं मदर्स डे स्पेशल अपनी मम्मा के लिए तो बिल्कुल कह सकते हैं दिल खोल कर, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप ही के लिए है और शो का नाम है बिंदास बोल, जहाँ पर आप बिंदास होकर बातें कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: कैसे हैं आप? आज एक ऐसी हस्ती की बात करना है जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया गया। माँ हमें सिर्फ जन्म नहीं देती बल्कि हमारे पहले गुरु और दोस्त होती है। वह बिना किसी स्वार्थ के दिन रात खुशी के लिए काम करती है। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, हम माँ के लिए छोटे बच्चे रहेंगे। थैंक यू FM मुरादाबाद, RJ आनंद भैया।
1: Hello Anand Bhaiya, how are you? My name is Satyam. Today I want to sing some rhyme on Mother's Day. She wipes my tears, she lamps my fears, she is the reason of all my tears. No diamond, no gold can compare to the

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
5: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
6: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
5: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: हे हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और ये है आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जहां पर बातें होती हैं दिल की, और दिल के साथ साथ बातें रियल भी होती हैं। भैया, दिल का हाल तो अच्छा होता ही है, लेकिन हाँ, कभी कभी बहुत ख़राब भी हो जाता है। पता है कब? मैं बताती हूँ, जब हम कहीं जाते हैं और जब हम सोचते हैं कि हम जल्दी पहुँच जाएँ, लेकिन उस वक्त ही लेट होता है। अच्छा प्राची, आपके साथ ऐसा होता है? होता भी होगा, क्योंकि आप टीचर हैं एंड आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में जाना होता होगा। आप सोचते होंगे कि बस मैं जल्दी से कैसे भी करके कॉलेज पहुंच जाऊं, लेकिन क्या होता है उस टाइम पे लेट भी हो जाता है कभी कभी। कितने बजे उठते हो आप सुबह?
1: वैसे मैं
0: 6 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन जो नींद है ना वो कहती है कि थोड़ा सा 5 मिनट और सो जाओ।
1: हाँ, पर 5 मिनट नहीं सोना चाहिए।
0: ये 5 मिनट
1: सो गए तो फिर अपनी सारी शेड्यूल खराब हो जाता है सारा।
0: ये 5 मिनट जो होते हैं ना दोस्तों, सुबह सुबह के बड़े ही खराब होते हैं। खुशी, वो खुशी मैं बोल रही हूँ, खुशी से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मैं खुशी यहाँ पर अकेली नहीं हूँ। एक और खुशी यहाँ पर है जो मुस्कुरा रही है इस वक्त एवरीवन, एंड हम बात कर रहे थे 5 मिनट की। तो मैं कहती हूँ प्राची, ये जो 5 मिनट होते हैं ना, कब 1 घंटे में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, पता नहीं चलता है।
1: पर फ्रेंड्स, हमें मतलब पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे 5 मिनट्स को हम नहीं
0: हमें छोड़ना चाहिए, स्किप करना चाहिए 5 मिनट को। इसको हमें वो नहीं करना चाहिए कि चलो 5 मिनट और सो जाते हैं, इसको कभी नहीं, यू नो, एक्सेप्ट नहीं करना। हाँ, छोड़ देना चाहिए 5 मिनट्स वाला। हाँ, अगर इसको हम पकड़ के रखेंगे तो फिर हम लेट नहीं हो जाएंगे।
1: हाँ,
0: देखिए प्राची कहती है, पर सुबह की नींद बड़ी खूबसूरत होती है प्राची,
1: और ये तभी ज्यादा खूबसूरत लगती है जब हमें सारे इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं, वरना जिस दिन कोई इम्पोर्टेंट वर्क ना हो तो उस दिन नींद नहीं आती।
0: हाँ, ये अक्सर ना आरजे आनंद जी के साथ होता है। एक्चुअली वो हर दिन एवरी डे उनको बहुत नींद आती है। सुबह सुबह 5 बजे वो उठते हैं तो वो उनको नींद इतनी आती है, लेकिन संडे का दिन जब उनका ऑफ होता है, छुट्टी होती है, तो वो सोचते हैं आज तो मैं आराम से सोऊंगा, आज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो उस दिन अलार्म भी नहीं लगाते हैं लेकिन उनकी आँखें ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। ऐसा होता है यार, वो हैबिट में हो जाता है ना, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है। और मैं तो रात सो ही नहीं पाई यार। वैसे तुमने भी बताया था दोनों ने कि मैं भी नहीं सो पाई हूँ। हम तीनों ही नहीं सो पाए रात, सोए थे, लेकिन वो प्रॉपरली होता है ना कि कंटिन्यू सोना।
1: हाँ, कभी नींद नहीं आ
0: जाए। मैं रात की 2 बजे तक सोई नहीं यार, मैं इंतजार ही करती रही कि फैमिली मेंबर्स बाहर थे तो वो आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आए और मेरी नींद भी कम्प्लीट नहीं हुई। लेकिन सुबह तो जल्दी उठना ही होता है, फिर मम्मा ने मुझे सुबह सुबह कॉल किया 6 बजे कि बेटा उठ जाओ, आज तुम्हें ऑफिस जाना है। क्योंकि मैं उनको रात बोलकर सोई थी कि मम्मा मुझे उठा देना सुबह, कभी लेट हो जाए, क्योंकि नाइट में लेट सोए थे। तो उन्होंने मुझे सुबह 6 बजे उठाया, कॉल किया, एंड उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया कि आज संडे है, ऑफिस जाना है। सबका ऑफिस ऑफ होता है, मेरा ऑफिस ऑन होता है संडे, बट आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि संडे का दिन मेरे लिए, मैं सभी का दिन बना पाऊँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, अपनी 100% देती हूँ, और आई होप आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा आज का शो। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा खुशी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा बचपन का किस्सा जो आपको आज भी याद आता है अपनी मम्मा का, और थोड़ा सा फनी भी है, थोड़ा सा इमोशनली भी है, लेकिन बहुत प्यारा है। जब आप फ्री होती हैं तो उस मोमेंट को याद करती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है।
2: तो मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी जो मेरी मम्मा और मुझसे रिलेटेड है। एक बार ही क्या हुआ था, हमारे गांव में ना मेला लगा था, और मेरे को वहाँ जाना था क्योंकि मेरे सभी फ्रेंड्स जा रहे थे। अब मुझे पता था अगर मम्मी से पूछूंगी तो मम्मी तो एकदम मना कर देंगी, बोलेंगी कि पापा आए तब जाना, या मतलब किसी के साथ जाना, लेकिन मुझे जाना था। तो मैं बिना बताए और मम्मा के पर्स में से पैसे लेके और फ्रेंड्स के साथ मेला देखने चली गई। फिर उसके बाद जब मैं रास्ते में आ रही थी, मुझे पता था बहुत डांट लगेगी, लेकिन जब मैं घर पहुंचती हूँ और जब मम्मी मेरे सामने आती है ना, तो मैं एकदम से सोच में पड़ जाती हूँ, अब तो मैं पक्का गई। लेकिन उस वक्त मेरी मम्मा ने मुझे ना डांटा ना कुछ कहा, बस इतना ही समझाया कि बेटा कहीं भी जाना, लेकिन हमेशा किसी ना किसी को बता के ज़रूर जाना। तो ये चीज़ पे मुझे अभी भी हंसी आती है, क्योंकि मुझे पिटाई होने का भी डर था, डांट पड़ने का भी डर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इससे मोटिवेशन भी एक मिला और एक सीख मिली कि हाँ, कभी भी कहीं भी जाओ तो बता के जाना चाहिए।
0: हाँ बहुत ही अच्छा, खुशी के लिए क्लैपिंग तो होना चाहिए, इतना अच्छा उन्होंने किस्सा शेयर किया है प्राची। वैसे आपके किस्से से ही मेरा भी एक ऐसा ही यू नो मोमेंट जुड़ा हुआ है, कनेक्टिव बिल्कुल सेम है। एक बार हमारे यहाँ पर भी मेला लगा हुआ था हमारे सिटी में, जब हम बहुत छोटे थे, स्कूल से हम लोग घर आने का टाइम होता है छुट्टी के समय, तो हमारी जो फ्रेंड होती है बचपन में तो उतना पता नहीं होता है, लेकिन सब बच्चों ने मिलकर प्लान किया कि चलो अब तो छुट्टी हो गई, अब हम घूमने चलते हैं मेले में और ट्यूशन के टाइम पे हम घर पहुंच जाएंगे। तो क्या हुआ, हम लोग इतना मस्त मगन हो गए, झूला कभी झूला झूल रहे हैं, कभी आइसक्रीम खा रहे हैं, कभी हम गेम खेल रहे हैं वहाँ पर, तो हमें पता ही नहीं चला कि कब शाम की 5 बज गए। तो मम्मा भी परेशान, पापा जी भी परेशान कि बच्चे अभी तक आए नहीं है स्कूल से, और यू नो स्कूल में मम्मा पापा मालूम करने गए कि बच्चे अभी तक क्यों नहीं पहुँचे, आज कौन सी पढ़ाई हो रही है जो सुबह से शाम तक घर ही नहीं आए। उन्होंने कहा हमने तो राइट टाइम छुट्टी कर दी है बच्चों की, और फिर मम्मा पापा ने हमें ढूंढा, वो बहुत परेशान हुए, तो हम शाम में गए। हमने कहा आज तो हमारी खैर नहीं है, दोनों बहन भाई बड़े भैया और मैं, कि आज तो हमें बहुत डांट लगने वाली है। तो हमने कहा हम कोई बहाना मिलाएंगे मम्मी पापा को कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा हम वहाँ चले गए थे। तो फिर भैया ने कहा ठीक है, तो फिर हम लोग जैसे ही घर गए, घर पहुँचे, तो क्या हुआ, मैं तो बहुत लड़की रोने वाली हूँ, हंसती भी बहुत हूँ तो मैं रोती भी बहुत ज़्यादा हूँ। तो मैंने कहा भैया मेरे को ना, मैं मम्मी से कुछ नहीं बोलूँगी, मैं तो अपने आंसू टपका दूँगी, भर भर के रो दूँगी, मम्मी वहाँ पे मुझे कुछ डांटेंगी नहीं, आप क्या करोगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ यार तेरा तो ये अच्छा बहाना है, मैं क्या बहाना लगाऊंगा बताओ। मैंने कहा आप मेरे पीछे रहना है, बस मैं बोल दूँगी भैया मेरे साथ थे। तो भैया ने कहा ठीक है। तो हम लोग गए और मैं मम्मी के सामने जैसे गई, मैं कुछ बोल तो नहीं पाई, तो मैं ना ऐसे ही रोने लगी बहुत ज़्यादा। मम्मी कहती हैं कि क्यों रो रहे हो, मैंने कहा मम्मी सॉरी, हमने आपको बिना बताए ऐसे ऐसे चले गए थे फ्रेंड के घर, कि उनके यहाँ पे फंक्शन था, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती लेकर चली गई। तो मम्मी के सामने मैं रोने लगी, तो मम्मी ने मुझे गले लगाया, शांत किया, और जैसे ही पापा आए तो पापा के सामने हम दोनों डर गए। तो पापा को मम्मी ने ही गाइड किया, समझाया वहाँ पे, तो पापा ने हमें नहीं डांटा, लेकिन पापा मम्मा ने यही कहा कि अगर आप कहीं जाते हो तो बच्चों बताकर जाओ, क्योंकि आपके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, और फिर ऐसे अगर आप कहीं भी चले जाओगे तो फिर ये गलत बात है। अगर आप कभी भी हमेशा कहीं भी जाओ तो फैमिली को इन्फॉर्म करो, बताकर जाओ, और हमेशा मोबाइल नंबर पास रखो, आप किसी से भी कॉल कराओ, कभी ऐसी सिचुएशन ना आए, कोई प्रॉब्लम हो जाए और हम सोचें कि बच्चे तो गए गए होंगे फ्रेंड्स के घर, तो फिर वो मुझे जो बातें हैं मम्मा पापा की वो आज भी मुझे याद है, और मैं हमेशा आप भी कहीं जाती हूँ तो हमेशा मैं मम्मी पापा को बताकर जाती हूँ, भले ही मैं बड़ी हो गई हूँ लेकिन उनके लिए हमेशा वो बच्ची ही हूँ मैं, छोटी सी, तो मम्मी पापा को हमेशा मैं बताकर जाती हूँ। और जब तक मैं पहुँचती नहीं हूँ अपनी मंजिल तक, तब तक मम्मा की कॉल बैक टू बैक आते रहते हैं कि कहाँ पर हो, ठीक से पहुँचे हो नहीं पहुँचे हो। तो वो मम्मा का प्यार बच्चों के लिए हमेशा होता है, और उनके लिए ना हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं, है ना प्राची। अभी आप ही बताओ, आप तो ऐसे टुक टुक निहार रही हो जैसे मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, कहाँ खो गई हो आप?
1: आपकी कहानी में खो गई थी, ऐसे आप बता रही थी तो मेरे माइंड में पिक्चर चल रही थी।
0: तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ में हुई, और फिर वो मोमेंट था बहुत ही खूबसूरत, लेकिन आज भी जब हम सब लोग साथ बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा यू नो मम्मी भी वो याद करती हैं कि तुम्हारे बहाने बहुत होते हैं। मैंने कहा वो मम्मा टाइम बहुत प्यारा था बचपन वाला, और अभी भी हम जब भी साथ होते हैं ना तो हम हमेशा टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली के साथ हम ज़्यादा समय देते हैं क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि जब हम घर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी कुछ दिल की बातें सुने, कुछ अपनी भी सुनाए, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे मैं देखो कितना बोल रही हूँ, शांत होने का नाम नहीं ले रही हूँ। चलो अभी गाना सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं, ठीक है? तो जब लौट कर आएंगे ना, मैं अपने श्रोताओं से भी बोल रही हूँ कि दोस्तों आप भी कुछ अपना किस्सा शेयर करो। ओहो, सोच तो बहुत कुछ रहे हो पर सोच रहे हो कि बोलें या ना बोलें। देखो आज मम्मा का दिन है, और मम्मा के लिए जितने भी बातें आपके दिल में है ना, जो आप कहना चाहते हैं अभी तक नहीं बोला है, तो कह दूँ, बहुत अच्छा मौका है, मिस मत करो, ठीक है? मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं प्यार से बोल रही हूँ, समझा करो। चलो लौट कर आते हैं एक पहले से गाने की बात, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है, एंड ये गाना है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। ये इन प्यारी सी ब्यूटीफुल सी गर्ल्स के लिए है, क्योंकि ये आई हैं मेरी लाइफ में ना तो कुछ लेकर आई हैं स्पेशल, और जब खाने पीने की बातें होती है ना तो खुशी पीछे नहीं होती है, वो हमेशा बहुत आगे है। तो क्या लेकर आई हैं ये, वो तो मैं अभी मुझे नहीं मालूम है, जब खाएंगी तो बताएंगी आपको भी एवरीवन कि क्या लेकर आई हैं दोनों कुड़ियाँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, कुछ तो स्पेशल लेकर आई हैं। चलो अभी गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को बताया कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो।
1: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
2: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
3: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
2: अरे वाह।
3: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
2: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।

수 हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और यहाँ पर अभी वक्त हुआ है 4:35। कितनी जल्दी वक्त गुजर जाते हैं ना साथियों, पता नहीं चलता है। जब हम अपनों के साथ होते हैं ना तो ऐसा ही होता है। और आप हमारे अपने हैं, हम भी आपके अपने हैं, दिल से दिल का रिश्ता है। देखिए, हम यहाँ से बातें करते हैं और आप वहाँ से मुस्कुराते हैं, यही तो कनेक्शन होता है आपका और हमारा। अभी आपके यहाँ पर खूबसूरत बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं, तो हम उनको जल्दी से शामिल करते हैं और बात करेंगे अभी हम खुशी से भी और प्राची से भी। एक खुशी तो बात कर ही रही है, लेकिन इधर एक और खुशी है, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, प्राची से भी करवाएंगे। प्राची बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी लड़की है, जो बहुत प्यारी प्यारी शायरियाँ भी करती हैं, और अभी कोई शायरी भी वो बोलने वाली हैं। तो क्या है वो शायरी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं हम, हाँ, मैसेज जो यहाँ पर आए हैं उनको जल्दी से शामिल करते हैं। चलिए एवरीवन, शुरुआत करते हैं, ये सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत प्यारा प्यारा यहाँ पर संदेश आए हुए हैं, प्यारे प्यारे एंड प्यारा प्यारा आपका चेहरा है, बहुत प्यारा साथियों। हम आपकी तारीफ ही इसलिए करते हैं ताकि आप खुश हो जाएं। देखिए दोस्तों, खुशी जब कोई तारीफ करते हैं ना हमारी पूरे दिल से, तो उसमें नहीं कहने की खुशी होती है, जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं और हम उम्मीद तभी रखते हैं। अब हम क्या होते हैं ना साथियों, जो हम देते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है। तो हम सोचें कि हमारी कोई तारीफ करे या फिर हमें कोई अच्छा बोले, तो उसके लिए पहले आपको खुद किसी को अप्रिशिएट करना होगा। आपको खुद को किसी को आप अप्रिशिएट करेंगे, जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देंगे अच्छा, तो रिटर्न में आपको भी मिलेगा ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं, इतनी प्यारी सी आप सभी की आवाज़ है श्रोताओं, तो आप भी अपनी आवाज़ों में कुछ पहुँचाओ, कंजूसी बिल्कुल भी मत दिखाओ, गलत बात है। और यहाँ पर आए हैं बहुत प्यारे प्यारे मैसेज, तो उनको हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। एंड सबसे पहले हमारे पास मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, एंड ये मैसेज पहुँचाते हैं इरशाद हुसैन अंसारी जी, और साथ में शहीद शारिक अली जी भी हैं, एंड साथ में नाजिम अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। और ये कहते हैं, खुशी जी आपको आदाब, कैसी हैं आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आपकी दुआएं हैं। एंड कहते हैं कि आपका संडे का शो बिंदास बोल हम सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे सॉन्ग के साथ आप बहुत सी अच्छी जानकारियाँ भी लेकर आती हैं, एंड जिन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और आज आपके कार्यक्रम में आपकी जो बातें हैं, जो यहाँ पर दो कुड़ियाँ हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं, शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर, ये आज़ाद नगर करूला मुरादाबाद से आया इरशाद हुसैन अंसारी जी का। ये कहते हैं, हेलो मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छे हैं हम। और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं इरशाद अंसारी, नाजिम शेख जी इनके साथ में हैं। और ये मैसेज अभी पहुंचा रहे हैं और कहते हैं, मैम हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू सो मच, एंड सेम टू यू एंड टू ऑल मदर्स, को भी हमारी तरफ से मदर्स डे की शुभकामनाएं, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। एंड यहाँ पर और भी मैसेज आए हुए हैं, प्रिया का मैसेज हमारे पास आया है, और प्रिया कहती हैं, हाय मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। तीनों लड़कियों की आवाज़ें सुन रहे हैं आज हम, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड कहते हैं कि एक के साथ दो, लेकिन यहाँ पर तीन तीन आवाज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं, हमारी शाम खूबसूरत हो गई है, थैंक यू सो मच। कुछ वॉइस नोट आए हैं तो दोस्तों उनको भी प्ले करते हैं, और उसके बाद फिर से हम अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो इन वॉइस नोट को भी सुनो, लौट कर आते हैं।

ब्रदर्स के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। हेलो अजय आनंद भैया, कैसे हैं आप? मेरा नाम साक्षी है, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं सभी मदर्स के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ।

0: आज है नंद भैया।
1: हेलो नंद भैया, हाउ आर यू? माय नेम इज अनिक। फर्स्टली आई वांट टू से हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ द मदर। आई वांट टू स्पीक सम लाइंस ऑन माय मदर। शी इज एन एंटरप्रेन्योर। माय मदर्स नेम इज रीना मोरा। शी इज माय हीरोइन एंड शी हेल्प होमलेस एनिमल्स। थैंक यू एफएम मदर बाय especially Anand Bhaiya to give me this opportunity to speak on FM Murshidabad.

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। एंड आज का मेरा शुभ ही एंड इसी पर हमने रखा है, स्पेशली ममा के लिए। एंड जितने भी मदर्स हमें सुन रही हैं उन सभी के लिए है। और ये गाना अभी आपने सुना तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भूली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। सच में ममा बहुत भूली और बहुत प्यारी होती हैं एंड उनके जैसा कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता यार, कोई भी नहीं। एंड ममा का प्यार ऐसा होता है लाइक अगर कोई हमें प्यार करता है ना श्रोताओं, तो उसके पीछे ना कोई स्वार्थ होता है, कोई किसी भी एक चीज को लेकर। लेकिन माँ पापा का प्यार एक ऐसा होता है जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो बच्चों से कोई नहीं कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन वो इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं, हमेशा वो सही डायरेक्शन बच्चों को दिखाते हैं ताकि बच्चा आगे बढ़े लाइफ में। कभी भी वो लाइफ में बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करते, हमेशा आगे बढ़ाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम भी आज इस मुकाम पर हैं तो अपने पेरेंट्स की वजह से हैं। एंड मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को, मम्मा पापा को, कि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतना अच्छा हमें ज्ञान दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। हम जहाँ भी जाते हैं सब हमारी तारीफें करते हैं। अब खुद से तारीफ करनी पड़ती है कभी कभी प्राची, क्योंकि जो जेन्युइन है मुझे ऐसा लगता है कि बोल देना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। क्यों, आप क्यों, आपको क्या लगता है बताओ?
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और मैं भी थैंक यू कहना चाहूँगी अपने मम्मी पापा को। उन्होंने जो भी हमें पढ़ाया लिखाया, और सच में बिना इसके तो सब कुछ आज जो भी हम समझ रखते हैं, जो भी हम दुनिया को समझते हैं, इसमें उनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है।
0: बिल्कुल राइट। एंड अभी हमने आपसे कहा था कि आप ममा के लिए कोई शायरी सुनाना चाहते हो, तो सुनाओ बिना किसी देरी के।
1: तो एक बहुत प्यारी सी शायरी है कि नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दुख ना देना उस खुदा की मूरत को, जमाना कहता है जिनको।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है यार, सुपर। तो अब खुशी से भी हम जाना चाहेंगे, क्योंकि खुशी भी हमें निहार रही है। और खुशी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो जेंजीज हैं, हम भी अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं हम भी अभी यंग हैं, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन्हें?
2: मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी मम्मा को थोड़ा सा ही सही बट टाइम दें। पूरा दिन आप अपने में बिजी रहते हैं, और ये नहीं कहूँगी कि अपने में ही बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपनी मम्मा के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि वही है जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। तो जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं उनके लिए थोड़ा टाइम निकालना तो बनता है।
0: थैंक यू खुशी, बहुत अच्छा आपने कहा है। जो माँ अपने बच्चों में ही अपनी दुनिया देखती हैं, उनके लिए हम सारी दुनिया हैं और वो हम बच्चों के लिए सारी दुनिया हैं। तो जो हमें अभी हमें छोटे बच्चे हमें सुन रहे हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, एंड सीनियर सिटीजन भी हमें सुन रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं कि बच्चे कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब सब मुस्कुराते हैं, और खुशी का तो यही मोटिव होता है कि जब वो आती है तो सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर आए, जैसे अभी आप इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहो और खुशी को दुआओं में याद रखो। बाकी दोस्तों, अभी जाना है नहीं जाना है आपको?
2: बिल्कुल टाइम
0: जाना है प्राची, मन कर रहा है जाने का?
1: वैसे मन तो नहीं कर रहा पर जाना तो पड़ेगा।
0: तो दोस्तों
2: हिसाब से चलना चाहिए।
0: बिल्कुल, समय को भी हमें ध्यान में रखना होता है। और अब हम आप सभी से लेते हैं जाने की अनुमति, लेकिन दोस्तों जाते जाते बस खुशी यही कहेगी कि देखिए आज संडे का दिन है, बहुत ही प्यारा सा, और स्पेशली आज कोई बहाना नहीं है आपके पास कि आज मेरे पास बहुत सारा काम है, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज आपने पूरे दिन रेस्ट किया है ना, आज आपके जो भी काम पेंडिंग थे वो कंप्लीट किए आपने। अब शाम का समय एक ऐसा होता है जब आप फ्री होते हैं, तो इस समय अगर आप कुछ बनाकर अपनी मम्मा को खिला सकते हो तो वेरी गुड। अगर नहीं बनाना आता है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बाहर लेकर जाओ कुछ स्पेशल। मम्मा का अपना फेवरेट पूछो, क्या उनको पसंद है, खिलाओ, शॉपिंग कराओ, घुमाओ। यार लड़कियों को तो शॉपिंग करने का बहुत मन होता है, बहुत ज़्यादा यू नो वो होती भी है। वैसे प्राची, आपकी मम्मा को है शौक शॉपिंग करने का?
1: मेरी मम्मी का तो ज़्यादा नहीं है,
0: लेकिन है। उनको मार्केट ले जाओ तो नहीं नहीं बेटा ये वाली साड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही, मुझे ये वाली पसंद आ रही है होता है ना। और आप बताओ खुशी, आपकी मम्मा को क्या पसंद है?
2: मम्मा जो होती है ना वो थोड़ा बचत का देखती है, तो इसलिए उनको हम मार्केट पे लेके जाएंगे ना तो वो एक ही चीज कहेंगी, बेटा अभी नहीं, मेरे पास बहुत रखी है।
0: हाँ बाद में ले लेंगे, अभी बहुत सारी, अभी तो वही नहीं पहनी जाती, इतनी सारी साड़ियाँ रखी हैं, बाद में खरीदेंगे। हाँ तुम्हें कुछ लेना है तो तुम बता दो।
2: हाँ ये रहता
0: वो है। अपनी खुशियों को पीछे रखती है, बच्चों की खुशियों को हमेशा आगे रखती है। तो मैं कहती हूँ कि आज अगर आपको पता है कि आपकी मम्मा का फेवरेट कुछ स्पेशल है जो काफी दिन से उन्होंने खाया नहीं है, या फिर कोई ऐसा उपहार, वैसे सबसे अनमोल तो समय होता है लेकिन कुछ स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो आप आज लेकर जा सकते हैं। क्यों प्राची, बहुत ही अच्छा दिन है ना। प्राची कह रही है कि आपने बहुत अच्छा मैम मुझे ये आइडिया दिया है और मैं भी शाम को कहीं घूमने जाने वाली हूँ। वैसे प्राची आज कहाँ जाने वाले हो आप?
1: वैसे
0: पिज्जा पार्टी होगी आज।
1: वैसे सामने ही हमारे घर की एक नया खुला है।
0: ओके ओके
1: स्टॉल।
0: ओके
1: तो वो भैया अभी पिज्जा वगैरह भी बना रहे तो वही ट्राई करेंगे।
0: अरे वाह वाह वाह क्या बात है, फिर तो हम भी आ जाते हैं चलें। पर वो कौन सा ट्रैक है, आज तो पार्टी बनती है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। प्राची ये बोलो आज की पार्टी मेरी तरफ से है।
1: खुशी की पार्टी आज मेरी तरफ से।
0: हाँ अब ये कौन सी खुशी को बोल रही हूँ, हम दोनों में कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि दोनों तुम्हारी तरफ दिख रहे हैं, तो बताओ कौन सी खुशी को बोल रही हो, दोनों खुशी को इन्वाइट कर रहे हो ना?
1: दोनों खुशी को।
0: ये खुशी आप तो खुश हो जाए,
1: पार्टी बनती है।
0: चलिए दोस्तों देखो अब हम तो जा रहे हैं भैया पार्टी करने के लिए, अब आप भी इंजॉय करो, खुश रहो, अपनों के साथ रहो और मुस्कुराते रहो, रेडियो बजाते रहो,
2: गुनगुनाते रहो।
0: वाह वाह वाह क्या बात है लड़कियों, आपने कमाल कर दिया आज। आपको मैं अपना फोन गिफ्ट में नहीं दूंगी क्योंकि ये बहुत अनमोल है। लेकिन हाँ अभी हम कुछ तो स्पेशल कुछ स्वीट में तो लेकर आई हैं लड़कियाँ, क्या लेकर आई हैं पता नहीं, देखो मैंने अभी तक खाया नहीं है गाइस, पर अब जाकर खाने वाले हैं, और क्या लेकर आई हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी, अभी नहीं, अभी आप प्यारे प्यारे गाने सुनो फिर लौट कर आती हूँ मैं।

0: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, ऑपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
1: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
2: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
2: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
3: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
4: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
3: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यहीं चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
4: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
5: टायर लो, सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
9: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर।

0: कहीं ना कहीं हम लोग अब खुद ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने देखा है कई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी फैमिलीज में बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, और खास तौर पे कुछ कम्युनिटीज में मैंने देखा है कि वो लोग एजुकेशन को सेकेंडरी रखते हैं, अर्निंग को प्राइमरी रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जन्म के साथ ही जैसे बच्चे ने होश संभाला, चलना फिरना शुरू करा था, किसी चीज की उसके अंदर स्किल्स आई तो उसे काम पे लगा देते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जैसे किसी उसे फैक्ट्री में लगा दिया या कोई ऐसा लेबर का काम उसको कराने लग गए, तो बच्चे का क्या होता है जब वो अर्निंग करने लग जाता है ना, तो उसके अंदर पढ़ने की इच्छा धीरे धीरे
1: खत्म
0: हो जाती है। वो सोचता है भी मेरा तो यही, उसको सिखाया यही जाता है कि यही लाइफ है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो जब उसका बचपन ही आपने मार दिया उसको, तो बेचारा वो क्या करेगा, वो बड़ा होकर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है, हम लोगों को पहले बच्चे को बचपन देना चाहिए, है ना।
1: करेक्ट, करेक्ट।
0: जब वो बचपन जिएगा सही से, उसकी शिक्षा अच्छी होगी, तो ऑब्वियस है वो आगे चल
1: आगे भी बढ़ेगा,
0: बिजनेसमैन भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, एडवोकेट भी बन सकता है, आईएएस पीसीएस भी बन सकता है।
1: सर, तो आगे मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि यही बच्चों के साथ अगर जबरदस्ती करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन, कोई कानूनी नियम कुछ?
0: बिल्कुल, हेल्पलाइन भी है और हमारे कुछ एक लॉज भी ऐसे गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, अगर बच्चों के साथ कोई भी जबरदस्ती काम करवाता है या कोई भी ऐसी बात होती है, तो आप सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो नजदीकी आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सूचना दे सकते हैं। कई एक एनजीओ से आप उनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एनजीओ भी आज की डेट में कई एनजीओ है जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है वो 1098 है। मैं अपने सभी कम्युनिटी रेडियो के श्रोताओं से बोलूंगा कि 1098 ये नंबर आपको इमरजेंसी में जरूर याद रखना है, अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी हैरेसमेंट होता है तो तुरंत इस नंबर पे आप कॉल मिलाए 1098।
1: 1098
0: जी,
1: तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1098। और चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
1: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
2: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
2: जी हाँ,
3: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: तो श्रोताओं, म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से कनेक्ट हो गए आप सभी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चों के साथ अगर कोई भी ऐसी धोखाधड़ी होती है या फिर छोटे बच्चे हैं जिनको आप काम करवाते हैं और जो बच्चे काम करे पढ़ना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, किसका हेल्प ले सकते हैं? तो सर, हम आगे बढ़ते हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा आखिरकार क्यों जरूरी है।
5: देखिए, बच्चे समाज का भविष्य, अगर उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे।
4: बिल्कुल सर।
5: क्योंकि जो, जैसे आपने देखा होगा, एक पौधा होता है, उसको अगर सही से आप खाद पानी दोगे तभी वो अच्छा बड़े होकर एक वृक्ष बनता है और फल देता है। तो सेम हमारे बच्चों के साथ भी, अगर हमें एक समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक चाहिए, तो निश्चित तौर पे हमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना पड़ेगा, उन्हें अच्छा माहौल देना पड़ेगा।
4: और सर, हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि ये कहा जाता है कि माता पिता ही बच्चे के लिए पहले गुरु होते हैं, तो सर माता पिता की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए बच्चों के प्रति?
5: देखिए, माता पिता का विशेष रोल होता है बच्चे के जो है भरण पोषण पे। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो गुरु, पहले गुरु वही होते हैं, और बच्चे को प्यार, शिक्षा, अच्छा माहौल, सुरक्षा दें, उसका सही से विकास हो, तो यही सारी जिम्मेदारियां होती है। और खास तौर पे छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि माता पिता को हमेशा वॉच करना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे जा रहा है, किसके घर जा रहा है। कई बार हमने ऐसे केसेस भी हमारे पास में आए हैं कि जो बहुत ही नोन होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उन्होंने भी सेल्फ हैरेसमेंट बच्चों का किया होता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: और बच्चों में मैं दोनों की बात करता हूँ, मेल और फीमेल दोनों की। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस नहीं आया, वो केसेस हमारे पास आते रहते हैं।
4: बिल्कुल सर।
5: तो बच्चों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, उनको खास तौर पे ट्रेनिंग देनी चाहिए, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है,
4: करेक्ट
5: पता होना चाहिए उनको। और बच्चों को ये शिक्षा घर के साथ साथ स्कूल्स में भी, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जहाँ बच्चे प्ले स्कूल्स में जाते हैं, क्रीच में जाता है, तो वहाँ पे भी ये शिक्षा उनको जरूर दिलवानी चाहिए बच्चों को, कि उनको पता होना चाहिए कि किसकी इंटेंशन गलत है, कौन हमें कोई लालच दे के बुला रहा है, या जो है इंटेंशन उसकी। बच्चे, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं
4: होती, बच्चे ये कहते हैं भगवान के रूप,
5: भगवान का रूप होते हैं, कोमल होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो हमें जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को स्कूल में दिलवानी चाहिए, एडमिशन
4: नहीं। बिल्कुल सर।
5: ग्रोथ के टाइम।
4: और सर, मुझे लगता है कि कई बार बच्चे जब अपनी बात रखते हैं ना, तो कभी कभी ना हम उनको दबा देते हैं, तो क्या बच्चों को अपनी राय रखने का अधिकार है?
5: बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर बच्चा कोई बात आपसे क्वेश्चन कर रहा है या किसी चीज को पूछ रहा है आपसे, या उसके मन में कोई जिज्ञासा है, अगर आप उसको डांट के डपट के उसे चुप करा दोगे, तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे पड़ेगा, है ना। और जब व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है, तो उसका बड़े होके बच्चे का जो एक समाज का जो हिस्सा बनता है बड़े होके, कहीं जॉब में जाता है, कहीं बिजनेस में जाता है, तो उसका व्यक्तित्व वो निखर नहीं पाता है।
4: बिल्कुल।
5: तो निश्चित तौर पे ये है कि अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है या जिज्ञासा है उसके अंदर, तो आपको पोलाइट वे में उसकी बात को समझना चाहिए। हो सकता है वो इतनी लॉजिकल बात पूछ रहा हो कि आप उसको समझ पाए।
4: करेक्ट।
5: कई बार हमें बच्चों की बातें, बचपन की बात, हम लोग उसे मजाक में उड़ा
4: मजाक में उड़ाते हैं,
5: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बात मजाक की नहीं, कुछ बात गंभीर भी हो सकती है। बच्चा अगर आपसे कोई बात कह रहा है, तो उसकी बात को सहजता से सुनते हुए उसको समझे और उसका निदान करें।
4: बिल्कुल जी, ये तो सर आपने बहुत सही बात कही कि बच्चों की बातें हर सिचुएशन में हमें सुननी चाहिए उनकी बातें, कि क्योंकि कुछ नहीं पता उसके साथ बाहर क्या हुआ है, और वो घर पर आके बता रहे, तो कभी कभी ना डिले कर देते हम कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। हाँ।
5: पता चला बच्चे के साथ कोई हैपनिंग हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत गलत हुआ है, और बच्चा घर पे डर के मारता नहीं पाता, क्योंकि पेरेंट्स डांट डपट देते हैं।
4: ये
5: तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत कुंठा का भाव बच्चे के अंदर भर जाता है, और जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और कई केसेस में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के भी सुसाइड के केसेस आए काफी।
4: करेक्ट करेक्ट।
5: तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, तो आप को उससे फ्रेंडली एटमोसफियर रखना है एकदम।
4: सर आपने डिप्रेशन की बात कही है तो मैं एक बात और रखना चाहूंगी आपके साथ कि आजकल देखते हैं आप फोन हर माता पिता के पास है, हर बच्चे के पास है, जिसके वजह से माता पिता बच्चों को टाइम कम दे पाते हैं।
5: बिल्कुल ठीक कहा आपने टीना।
4: तो सर मुझे लगता है कि इस पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे सभी पेरेंट्स को?
5: टाइम तो बिल्कुल जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए, मेरी राय यही है, लेकिन कोविड के बाद से जो चीजें अब चेंज हुई हैं तो लोग ज्यादातर स्क्रीन टाइम, मेरा भी हालांकि मेरा भी स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन हम लोग उसे प्रोफेशनल वे में यूज करते हैं। अगर हमें काम की चीज देखनी होती है तभी हम यूज करते हैं उसको, लेकिन टाइम जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मोबाइल का कम यूज करें, टीवी कम देखें, उनको आदत डलवाइए, वो बुक्स पढ़ें, नॉवल पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो पॉजिटिविटी थोड़ी सी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। अब आज की डेट में सोशल मीडिया आप देखेंगे मोबाइल पे इतने वल्गर कंटेंट आते हैं,
4: बिल्कुल बिल्कुल सर,
5: कंट्रोवर्शियल चीजें आती हैं, तो बच्चा उसको देखता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जहन में चीजें बैठती हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो मोबाइल का यूज कम से कम करें, है ना, टीवी कम से कम देखें,
4: और मुझे लगता है कि इसका ध्यान पेरेंट्स ही देंगे तो बहुत
5: पेरेंट्स
4: अच्छा
5: को
4: रहेगा।
5: बिल्कुल डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और
4: कि बच्चा
5: बच्चों को तो खास तौर पे मोबाइल नहीं दे। बड़े बच्चों का तो चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनके ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए गैजेट्स का यूज भी है, मिसयूज भी है, दोनों ही चीजें हैं।
4: बिल्कुल सर।
5: तो एक सर्टेन एज के बाद हमें जो है उन्हें एक यूज करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ऑनलाइन भी क्लासेस होती
4: है। अगर सर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरी भाभी क्या करती है, काम करती रहती है। वो छोटा है, अभी 2 साल का ही है, तो वो रोने लग जाता है तो घर पे कोई होता नहीं है संभालने के लिए, उनको फोन पकड़ा देती है। अब फोन पकड़ाने के चक्कर में उस बच्चे का आंख मतलब हमेशा रेड रहने लग गया।
5: हाँ, तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा है, इसी वजह से उसकी आईज पे इफेक्ट आया।
4: वही ना, बच्चों की लत लग गई, अब वो हटना,
5: फोन एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो एडिक्शन जो है वो बहुत बुरी चीज है, किसी भी चीज का हो जाए, तो उस चीजों को ध्यान रखना चाहिए।
4: बिल्कुल सर। सर तो हम आगे बढ़ेंगे कि स्कूल में बच्चों के साथ अगर गलत व्यवहार होता है तो उस टाइम क्या डिसीजन लेना चाहिए एकदम?
5: देखिए स्कूल में बच्चों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है या कोई भी ऐसा हैरेसमेंट होता है, तो सबसे पहले तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत देनी चाहिए, जो संबंधित जो भी ऑफिसर या अधिकारी है उसको देनी चाहिए, और पेरेंट्स को तुरंत उस पर एक्शन लेके कार्य करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के सेहत से या उसके मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पे बच्चा कोई भी सेटबैक का कोई ऐसा कदम भी उठा सकता है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए।
4: बिल्कुल सर। उनको जाति के ऊपर भी बोल देते हैं कि तुम्हारा जाति ये है।
5: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा रीना आपने। तो ये कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस खास तौर पे इसको मॉनिटर करना चाहिए, और ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेके उनको एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा वॉच भी करना चाहिए।
4: करेक्ट करेक्ट।
5: टीचर्स अपने ऐसे रखें जो माहौल अच्छा बना के रखें।
4: बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों में हमें ना ऐसी, क्योंकि जिस तरीके से आप बच्चों के साथ बातें करते हैं, बच्चे मुझे लगता है कि वही सीखते हैं उस टाइम, तो कहीं ना कहीं तो एक तो हम ही होते हैं कि बच्चों को भेदभाव सिखाते हैं कि ये जाति ये है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसी चीज को खत्म करना चाहिए।
5: बिल्कुल खत्म होना चाहिए,
4: तभी जाकर हम बच्चे भेदभाव जो हो रहा है उनके साथ स्कूल में वो नहीं कर पाएंगे।
5: बिल्कुल ठीक बात है। आप बचपन से ही बच्चों के बीच में जो आप माहौल क्रिएट करेंगे तो उसका ही प्रभाव आगे चल के आपको देखने को मिलता है।
4: सर तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि शो में समाज बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है?
5: देखिए समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, अगर कहीं भी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको लेके उसको शिकायत करनी चाहिए और बच्चे को सही मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि भाई मेरा बच्चा नहीं है तो मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। अगर कहीं भी आप किसी भी बच्चे के साथ अन्याय होता देखें तो आप तुरंत उसको हेल्प करें, लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, लोकल जो लेबर डिपार्टमेंट है वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज मैंने एक आपको अभी नंबर बताया था 1098 हेल्पलाइन नंबर, तुरंत आप मिलाएंगे तो वहां से आपको तो हेल्प मिलेगी और निश्चित तौर पे जो है आप किसी का भविष्य बचा सकते हैं।
4: करेक्ट करेक्ट। वो ये ना कि भेदभाव ना रखे, चाहे बच्चे कैसा भी हो, किसी का भी हो, बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं।
5: बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो आपको ये सोचना है कि भगवान का रूप है, हमें इसकी हेल्प करनी है।
4: करेक्ट करेक्ट। सो सर हम यहाँ पे एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। श्रोता अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, अगर डाउट है, तो आप हमारे साथ मैसेज कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841। जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
3: तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो?

0: तो सर हम आगे बढ़ते अपने शो में और मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज के टाइम अगर देखा जाए तो पेरेंट्स यानी कि बच्चों के पढ़ाई के ऊपर लेकर ना इतना हार्म हो कि उनको सुबह से लेकर शाम तक बुक पढ़ते रहो, मतलब खेलने की एक्टिविटी की बात आती है तो यही रहता है कि पहले अपना होमवर्क कम्प्लीट करो। तो लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है।
1: देखिए बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो लोड डाला जा रहा है आज की डेट में, जो ट्रेंड चल पड़ा है कि एक पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन लेवल, एक पैरामीटर उन्होंने बना लिया है कि वही पड़ोसी का बच्चा अगर टॉप कर रहा है तो हमारा बच्चा कम नहीं आना चाहिए, उसे ज्यादा मार्क्स लाना चाहिए।
0: हाँ हाँ।
1: तो ये ना कहीं बच्चों के बीच में कॉम्प्लेक्शन क्रिएट कर देगा और जो है ये जो कॉम्प्लेक्शन है ना ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है।
0: करेक्ट।
1: तो आप उसको हर समय अगर एक प्रेशर करो कि भाई बुक्स लेके पढ़ाई करो और तुम जो है मार्क्स कम है तुम्हारे, ये जो है उसका देखो कैसा आया तुम्हारे फ्रेंड का मार्क्स तुम्हारे कम क्यों है, तो इस तरीके से अगर आप उसको बोल रहे हो तो ये भी एक तरीके से एक जो है वो हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है ना। आप उसको
0: कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर हार्म ही हो रहा है,
1: हार्म हो रहा है उनका, उनका मेंटल पीस हार्म हो रहा है, उनकी हेल्थ हार्म हो रही है। आप बच्चे को फ्री छोड़ दिए, उसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो वहां जाएगा, उसको खेलने उतने का टाइम दीजिए, उसको एंजॉय करने दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे पढ़ाई जरूरी है उसी
0: हिसाब से खेल कूद भी
1: जरूरी है, फिटनेस भी जरूरी है।
0: करेक्ट।
1: और खेल कूद से फिटनेस से हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील आती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरी फील्ड में तो आप उस फील्ड में वर्क करिए, उसको जानने की कोशिश करिए कि हो सकता है भाई हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता।
0: करेक्ट सर, मैं यही पूछने वाली थी आपसे,
1: हर बच्चा एडवोकेट भी नहीं बन सकता।
0: करेक्ट।
1: तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है आप उसको उस फील्ड में डालिए।
0: बिल्कुल।
1: आप एक एक्सपेक्टेशन, एक पैरामीटर जो आपके माइंड सेट में है वो उसके ऊपर ना थोपिए, अपनी मर्जी ना थोपिए, तो उसको उसका डायरेक्शन खुद चूज करने दीजिए कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना है।
0: करेक्ट।
1: हाँ उसको एक डायरेक्शन दीजिए जरूर, लेकिन उसको बाउंड मत करिए कि नहीं यही तेरे लिए सही डायरेक्शन है, वो उसको चूज करने दीजिए।
0: करेक्ट। और सही गलत का देखिए पेरेंट्स तो समझाते
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हमें कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में भी उनकी राय भी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, पढ़ना ही है चाहे कैसे भी करो, और बाद में ये होता है कि बच्चे पूरी जिंदगी कोसते रह जाए कि मैं करना क्या चाह रहा था, कर क्या रहा हूँ, उसको वो अच्छे से नहीं कर पाते,
1: कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से बच्चों का हमने देखा है कि उनको जो है फील्ड उन्होंने करा बीटेक है और जॉब कर रहे हैं वो बैंक में मार्केटिंग की। बीटेक का आप रिलेशन आप सोचिए कि उसको मार्केटिंग की जॉब से आपने उसको कनेक्ट कर दिया, हो सकता है अगर आप उसे मार्केटिंग में एमबीए की होता तो हो सकता है।

0: वो उसको और अच्छा कैरियर में ग्रोथ मिलता।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आप बच्चे को उसका इंटरेस्ट समझिए। कई कई एग्जाम्पल्स हैं, सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि कम से कम बच्चे को फ्री छोड़ें, उसको सही डायरेक्शन खुद चूज करने दो, उसके ऊपर कम से कम बाउंडेशन ना लगाएं। हाँ, उसको ध्यान जरूर रखिए, उसको डायरेक्शन जरूर दिखाएं आप,
1: करेक्ट।
0: लेकिन डायरेक्शन दिखाने के बावजूद उसका अगर इंटरेस्ट आपको लगता है दूसरी फील्ड में, तो आपको उसी फील्ड में उसको थोड़ा सा पुशअप करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर। हम आगे बढ़ते सर, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे कई बार ना सर बाहर जाते हैं या फिर घर किसी के घर भी जाते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी देखते हैं और उनको वो उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और कभी कभी वो घर पर भी बताते हैं तो पेरेंट्स भी नहीं बताते कि नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम नहीं बताएंगे, उस चीज को दबा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस चीज आगे बढ़ा रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं कि तुम जब बच्चों को डांट नहीं रहे हो तो इसका मतलब बच्चे आगे ही जाएगा, उसको यही लत लग जाएगी, चाहिए तो अच्छी बात है, जब हमारे घर वाले ही कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ और ही होगा ये। तो सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, ये बहुत गलत हैबिट है। अगर आप बच्चे आपके बच्चे के अंदर ये आदत है कि वो किसी भी चीज को उठा लेता है, बिना पूछे आपसे ले लेता है ना, दुबका देता है कहीं, तो अभी तो देखिए बचपन में आपको लगेगा कि बच्चा है, बचपन की बातें हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के यही जो छोटी छोटी बातें होती हैं बड़ा रूप ले लेती हैं। हो सकता है कल को उसके अंदर ये जो हैबिट्स है इतनी ज्यादा पनप जाए कि कोई बड़ा क्राइम कर दे।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: और जब बड़ा क्राइम करेगा तो निश्चित तौर पे उसको कैरियर पे भी उसके टैग लगेगा और आपकी भी उसमें इंसल्ट होगी। तो मैं तो पेरेंट्स से यही कहूंगा कि अगर बच्चे के अंदर ऐसी कोई आदत है या कोई चीजों को छुपाने की आदत है, तो सबसे पहली चीज तो ये, उससे फ्रेंडली अप्रोच रखिए बच्चे से।
1: करेक्ट।
0: मैंने पहले भी अपने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि बच्चे से हमें फ्रेंडली अप्रोच रखनी है, उसको डांटे मारे नहीं, और काउंसलिंग सेशंस, एजुकेशन सेशंस उसके लिए अरेंज करें, उसको बताएं कि क्या सही है क्या
1: क्या
0: गलत
1: गलत
0: है।
1: है।
0: आप किसी दूसरे के घर पे अगर जा रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए।
1: करेक्ट।
0: तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों को आपको बचपन से ही उसको थोड़ा सा एक डिसिप्लिन, एक मैनर्स, उसको एटिकेट्स सिखाने पड़ेंगे। अगर उस चीज को आप बचपन में सोच के टाल देते हैं तो आगे चल के यही जो बचपन की बातें हैं बड़ी हो जाती हैं, और बड़ा जब कोई क्राइम होता है तो उसका कुछ आंसर नहीं होता,
1: उसका सॉल्यूशन फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है,
0: बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों को हमें अभी से ही ध्यान
1: रखना
0: चाहिए।
1: और सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, पहले के टाइम में क्या होता था ना कि बच्चे अगर टीचर उनको मार भी रहा है तो अच्छी चीज के लिए मारते थे, लेकिन उसके टाइम अगर मार देते हैं बच्चों के ऊपर तो पेरेंट्स सर पर चढ़ जाते हैं कि मेरे बच्चों को हाथ कैसे लगा दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ, बच्चों के ही मतलब साथ दे रहे हैं कि गलत चीजों को साथ दे रहे हैं, तो क्या सर ये सही है?
0: देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: मैं इसमें ये नहीं कहता कि टीचर जो मारते तो वो ठीक करते थे, और ये भी नहीं बोलूंगा कि टीचर नहीं मारते तो ठीक करते।
1: हाँ, हाँ।
0: जब हम अपने टाइम की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन, अपनी प्राइमरी एजुकेशन ले रहे थे, हम स्कूलिंग करते, तो हमें टीचर्स डांटते भी थे, डपटते भी थे, पनिशमेंट भी देते थे, लेकिन उस पनिशमेंट का लेवल इतना नहीं होना चाहिए कि आपको कोई हर्ट हो।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: आपके मन पे, आपके दिमाग में वो चीज इतनी बुरी तरह छप जाए कि आप उसको भूल ना पाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो पनिशमेंट भी थोड़ा जरूरी है, लेकिन उस लेवल तक कि बच्चे को एटलीस्ट लगना चाहिए हाँ भी ये गलत काम है, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिला है, मैं अच्छा करूंगा, तो उसका आपको एप्रिसिएशन भी दीजिए बच्चे को।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा करे तो एप्रिसिएशन भी दीजिए उसको, तो उसको कम से कम बच्चे को फील नहीं होगा नहीं हर बार मुझे डांटा जाता है। और देखिए, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कुछ केसेस ऐसे भी आए कि टीचर ने अगर किसी बच्चे को पनिशमेंट दिया या हर्ट किया तो उसमें बच्चे की जान तक पे बनाई है।
1: करेक्ट। ये सर,
0: तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज हमारी बना रखी हैं कि आप बच्चे को हर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो देखिए अपने बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है कि हमें बच्चे को कैसे समझाना चाहिए, कैसे टेक ओवर करना चाहिए उसको। और जो है, हर चीज का सॉल्यूशन पनिशमेंट भी नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बेटर तो यही रहेगा कि उसको समझाएं, उसकी काउंसलिंग करें, एजुकेशन से समझाएं। और थोड़ी बहुत डांट डपट भी बच्चों के लिए मैं मानता हूँ कि ठीक भी होती है, लेकिन बस इतनी बाउंड्रीज में होनी चाहिए कि उसके मन, उसके मस्तिष्क पे उसका ज्यादा
1: कोई भी हार्म ना हो चीजें, ताकि उस चीज को, उस चीज से वो निकल ही ना सके, आगे बढ़ ही ना सके,
0: उसको सोच के बैठ जाए
1: कि हाँ उसको आगे कहीं आगे भी बढ़ रहा है तो सोचेगा नहीं मेरे साथ तो ये हो चुका है तो मैं शायद ये चीज को, इस कदम को नहीं उठाऊंगा, क्या पता वो सर सही भी हो।
0: डेफिनेटली, वो मैंने बताया ना आपको कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही एक इस चीज को हम कह सकते हैं, हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, मिलते हैं आप सभी से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।

0: कोमल है तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हेलो हाय, मेरा नाम आनंद है, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। और आज की जो स्टूडियो की वाइब है ना, बहुत अलग है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टेशन में एक ऐसी महिला मौजूद है, एक ऐसी नारी शक्ति मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में है, जिनके बारे में मैं जितनी बातें बोलूंगा ना, शायद मेरा समय कम पड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहीं रहा है। जब एक महिला कुछ करने की ठान ले तो वो सब कुछ कर लेती है। और वैसे ही आज सेशन में, इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस इंटरव्यू में हमारे रेडियो का हिस्सा बनी है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी, जो हमारे शहर के अंदर ऑटो चलाती हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने बहुत बड़ी पुरुषों को ऑटो चलाते हुए देखा है ना। जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हमें कहीं जाना होता है, तो हम ऑटो में अक्सर मेल्स को देखते हैं, लेकिन मैंने पहली फीमेल मुरादाबाद के अंदर देखी है। और आज वही फीमेल को हम स्टूडियो लेकर आए, उसी नारी शक्ति को। हेलो मैम, कैसे हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मैडम रामवती शर्मा।
0: रामवती शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जोरदार तालियां। रामवती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसी है पहले ये बताइए मैम?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा, आपने सोचा था कभी अच्छा कि आप ऐसी जगह आएंगी?
1: नहीं नहीं, वैसे आपसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
0: अरे थैंक यू सो मच आंटी। तो आंटी बोलूँ या मैम बोलता हूँ मैं?
1: आप
0: तो आपको
1: जो चाहो वो बोल सकते।
0: अच्छा, क्या नाम बताया आपने?
1: रामवती
0: शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। रामवती जी, थोड़ा अपने हमारे जो सुनने वाले हैं, आप उनको थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए।
1: अरे मैं बहुत परेशान थी पहले, बहुत अपने मतलब शादी जब हुई थी तो मैं बहुत दुखी थी। मेरे बच्चे मतलब ये था भूखे मरने लगे थे।
0: ओहो, अच्छा, तो मतलब आपकी शादी यही हुई है मुरादाबाद?
1: नहीं नहीं, मेरी शादी बिलारी में हुई थी।
0: अच्छा, बिलारी। तो मुरादाबाद कैसे आना हुआ?
1: मुरादाबाद जब मेरे बच्चे मतलब हमारे मेरे हस्बैंड का काम नहीं चला। अच्छा। वो है साइकिल टेरपिंचर थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो उनका काम नहीं चला तो देखो बच्चे हम बहुत परेशान रहने लगे थे। हाँ। तो मैं अपने एक जनी मुझे लेके आई थी यहाँ पर। हाँ। काम पे लगवाने के लिए। हाँ। तो मैंने उनके साथ मतलब पहले फैक्ट्री में जॉब करी।
0: अच्छा।
1: पैकिंग हॉल में।
0: अच्छा।
1: उसके बाद करते करते मैं चेकर बनी।
0: अच्छा, अरे वाह। फिर
1: चेकर बनने के बाद फिर मैंने लड़के की शादी करी तो मेरी बहू खत्म हो गई किसी मतलब दिक्कत में आके।
0: ओके ओके।
1: उसके बाद मेरा एक छोटा सा पोता, आपने देखा भी होगा सर।
0: हाँ हाँ, मैंने देखा है आपके साथ।
1: तो मैंने उसकी वजह से ये रिक्शा लिया है।
0: अच्छा, तो उसकी वजह से रिक्शा चला रहे हैं?
1: उसे पाल रही हूँ। हाँ। और अपना पेट भी पाल रही हूँ।
0: अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आंटी आपके?
1: मेरे एक लड़की एक लड़का है।
0: एक लड़की और लड़की। हाँ। की शादी हो गई?
1: शादी दोनों बच्चों की हो गई।
0: अच्छा, दोनों बच्चों की हो गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ऑटो चलाने का ख्याल कैसे आपके आया दिमाग में?
1: ऐसे आया जब फैक्ट्री में काम करने लगी तो मैंने सोचा फिर कहीं ऐसा ना हो कि पहले इतना मैं फिर मुसीबत उठाने लगूं। तो मैं मेरे दिमाग में आया कि मैं ऑटो चला के देखती हूँ। तो मैंने एक पहले पुराना ऑटो लिया था।
0: अच्छा,
1: उससे मैं सीखी।
0: अरे वाह,
1: उससे सीखने के बाद
0: पहले ट्रेनिंग ली आपने? अच्छा,
1: सीखी अपना भी थी।
0: अच्छा, अच्छा,
1: किसी ने सिखाया नहीं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: उसके बाद मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा, मैंने मेरे मन है ऑटो चलाने के लिए।
0: हाँ, तो क्या कहा सर ने? तो, मतलब परमिशन दी? हाँ, पति देव ने।
1: तो उन्होंने क्या बोले, ठीक है ले लो।
0: अच्छा।
1: फिर मैंने ऑटो ले लिया।
0: तो मतलब पति की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी?
1: नहीं।
0: परिवार की तरफ से कोई
1: रोक टोक?
0: अच्छा अच्छा। तो मतलब पहले ट्रायल लिया, पहले ट्रेनिंग ली, उसके बाद जब आपको लगा मैं मजबूती के साथ चल सकती हूँ, चला सकती हूँ, तब आप सड़क पे उतरे। तो कितने समय से आप ऑटो चला रही
1: हैं? मुझे अब एक साल लगातार हो गया।
0: एक साल हो गया?
1: मार्च में हो गया।
0: अच्छा अच्छा, एक साल से आप ऑटो चला रही हैं मार्च में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइएगा मैम, जब आप ऑटो पहली बार सड़क पे लेके निकली थी तो आपको कैसा लगा? मतलब थोड़ा अजीब लगा।
1: अजीब सा लगा। हाँ, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि मैं चलाती रहूं।
0: अच्छा अच्छा, अभी ये लगता है कि चलाती रहूं।
1: हाँ।
0: ओके, तो मतलब जब आपके ऑटो में लोग बैठते हैं, लेडीज बैठती हैं, जेंट्स बैठते हैं, तो कुछ कभी कोई सवाल जवाब करते हैं कि आप कैसे क्यों चलाती हैं?
1: पूछते हैं।
0: हाँ।
1: पूछने वाले तो क्या बताया, किसी को क्या बताया,
0: क्या बताया जाए,
1: तो नहीं बताई जाती है, कहते हैं हमारी मर्जी, हम चला रहे हैं।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्हें आप सुन रहे हैं, ये मुरादाबाद की नहीं है रहने वाली, लेकिन अभी हम कह सकते हैं मुरादाबाद ही है ये। कितने समय से मुरादाबाद में आप रह रही
1: हैं? हमें 20 साल, 25 साल हो गए।
0: 25 साल से जो रह रही है तो वो मुरादाबाद ही होगी गाइस। तो मतलब आपका जो मतलब घर था वो चंदौसी, आपने बताया?
1: नहीं, बिलारी,
0: बिलारी, बिलारी, बिलारी से आप थी। तो मुरादाबाद आके फिर आपने शुरू किया अपना कारोबार और ये काम का सिलसिला?
1: पहले हम किराए पे रहे, फिर हमारा अपना हो गया।
0: अरे वाह, क्या बात है,
1: अभी हमारा अपना ही है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आंटी मुझे ये बताइएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई?
1: हाई स्कूल पास।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, हाई स्कूल पास है। हाई स्कूल पास थी आप, उसके बाद आपने कंपनियों में काम किया नॉर्मली, जो आप बता रही पैकिंग वगैरह में, फिर आपने क्यों सोचा कि मुझे ऑटो ही चलाना चाहिए?
1: ये मैंने सोचा, फैक्ट्री लेके बच्चे उजा नहीं सकते।
0: हाँ।
1: बच्चा बिना माँ के रह नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अब मैं उसे पालने वाली हूँ, मैं उसे रखने वाली हूँ, तो मैंने सोची फिर मैंने काम छोड़ दिया बच्चे के खातिर, उसके वजह अगर फिर मैंने सोचा मैंने फिर मुसीबत ना आ जाए मेरे बच्चों पे।
0: जी,
1: इसीलिए मैंने सोचा ऑटो भी चलता रहेगा और मेरा बच्चा भी पलता रहेगा,
0: और साथ ही साथ अपने मन की मालिक हो, जब मर्जी ऑटो चलाओ, जब मर्जी अपना नहीं जाओ, ऐसा कोई प्रेशर नहीं, नहीं है कि आपको जाना ही जाना है,
1: कोई जबरदस्ती नहीं
0: है ना, जबरदस्ती नहीं है। तो कौन कौन सी रोड से आप ऑटो लेके निकलती हैं?
1: वैसे मैं सब रोड चला लेती हूँ,
0: सब रोड पे चलाती
1: हूँ। गुलाब बाड़ी, अभी तो मैं गुलाब बाड़ी से आई।
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइएगा मैम, मतलब आपने जब ये ऑटो का सिलसिला शुरू किया, जब आपका पहला दिन था, तो घर पर जब आप पहली कमाई लेकर गई तो कैसा लगा? घर वालों को दिखाया आपने
1: सब? और क्या, अभी मैं अपने घर वालों के हाथ में देती हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब पति देव क्या करते हैं वैसे?
1: वो टायर पंचर का काम करते हैं।
0: टायर पंचर का काम करते हैं, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक अलग ही खुशी होती है जब आप ये मेहनत से पैसे लेकर जाती हैं।
1: ये लगता है कि हाँ, देख पैसे, पहली बात तो पैसा देते हो आप लोग,
0: हाँ।
1: दूसरी बात मैं आपकी सेवा भी करती हूँ।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बहुत सही कहा। सो दोस्तों, वो कहते हैं ना, जहाँ पर इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा होती है, जब आपके हौसले बुलंद होते हैं, तो आप वो सब कुछ कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। और कहते हैं ना, एक नारी जिसे हम शक्ति नारी बोलते हैं, वो सब कुछ कर सकती है। तभी तो कहा जाता है, कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और ऐसे ही आज नारी शक्ति, एक सशक्त नारी, आज के जमाने की नारी मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में इस वक्त, जिनको आप सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आंटी, आप वैसे कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में?
1: खदाना गांव में।
0: खदाना गांव में, तो ये मुरादाबाद में पड़ता है? अच्छा, अरे वाह। तो वहाँ से डेली आप सफर करते हैं, कितने बजे सुबह आपकी शुरुआत हो जाती है?
1: सुबह तो देखो, दो बच्चे हैं, दो लेडीज हैं मेरे पास, लगी बनी है वो तो।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैं 7 बजे अपने घर से निकल कर आ जाती हूँ, खाना वाना बना के सारे काम करके,
0: मतलब खुद करती है सारा काम।
1: हाँ जी। और
0: तो सुबह कितने बजे निकलती हैं?
1: सुबह मैं 7 बजे निकल,
0: 7 बजे निकल जाती हूँ। और शाम को कितने बजे घर लौटती हैं?
1: शाम को 6 बजे घर पहुँच जाती हूँ।
0: 6 बजे आप घर लौटती हैं, ओके। रामपति शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मुरादाबाद की सड़कों पर ऑटो चलाती है, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। और ये काम बहुत आसान नहीं होता, स्पेशली एक महिला के लिए जब वो घर से बाहर निकलती है। लाइफ में बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। लाइफ इतनी आसान जितनी मुझे और आपको लगती है ना सामने वाले की, उतनी एक्चुअली होती नहीं है। परेशानियां सबकी जिंदगी में आती है। रामपति जी, आपकी जिंदगी में थोड़ी मोड़ी परेशानियां आती होंगी, कैसे डील कर लेती है आप?
1: ये तो होता
0: है, मतलब एक तो आप इतनी प्यारी है, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी सुंदर मुस्कान के साथ मैम बात

0: इतनी इतनी पोलाइटनेस के साथ, मतलब कैसे आप इतना कर लेती है? मतलब
1: गृहस्थी में सब हो जाता है,
0: सब हो जाता है, मतलब आप हमेशा ऐसी रहते हैं, ऐसी मुस्कुराते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको हमारे ऑफिस में आके अभी कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा।
0: बातचीत करके कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: अच्छा, मतलब कुछ डर तो नहीं लगा?
1: नहीं, ऐसा लगा मैं अपने घर में बैठी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बस हमें यही चाहिए। थैंक यू सो मच। ये रामवती शर्मा जी है जिनके बारे में हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं जो आपकी तरह काम करना चाहती हैं, पेट पालना चाहती हैं, अपने बच्चों को पालना चाहती हैं, क्योंकि एक सही काम करके अगर आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है मैम। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो आपकी आवाज सुन रही हैं, जो करना चाहती हैं लेकिन घर की तरफ से रोक दिया जाता है?
1: वो भी हिम्मत रखें, हिम्मत नहीं हारना चाहिए किसी को भी। मैं हूँ चाहे कोई भी लेडीज हो, उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत हार जाता है तो इंसान समझ लो गया
0: गया। बिल्कुल, अगर आपकी बिल्कुल
1: दिल बुलंद होना चाहिए, अपनी हिम्मत बुलंद होनी चाहिए।
0: क्या बात है, और आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर आप सही हैं तो सब सही है, है ना। देखिए बहुत अच्छी बात बोली है रामवती शर्मा जी ने, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जज्बा है कुछ करने की, आप ताकत रखती हैं, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। बहुत अच्छी और मजबूती तरीके से जो है जवाब दे रही है। और मुझे बड़ी मजे की बात यह है कि देखिए हम बहुत लोगों से मिलते हैं लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से बातचीत पा रही है, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, और मैम बिल्कुल मतलब जो है ना एक होता है कि थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा अनकॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर रही है रामवती जी, मतलब बहुत ही बढ़िया। पहले कभी बोला है आपने ऐसे? तो इतनी मतलब ऐसे कैसे आप बोल पा रही है?
1: जैसे जैसा इंसान मिल जाता है ना, मुझे उसी में रमना पड़ जाता है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। तो दोस्तों ये होता है एक असली कॉन्फिडेंस, एक असली जज्बा, और ऐसे जज्बों की कहानियां और ऐसे ही बुलंद कहानियां हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां आप सुनते हैं तमाम वो बातें जो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलती है। रामवती शर्मा जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम आपसे जानना चाहूंगा मैं थोड़ा सा आपके संघर्ष के बारे में, थोड़ा सा जैसे बहुत सारी महिलाएं जैसे मैंने कहा करना चाहती हैं पर वो नहीं कर पाती, उन्हें लगता है परिवार रोक रहा है, बच्चे रोक रहे हैं, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। तो आपके साथ आपके बच्चे सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ की मम्मी आप क्यों चला रहे हो जब हम हैं? तो
1: किसी ने नहीं कहा, मैंने सबकी मर्जी से काम किया।
0: अच्छा, सबने आपको परमिशन दे दी। तो अभी मुरादाबाद सड़कों पे आप इकलौती महिला ऑटो चलाती हैं या और भी हैं?
1: मैंने तब तक कोई देखा नहीं है।
0: आप ही चलाती हैं ना? तो गाइस अगर आपको अगली बार कोई महिला दिखती है पीली कोठी की तरफ, कहाँ कहाँ से आप गुजरती हैं?
1: मैं सब तरफ दिख जाती हूँ।
0: सब तरफ जाती हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो एक बार नाम पूछ लीजिएगा, कहीं आप वही रामवती तो नहीं जो रेडियो पे बात कर रही थी? तो आपको लोग पहचानेंगे तो आप भी पहचान जाइएगा, ठीक है मैम? चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहती है? बहुत लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं रेडियो पे, कोई मैसेज देना चाहे, कोई संदेश महिलाएं जो लेडीज?
1: मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, जैसे मैं हिम्मत रखती हूँ वैसे सारी महिलाएं हिम्मत रखें। देखो घर परिवार चलाना है तो हिम्मत अपने अंदर रखनी चाहिए।
0: अब मैम आपकी कितनी उम्र होगी अभी?
1: मेरी 45।
0: देखिए 45 की उम्र में भी सड़कों पर ऑटो चलाती हैं, और जिसे कह सकते हैं कि अपना भरण पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो एक सही डायरेक्शन में काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है मैम, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमारी तमाम महिलाओं को एक इंस्पिरेशन दी है, जो यहाँ पर आपने बातें रखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। आपको यहाँ आके अच्छा लगा?
1: बहुत अच्छा।
0: आगे भी आना चाहोगे?
1: बिल्कुल, जब आप बुलाओगे मैं पक्का हाजिर हो जाऊंगी।
0: चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइज आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानी के साथ, किसी और नई लेडीज के साथ, कुछ और नई संघर्ष की कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, हमारी जो सोच है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जिंदगी को, लाइफ को मस्त और झकास बनाने के लिए, है ना रीना? अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो सब कुछ हम अच्छे से कर पाएंगे, अच्छा ही होगा और अच्छा भी कर पाएंगे, है ना?
6: बिल्कुल।
5: तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है ना ये सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है, और चाहे आप विमेन्स हैं या फिर आप मेन्स हैं या आप बच्चे हैं या आप युवा हैं, ये जो कार्यक्रम है वो आप सभी के लिए है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी राय, अपने विचार रख सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। बिल्कुल, हम आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो रीना तुम कैसी हो पहले ये बताओ।
6: आनंद मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ। आई होप कि तुम बहुत अच्छे हो।
5: अच्छा हूँ यार मैं। और देखो दोस्तों, मैं और रीना आए हैं चटपटी बातें लेकर। तो रीना, हमारे शो का नाम है सोच बदलो, ये डेली हम प्रसारित करते हैं।
6: बिल्कुल,
5: क्या मानना है, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा या नहीं?
6: अरे बिल्कुल, अगर हम सोच

0: बदलेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा और हमें जो आसपास सुन रहे हैं उनकी भी सोच बदलेगी, फिर वो एक दूसरे तक बताएंगे कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो आज सोच बदलू का जो टॉपिक है वो है भैया ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बचें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक पे बात करना। तो जितने भी हमारे इस वक्त दोस्त हमारे प्रिय मित्र रेडियो से जुड़े हैं बिल्कुल जुड़े रहिएगा। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद में रीना वापस आएंगे। उसके बाद हम इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं। तमाम जानकारियां हैं आज आपके लिए इस प्रोग्राम में, तो आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। श्रोताओं, आई लव यू।

0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो श्रोताओं, आज हम मुद्दा लेकर आए हैं आपके लिए कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। रीना, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया है, हर इंसान जो है डिजिटली आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को जो है अब डिजिटली ग्रो करना है, मतलब सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल तो लेने देने का सीन भी ऑनलाइन हो गया, और इसी बीच तमाम सारे जो हैकर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनकी भी कतार मार्केट में बढ़ती जा रही है, मतलब
1: बहुत ज्यादा बढ़ रही है
0: जी। जो फ्रॉड के मामले रही ना, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई सीन या कोई कहानी या किस्सा है तुम्हारे साथ या कभी हुआ हो? हाँ तो रीना, वही मैं आपसे पूछ रहा था, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो?
1: देखो, मैं किसी और की कहानी बताने से पहले मैं अपनी बता देती हूँ।
0: बता, बिल्कुल बताया।
1: एक्चुअली ये हुआ ना कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, कपड़े बहुत खरीदती
0: हूँ, सभी करते हैं।
1: हाँ, तो मेरे को ना, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, बहुत अच्छे से सूट के जो उन्होंने अपना खुद का पेजेस बना रखा था कि यहाँ से सूट ऑर्डर करो और कम दाम में आपको अच्छे सूट मिलेंगे, तो उन्होंने ऑफर डाला था कि 500 में आपको 2 सूट मिलेंगे, अगर आप 1000 डालते हो तो आपको 5 सूट मिलेंगे। तो मैंने सोचा वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने उन्हें मैसेज वगैरह किया, तो मैंने जो भी सूट लेने थे मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको इतने इतने पेमेंट करने पड़ेंगे। मैंने पेमेंट कर दिया 1000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरा ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम चेक करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपने जो ये 1000 रुपए पेमेंट कराया ना, तो ये हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा, आपको 8000 और करने हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं वही समझ गई, मैं कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पर,
0: तो मतलब तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो गया ना।
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: दोस्तों, अब देखिए, रीना के साथ तो जो है धोखाधड़ी वाला सीन हो गया, आपके साथ ना हो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आप इस चीज का शिकार होते हैं तो आप कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कहाँ पर जाकर आप जो है इसकी सुनवाई करा सकते हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। श्रोताओं, सबसे मजे की बात पता है क्या है, कि आजकल ना जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड करते हैं लोग, जो स्कैम करते हैं मार्केट में, इतने इनके जो तरीके हैं ना, बहुत सारे बदल गए, एकदम आपको जेन्युइन लगता है। रीना, जैसे केवाईसी अपडेट के नाम पर आपको कॉल आ जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: कभी
1: बिल्कुल।
0: आपको व्हाट्सएप पे कोई अचानक से लिंक आ जाएगा,
1: कभी बोलेंगे बैंक वाले, हाँ, बोल रहे हैं,
0: कॉल्स आ जाती हैं, और आजकल तो शादी के कार्ड भी आ रहे हैं, ऐसा लगेगा किसी ने भेजा है, क्लिक करोगी तो पैसा
1: पैसे कट जाते हैं,
0: ऐसा वाला सीन भी चल रहा है। तो दोस्तों, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और इसी बात को जो है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक अंतराल का समय है, म्यूजिकल ब्रेक भी लेंगे, अंतराल का समय है, और उसके बाद आपको सुनवाएंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, और बचने के लिए आपको कहां कैसे शिकायत दर्ज करानी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे,
0: यह आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलिए एक छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: श्रोताओं, एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रीना और मैं प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं सोच बदलो, और इस प्रोग्राम का नाम ही इतना प्यारा है, तो ये सोचिए प्रोग्राम कितना प्यारा होगा। वेल, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मैं और रीना, आपसे ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक खास जानकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ एक छोटा सा आपके साथ एक प्रोग्राम साझा कर रहे हैं। आप इसको भी सुनिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम थोड़ी देर में मिलेंगे, मैं और रीना। क्यों रीना, दोस्तों बहुत जरूरी है, देखिए सही सोच के साथ साथ सही जानकारी का होना भी जरूरी,
1: बहुत जरूरी है।
0: तो आइए सोच बदले प्रोग्राम के अंतर्गत सुनते हैं ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी।
5: आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है, उससे पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है, लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रुपए में दे रही है,
6: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रुपए का है।
5: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं? फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, ना तो डिलीवरी आई है, ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है, या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले, छात्र और गृहिणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है, लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहां चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहां पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियां ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना, वो जितने शातिर है ना, आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
0: तो श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये जानकारियां कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगी। और इसी तरह के प्रोग्राम हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं ताकि भैया हमारा जो ये समुदाय है, हमारा जो ये कम्युनिटी है, हमारी जो मुरादाबाद की जनता है, उसको अवेयरनेस मिले और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी सोच भी बदले। जब हम सोच बदलेंगे तो हमारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी, क्यों रीना?
1: बिल्कुल, और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो भी आज से बंद कर देंगे।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग तो बंद मत करो यार रीना, लेकिन बस ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है ना। शॉपिंग तो मतलब आप कर सकते हो, लेकिन हाँ कोशिश करो लोकल फॉर वोकल को ज्यादा बढ़ावा मिले तो बेहतर है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ऑनलाइन तो आप करिए खरीदारी, लेकिन ऑफलाइन भी करिए, क्योंकि लोकल फॉर वोकल बहुत जरूरी है। अपने आसपास के प्रोडक्ट को अगर हम ही नहीं खरीदेंगे तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे बढ़ेगी।
1: लेकिन ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम से शॉपिंग करते हैं उसको कम करें,
0: कम करें आप ऑनलाइन पे। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अगर आपको कोई लिंक आ रही है, आपको ऑफर दिख रहा है, तो इन चीजों पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए श्रोताओं, अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी अपनी बातों को विराम देते हैं और उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो आपसे जाने की अनुमति देंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं और रीना आपके साथ छोड़ के जाएंगे। प्रोग्राम चल रहा है सोच बदलो, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: अरे उठ ले उठ ले ओ अरे इतने इतने ओ
1: दोस्तों जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत ही अच्छा ये गीत, और आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम, जिसे लेकर आज हाजिर हूँ मैं आनंद, और साथ में आरजे रीना। तो रीना, फाइनली दोस्तों के साथ बातचीत करते करते कैसे हमारा समय बीत गया हमें पता ही नहीं चला है ना।
2: बिल्कुल भी नहीं पता चलता
1: जी
2: है।
1: हाँ, तो अब बस जाने का समय है, लेकिन बस छोड़ के जाएंगे कुछ खास बातें आपके लिए। देखिए दोस्तों, याद रखिए सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो कोई भी फ्रॉड आपका नुकसान नहीं कर सकता है ना, और ना ही कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। तो बस आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक मत कीजिए। कोई भी दोस्त अगर आपको फेक आईडी या फ्रॉड आईडी बनाकर आपसे पैसे मांगता है, कोई लिंक आपको भेजता है, तो आप उन चीजों से जरा बचकर रहिए। कुछ भी इस तरह की आपके साथ बातचीत होती है या कोई भी ऐसी हरकत होती है, तो आप जो है पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके जरूर शिकायत दर्ज कराएं। क्यों रीना?
2: और जिसके नाम से आईडी बनाकर आपको मैसेज किया जा रहा है, उस आदमी को भी जरूर सूचित करें इसके बारे में कि आपके नाम से आईडी बनाकर पैसे मांगा जा रहा है,
1: पता चल सके ना बिल्कुल, कि उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ। तो दोस्तों आज के सोच बदलो में बस इतना ही। अपनी सोच बदलिए, सतर्क रहिए और सेफ रहिए, और ऐसे ही सुनते रहिए
2: एफएम मुरादाबाद 89.6
1: रेडियो,
2: बजाते रहे गुनगुनाते रहे।
1: चलिए जी, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय
2: बाय गाइस।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
7: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
6: अरे वाह।
7: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
6: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
8: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
9: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
2: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
8: बिजनेस लोन अप्रूव।

0: कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा केंद्र और अन्य स्तरों पर उठाया जा रहा है। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज सम्पन्न। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ने दरियागंज में नशा मुक्ति संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जागरूकता अभियान चलाया। और फिट इंडिया कार्यक्रम में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने प्रकाश विहार क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड की नई पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्रवासियों को बेहतर, स्वच्छ और सुचारू जलापूर्ति उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। श्री सिंह ने कहा कि नई पाइपलाइन परियोजनाओं से पानी की आपूर्ति में सुधार होगा और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है ताकि हर बस्ती तक विकास का लाभ पहुंच सके। स्थानीय निवासियों ने परियोजनाओं के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दक्षिणी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि राजधानी की 69 समृद्ध कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा केंद्र और अन्य स्तरों पर लगातार उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें सैनिक फार्म, वसंत कुंज एनक्लेव और छतरपुर एनक्लेव जैसी प्रमुख कॉलोनियां शामिल हैं। वसंत कुंज एनक्लेव में RWA द्वारा आयोजित एक जनसभा में श्री बिधूड़ी ने कहा कि इन कॉलोनियों में सभी मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियमितीकरण आवश्यक है और इस दिशा में जल्द ही सकारात्मक निर्णय आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी सांसदों ने हाल ही में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हो गया। 9 और 10 मई को नवीन शहादरा, उत्तर पूर्व नई दिल्ली और करोल बाग जिलों में आयोजित इन शिविरों में संगठनात्मक विषयों, कार्यकर्ता विकास और जनसंपर्क कौशल पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें विकास के अवसर प्रदान करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किसी भी संगठन को मजबूत बनाने के लिए संकल्प और प्रशिक्षण दोनों समान रूप से आवश्यक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि सेवा, सुशासन और जन कल्याण की नीतियों के कारण आज देश भर में भाजपा की विचारधारा का विस्तार हुआ है और जनता का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि सभी दिल्लीवासी और यहां आने वाले लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें जिससे राजधानी को बेहतर यातायात वाला शहर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन न केवल सड़क पर जाम और दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक है बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इसे प्रत्येक नागरिक की मौलिक जिम्मेदारी बताया। उपराज्यपाल ने वाहनों की सुनियोजित पार्किंग तथा हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग पर भी जोर दिया ताकि यातायात सुचारू रहे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राजधानी में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रेलवे ने उत्तर पश्चिम दिल्ली की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि मुखरबा चौक पर जाम की समस्या कम करने के लिए हैदरपुर बादली स्थित आउटर रिंग रोड पर मौजूदा रेलवे ओवर ब्रिज यानी ROB के चौड़ीकरण को रेलवे की स्वीकृति मिल गई है। साथ ही शालीमार बाग से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तक प्रस्तावित एलिवेटेड लूप परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तर पश्चिम दिल्ली में यातायात दबाव कम होगा और लोगों को तेज, सुरक्षित तथा निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ANTF ने पुरानी दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र में राजधानी को
3: अरे सुनो वो पड़ोस का
0: संकल्प को आगे बढ़ाते हुए एक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम का आयोजन उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देश और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हुए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा पैम्फलेट तथा ग्राफिक्स के माध्यम से नशे की गंभीरता को सरल तरीके से समझाया गया और प्रतिभागियों को 24 घंटे उपलब्ध 1933 मानस हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। दिल्ली सरकार ने संस्थागत देखभाल छोड़ने वाले युवाओं के लिए आफ्टर केयर स्कीम फॉर यंग पर्संस को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मातृ दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बच्चों को संरक्षण देना नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित सम्मानजनक और आत्मनिर्भर भविष्य उपलब्ध कराना है। राजधानी में लाजपत नगर स्थित विलेज कॉटेज होम में बच्चों से मुलाकात के दौरान श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कोई भी बच्चा या युवा खुद को अकेला असहाय या उपेक्षित महसूस ना करे इसके लिए सरकार 18 वर्ष की आयु के बाद भी उनका साथ देगी। उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 3.5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मातृ दिवस के अवसर पर देशवासियों विशेषकर समस्त माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आज देश भर में मातृ दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से माताओं के त्याग स्नेह और समर्पण को याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां केवल एक संबंध नहीं बल्कि वात्सल्य त्याग संस्कार और अटूट स्नेह की वह शक्ति है जो जीवन को दिशा और संवेदना प्रदान करती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज मदर्स डे के अवसर पर राजनिवास में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान श्री संधू ने कहा कि थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बच्चों के साहस और संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि ये बच्चे दृढ़ इच्छा शक्ति और हिम्मत का प्रतीक हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने मदर्स डे के अवसर पर कालीबाड़ी मार्ग स्थित आशीर्वाद वृद्धाश्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भागीदारी की। इस बार संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना के सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। भारतीय सेना ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक अधिकृत कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी प्रिया मलिक और दीक्षा मलिक ने युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। पहलवान दीक्षा मलिक ने कहा कि संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और हर व्यक्ति को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए।
4: मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब लोगों को इतना एनर्जी में देख के, और बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतना एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ रह के इतना अच्छे से खेलते हैं साइकिलिंग करते हुए।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्ष 1857 में आज ही के दिन हुए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण था जब देशवासियों ने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद किया और राष्ट्रभक्ति की अमर ज्योति प्रज्वलित की। राजधानी में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने घोषणा की है कि राजधानी के सभी 13 जिलों में कल से एक विशेष सेवा अभियान चलाया जाएगा। राजधानी के पूट खुर्द स्थित अपना घर आश्रम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को आश्रम लाया जाएगा, जहां उनके चिकित्सा उपचार, देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग, अपना घर आश्रम और सेवा भारती दिल्ली प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए 19 विशेष वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्देश्य 300 से अधिक लोगों तक सहायता पहुंचाना है। श्री सिंह ने बताया कि अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वन विंडो सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें समाज कल्याण विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार इस 5 दिवसीय अभियान के दौरान 2400 घंटे समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने प्रकाश विहार क्षेत्र में जल बोर्ड की नई पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, राजधानी की 69 समृद्ध कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा केंद्र और अन्य स्तरों पर उठाया जा रहा है। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज सम्पन्न। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ने दरियागंज में नशा मुक्ति संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जागरूकता अभियान चलाया और फिट इंडिया कार्यक्रम में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: टायर लो सोना जीतो।
8: क्या?
7: जी हाँ,
9: चावला टायर
7: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
9: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100%

0: करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हाउ आर यू, आप कैसी हैं पहले तो ये बताइए।
1: सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद, मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: जी मैम, तो आप ये बताइए मैम, सबसे पहले तो आप स्टूडियो में पहली बार आई हैं रेडियो स्टेशन में या पहले भी कभी आई हैं?
1: पहले रामपुर रेडियो स्टेशन में नारी जगत में प्रोग्राम देती थी, लेकिन मुरादाबाद में मैं फर्स्ट टाइम आई।
0: ओके, सो नीतू मैम से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके बारे में जानना चाहेंगे। नीतू मैम, हमारी तमाम जनता आपको सुन रही है मुरादाबाद की, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप कहां से हैं, क्या करती हैं?
1: मैं नीतू सक्सेना, मैं यहीं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूं, और मैं इस समय जो प्रेजेंट में है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में PLB के रूप में कार्य कर रही हूँ। इसके अलावा लगभग मैं 30 साल से जॉब कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने टीचिंग की थी मानसरोवर इंटर कॉलेज नवीन नगर से, उसके बाद गर्ल्स पॉलिटेक्निक में एज ए ट्रेनर के रूप में मैंने कार्य किया, और जिसिंड RCT कैनरा बैंक है उसमें भी मैंने एक ट्रेनर के रूप में, मतलब महिला सशक्तिकरण के ऊपर महिलाओं को ट्रेनिंग दी थी।
0: अरे वाह।
1: और उसके बाद 2016 में मेरा बाल कल्याण समिति में चयन हुआ, उसमें मैंने कार्य किया, और उसका कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद अब मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सेवा दे रही हूं। और इसके अलावा मैं काफी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हूं, जिसमें मैं लगातार महिला सशक्तिकरण और बच्चों के लिए कार्य कर रही हूं।
0: अल्टीमेट, दैट्स वेरी नाइस। मतलब एक नहीं दो नहीं, कितनी सारी कैटेगरी में मैम काम कर रही हैं, अनबिलीवेबल यार। मतलब आप तो मॉम नहीं, आप सुपर मॉम हो, सुपर से भी ऊपर वाली सुपर मॉम। सो अच्छा मैम, ये बताइए आपको, अब सुपर मॉम में हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मदर्स डे आपके लिए क्या है? एक माँ के लिए जो शब्द है, हम तो जितनी भी बात करें शायद वो कम पड़ जाते हैं, बट एज अ बींग अ मॉम आप आज मदर्स डे को कैसे देख रही हैं? आपके लिए क्या है मदर्स डे?
1: माँ के बराबर तो रिश्ता कोई नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
1: माँ तो माँ होती है, और एक बेटी बहुत अच्छे से समझ सकती है कि माँ क्या है।
0: करेक्ट।
1: मेरी भी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उन्हें हर पल याद करती हूँ, और उनका जन्मदिन भी या जो मातृ दिवस है मैं एक पौधारोपण करती हूँ उनके।
0: अरे वाह, दैट्स वेरी नाइस।
1: हर साल करती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मैम। मतलब ये कैसे आया दिमाग में कि मुझे पौधारोपण करना चाहिए?
1: ये क्योंकि देखिए मदर है, मदर तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन मैं प्रकृति से भी जुड़ी हुई हूँ।
0: अरे वाह।
1: और प्रकृति सेवा में कार्य भी कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पौधा लगा के जैसे जैसे हम उसको सींचेंगे और उसे बड़ा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो माँ है उनको मैं उस रूप में देखती हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है। मतलब प्रकृति से भी प्यार है आपको, नेचर से जुड़ना आपको पसंद है, और कहीं ना कहीं एक वो खास चीज जो आपको आपकी मेमोरी से जोड़ रही है ना, आप उसमें अपनी मदर को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो आपकी खुशी भी बढ़ेगी।
1: और ऐसे जगह पौधा लगाती हूँ मैं जो जिसकी देखभाल भी करूँ।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, दैट्स वेरी नाइस मैम। बहुत अच्छे अच्छे काम जो है कर रही हैं आपसे, तो मतलब बात करके बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, एंड आई एम श्योर गाइज आपको भी अच्छा लग रहा होगा। सो मदर्स डे पे ढेर सारी बातें हम नीतू जी से कर रहे हैं आज। मैम आपने इतने सारे काम कैसे मतलब जो है कर लिए, क्योंकि इतना सारा एक्टिव खुद को रखना कैसे मतलब पॉसिबल हो पाता है, इतनी प्रोडक्टिविटी?
1: महिलाएं ये सोचती हैं कि हम सिर्फ घर का कार्य कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन कुछ कभी कभी परिस्थिति भी ऐसी होती है और कुछ हॉबी होती है, दोनों ही चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वर्किंग वुमन है तो परिस्थिति की वजह से कर रही है, उसकी एजुकेशन भी अच्छी लेती है, कुछ लोग हॉबी के रूप में भी कर रहे हैं। तो मैंने तो शादी के बाद जो चीजें मैंने एज ए हॉबी सीखी थी, तो उसको मैंने अपना एक एम बनाया, एक लक्ष्य बनाया, कि मैं मुझे कुछ करना है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि मैं जो मेरे बच्चे हैं वो उनको मैं अच्छी शिक्षा दे सकूं, उन्हें अच्छा आगे बढ़ा सकूं। तो जब मैं ही कुछ करूंगी तभी मैं उनको कर सकती हूं।
0: गॉट इट, बिल्कुल मैम सही बात है, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। लेकिन शादी के बाद जब आप दूसरे घर आते हो तो ये इतना आसान नहीं होता है, दिस इज वेरी चैलेंजिंग। और अगर आपके फैमिली वाले अच्छे मिल जाए तो आपके बल्ले बल्ले, वरना तो बड़ी मुश्किलें आती हैं जीवन में। तो आपका ये शादी के बाद जो सफर रहा, लगातार आपने काम किया, ये आपके लिए बहुत ईजी था या थोड़ा बहुत मुश्किल भरा था?
1: नहीं, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल भी आई, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे फादर इन लॉ थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
0: अरे वाह।
1: और जो मैं हूँ, और इधर मैके से मेरी मदर ने और मेरे फादर ने, क्योंकि लोकल यही मैका है मेरा।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो दोनों के सपोर्ट से, क्योंकि मॉरल सपोर्ट बहुत होती है,
0: अरे
1: तो उन्हीं के सहयोग से मैं आज इस पद पर भी हूँ, जहाँ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ।
0: क्या बात है, मतलब सारा क्रेडिट ये उन्हीं को दे रहे हैं भाई, जिनकी वजह से आज वहाँ पहुँच पाई है, ये और बहुत अच्छी बात भी है।
1: और इसके अलावा जिस बच्चे जो बड़े हुए, तो हमने उसी स्कूल में जॉब की जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे, तो बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, तो उन्होंने एक बेटा और बेटी है मेरा।
0: अच्छा मैम।
1: क्योंकि होता है कि मुझे याद नहीं कि जो वर्किंग वुमन होती है उसका एक नेगेटिव वो भी होता है कि वो अपने बच्चों को समय उतना नहीं दे पाती।
0: करेक्ट।
1: और मुझे नहीं लगता कि जो लंच होता है, जो दिन का खाना होता है, वो

0: शायद बच्चों के साथ कर पाती हूँ। तो कहीं ना कहीं बच्चों का भी बहुत सपोर्ट है कि उन्होंने भी सपोर्ट किया।
1: क्या बात है। अच्छा, आपके लिए ये वर्किंग वाला फेस तो रहता ही रहता है। ये आपने बताया कि एक टाइम का खाना भी अगर बच्चों के साथ खा ले तो ये एक बहुत ही लकी चार्म हो जाता है। लेकिन एज अ मदर आप कैसे देखती हैं, क्योंकि जॉब के साथ साथ घर को भी संभालना है, ये बहुत इजी नहीं होता है एक माँ के लिए। और अब बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाए, लेकिन जो माँ करती है ना उसका स्वाद ही अलग होता है। तो ये आपके लिए मतलब कैसा रहता है, कैसे आप मैनेज कर पाते हो सुबह उठ के, क्या रूटीन होता है आपका बेसिकली?
0: सुबह अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे थे तो अपना उठने का समय जो है वो चेंज किया, हमने जल्दी उठ जाते थे और उसके बाद सब मैनेज करते थे। नाश्ता बनाना है, उनका लंच भी बना के रखे जाना है, तो वो सब मैनेज करते थे। लेकिन अब बड़े हो गए, बच्चे बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि अगर किसी के अंदर कुछ करने की लगन है तो वो सब कुछ कर सकता है।
1: वेरी नाइस, बहुत अच्छा कहा नीतू मैम ने। और कहीं ना कहीं हमारा भी एक छोटा सा मकसद है, छोटा सा प्रयास है अपने रेडियो के माध्यम से कि हम उन्हीं लोगों को फीचर्स करें, उन्हीं लोगों को स्टूडियो में आएं और उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी सुनाएं जो एक्चुअली स्ट्रगल करके, सफर करके यहां तक पहुंचे हैं। और उसी बीच नीतू जी भी हमारे साथ हैं आज मदर्स डे के मौके पे। तमाम लेडीज आपको सुन रही हैं जो आपकी तरह कुछ करना चाहती हैं, बनना चाहती हैं, और उनके अंदर भी एक हिम्मत तो है, जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो निकल नहीं पाती हैं, सिर्फ वो सोचती रह जाती हैं।
0: जी जी,
1: तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि हुनर तो सब में होता है,
1: बिल्कुल,
0: महिलाओं के लिए। किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो सभी महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण को यही कहना चाहती हूँ कि वो अपने हुनर को, अपने टैलेंट को, क्योंकि हर एक टैलेंट जरूर होता है एक महिला में, उसको आगे बढ़ाएं, एक प्रोफेशन के रूप में बढ़ाएं, एक हॉबी के रूप में बढ़ाएं।
1: बहुत ही अच्छा बोला नीतू मैम आपने, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा कि मदर्स डे पे आप आए और आपने तमाम सारी जानकारियां दी और तमाम सारी बातें अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में आपने शेयर करी। बहुत अच्छा लगा इस मदर्स डे आपने एफएम मुरादाबाद को इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। एंड आप कुछ पेंटिंग का भी जिक्र कर रही थी कि आप कुछ आर्ट भी करते हो।
0: जी,
1: मतलब शी इज वेरी टैलेंटेड यार, छुपा छुपा के रख रही है वो, बट मैं सब जानूंगा, बताइए ना।
0: सभी तरीके की पेंटिंग्स कर लेती हूँ,
1: अरे वाह,
0: चाहे फैब्रिक हो या एम्बोज पेंटिंग हो, कोई भी पेंटिंग को सब कर लेती हूँ। लेकिन इसके अलावा जो विशेष है वो क्ले वर्क करती हूँ मैं।
1: ओह वाओ,
0: पॉट्स बनाते हैं जो क्ले वर्क से, क्ले मिट्टी से, तो गणेश जी की प्रतिमा और कान्हा जी की प्रतिमा और काली माता जी की प्रतिमा, ये बिना सांचे के बना लेती हूँ, और पॉट्स भी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कंपनी हमारा एनजीओ है जिसके थ्रू हम निशुल्क महिलाओं को ये हमने सिखाया भी है।
1: अरे वाओ,
0: ताकि वो अपना व्यवसाय कर सके।
1: अच्छा मैम, कौन सा एनजीओ है, अभी भी चल रहा है?
0: हमारा एनजीओ है अपना, उसका बेटी का घर।
1: अच्छा है, अच्छा, ओके, तो इसमें आप ये ट्रेनिंग भी देते हैं?
0: जी।
1: वाओ वेरी नाइस, मतलब इतने सारे टैलेंट है भैया, वो मम्मियां ही हो सकती हैं जिनके अंदर इतने टैलेंट होते हैं, सच बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा वैसे मैम आपने ये तो बता ही दिया, इसके अलावा एक और चीज है जो मुझे लगता है एक मम्मी के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, वो मुझे लगता है कि मेरे को आपसे पूछ लेना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर मैं ये नहीं पूछूंगा तो बहुत ही ऐसा लगेगा कि नाइंसाफी हो रही है। मैम आपने जैसे रेडियो में भी किया है और आप एक बार फिर से रेडियो में आ गई हो, तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही कि आप आज प्रवक्ता वाली सीट पे बैठ गई हो, तो आप आरजे
0: नहीं? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ये बात आप नहीं पूछते तो मैं खुद आपसे कहती
1: नहीं नहीं, इसीलिए मैंने ऐसे घुमा फिरा के इसलिए पूछा, मैम की फीलिंग्स को चेक करता हूँ।
0: मुझे फील हो रहा है।
1: अच्छा,
0: जब हम वहाँ जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था कि जब बोलते थे और खुद ही लिखते थे उसके बाद, तो मतलब उसमें एक टॉपिक भी दिया गया था हमें, हर उम्र में होना चाहिए जिम्मेदारी का एहसास।
1: क्या बात है, देखिए टॉपिक भी याद है मैम को, क्या बात
0: है। तो मुझे आज वही फील हो रहा है और मुझे आज अच्छा लग रहा है कि
1: वापस से आप उस फ्लैशबैक में चले गए।
0: True,
1: I got it, मैम, समझ सकता हूँ। अच्छा मैम, बहुत सारे यू नो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी बहुत योगदान होता है जब जीवन में आदमी कुछ करता है, स्पेशली एक लेडी जब कुछ करती है तो उसका जो हमसफर होता है अगर वो अच्छा मिल जाए तो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है। तो आपके पति देव का कितना सपोर्ट रहा है आपको लेकर?
0: नहीं, उनका तो इतना नहीं, मेरे परिवार में मेरे जो फादर इन लॉ है पुरुष के रूप में, उनका और बेटे का
1: सबसे ज्यादा योगदान
0: रहा है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी जो हस्बैंड आपको सुन रहे हैं जो सोचते हैं कि नहीं बीबी तो सिर्फ घर में रहनी चाहिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा?
0: नहीं, ऐसा नहीं है कि मदर्स डे पे यही कहना चाहती हूँ कि हर महिला जो घर में कार्य कर रही है और जो ऐसा नहीं है कि वो आगे कुछ नहीं कर सकती, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती है, बच्चे भी बहुत अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो सभी से ये निवेदन है कि महिलाओं को जो भी हुनर है, आजकल तो घर बैठे भी महिलाएं इतना कार्य कर रही हैं, हर एक के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, तो आप उसको आगे बढ़ाइए।
1: बहुत अच्छा बोला नीतू जी, आप आई मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नीतू जी, आप आए, आपको भी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एफ एम मुरादाबाद की ओर से, आरजे आनंद की ओर से आपको और आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वे बेस्ट। एंड आई रियली होप आप आगे भी आएंगी तो अगली बार जरूर बोलेंगी कि हाँ मैं रेडियो सुनती हूँ।
0: जरूर,
1: पक्का ना?
0: जरूर।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बाय बाय मैम।
0: थैंक यू।

0: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
1: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।

0: समझे समझे।
1: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हर

0: क्या बात है एवरीवन, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ होता है। और दोस्तों अभी यहाँ पर हमारे साथ में एक ऐसी ही खूबसूरत सी यहाँ पर बोल सकते हैं कि ब्यूटीफुल मैम यहाँ पर बैठी हुई हैं जो मुस्कुरा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड है मैम, तो उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। हेलो, हाय एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संडे की इस खूबसूरत सी शाम में। खुशी आपके साथ है और ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए लेकर आई है। यहाँ पर समय हुआ है अभी 8:31 और मैम से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप सभी के लिए, स्पेशली सभी मदर्स के लिए। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मॉम्स। एंड क्या कहना चाहती हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा, लिसन टू मी एवरीवन। एंड आज मैं कहना चाहती हूँ कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी दुआ होती है। कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी दुआ होती है। थकी हुई जिंदगी में सुकून का एहसास होती है। माँ की चेहरे की मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है। जिस घर में माँ की हंसी गूंजती है वहाँ हर दिन त्योहार सा लगता है। माँ का प्यारा, माँ का वो प्यार पूरे घर को रोशन कर देता है, जो हर अंधेरे रास्ते को आसान बना देती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, उनके प्यार जैसा दुनिया में कोई और रिश्ता अनमोल नहीं होता। तो दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ इस खूबसूरत से शाम में कि हमारे साथ अभी कनेक्ट हुई हैं डॉक्टर मोनिका यादव जी। एंड मैम बहुत ही खूबसूरत शायर भी हैं, बहुत ही खूबसूरत गाती भी हैं एंड टीचर भी हैं। मतलब मैंने कहा ना आपको कि मल्टी टैलेंटेड है, कोट कोट के उनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। तो आइए बिना किसी देरी के आपसे उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं, उनसे आपको मिलवा देते हैं, क्योंकि मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई है और मैं चाहती हूँ कि ये खुशियाँ मैम अपनी हमारी जो ऑडियंस है, जो लिसनर्स हैं, उनको भी बांटें। तो मैम नमस्कार, राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप?
1: राधे राधे, राधे रानी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैप्पी मदर्स डे मैम।
1: थैंक यू, सेम टू यू, सारी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे।
0: जी तो बताइएगा मैम अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: मेरा नाम तो आपने बता ही दिया, डॉक्टर मोनिका यादव
0: जी।
1: मैं एक टीचर हूँ, सेंट मैरीज मैं टीचिंग करती हूँ।
0: ओके मैम,
1: नियर अबाउट 31 हो गए।
0: अरे वाह,
1: टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा।
0: क्या बात है, क्लैपिंग मैम के लिए, जोरदार।
1: और काफी सक्सेसफुली मैंने अपना काम किया है।
0: बहुत अच्छी बात है मैम, और आज हमें भी सौभाग्य मिला है मैम से रूबरू होने का। आई एम सो हैप्पी।
1: आई एम आल्सो वेरी हैप्पी।
0: जी मैम, सुबह आज आप सुना दीजिए जो टैलेंट आपके अंदर है, जो आपने सबको दिखाया है बट हमें नहीं दिखाया है, तो आज हम भी चाहते हैं और हमारी ऑडियंस भी चाहती है आपसे सुनना। तो आज कोई कविता खूबसूरत सी जो आप सुनाना चाहती हैं?
1: तो मैं ये आज जैसे मदर्स डे है उसके ऊपर मैं सबके सामने ये बात कहना चाहती हूँ कि माँ एक एहसास है जो बिना कहे ही हमारी तकलीफ समझ जाती है।
0: बिल्कुल राइट,
1: माँ की गोद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है
0: जी।
1: माँ की मुस्कान ही हमारी असली खुशी है। अगर घर में माँ परेशान है, दुखी है, तो घर से खुशियाँ ऑटोमेटिकली
0: चली जाती है।
1: दुनिया छोड़ सकती है, माँ हमें कभी नहीं छोड़ सकती।
0: राइट,
1: एक माँ ही है जो एक रोटी मांगेंगे तो दो देंगी,
0: दो देती है। हाँ मैम, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: माँ मेरा शाश्वत प्रेम है, उसका प्रेम मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। माँ एक शक्ति भी है, माँ सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा सब कुछ होने के लिए मैं अपनी माँ का भी धन्यवाद देती हूँ और दुनिया की हर माँ को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ।
0: क्या बात है, सुपर। एग्जैक्टली मैम, आज हम जो भी हैं इस मुकाम पर हैं, तो मम्मा को तो थैंक यू बनता ही है क्योंकि उनकी वजह से ही सब कुछ है।
1: हाँ।
0: जी
1: एक मैंने गजल लिखी है, माँ की नजर।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: हाँ, अगर मैं अपने दर्शकों से जो क्या श्रोता हैं जो सुन रहे हैं
0: जी,
1: कि अगर उन्हें पसंद ना भी आए तो भी थोड़ी मेरी प्रशंसा कर दें।
0: अरे

0: आएगी मैम, आपकी आवाज इतनी मधुर है और मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ।
1: सूरज नहीं निकला, माँ क्या नाराज है मुझसे,

0: अमेजिंग मैम, बहुत ही अच्छा आपने गुनगुनाया है और बहुत ही खूबसूरत लाइन है, एकदम हार्ट टचिंग एंड मेरे तो दिल को छू गई। और जब कभी माँ नाराज होती है तो पूरा घर सुना सुना लगता है,
1: अंधेरा हो जाता है,
0: अंधेरा हो जाता है। और माँ को मनाने के लिए पीछे पीछे दौड़ना, माँ किचन में जाती है तो हम किचन में जाते हैं तो माँ बाहर आ जाती है, लेकिन वो रूठना मनाना, जैसे ही अगर बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो माँ तुरंत दौड़ के आती है और बच्चे का हाल जानती है। एंड वो माँ के बारे में जितना हम बोले उतना कम है। और आपने बहुत ही खूबसूरत गज़ल गुनगुनाई है,
1: धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
0: इस गज़ल ने मम्मा से मुझे कनेक्ट कर दिया है। बिल्कुल मैम, सभी श्रोताओं को पसंद आ रही है और सभी एंड वो टाइम में चले गए हैं जो जब नाराज़ हुई थी मम्मा, वो वाला यू नो सीन उनको याद आने लगाया होगा अभी। बहुत ही खूबसूरत।
1: एक शायर एक राइटर का टारगेट यही होता है कि वो दिल में उतार दे अपनी, अगर वो दिल में उतार दे ना श्रोताओं के या दर्शकों के तो वो फिर सफल है,
0: वो सफलता है जी,
1: उसकी कामयाबी यही है कि श्रोता के दिल को टच कर जाए।
0: बिल्कुल सही बात है, एक कलाकार वही होता है जो सामने वाले के दिल में उतर जाता है और वो काम आपने कर दिखाया है मैम।
1: धन्यवाद आपका, शुक्रिया,
0: मोस्ट वेलकम। तो आज कोई ट्रैक आप सुनना चाहती हैं?
1: अच्छा सॉन्ग?
0: हाँ जी,
1: सॉन्ग्स तो वैसे हमारी हिंदी इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत ज्यादा।
0: बिल्कुल,
1: एक सॉन्ग तो मुझे वो पसंद है,

0: क्या बात है मैम, बहुत ही खूब। एंड कोई स्पेशली मदर्स के लिए आप सॉन्ग, आपने ये तो बहुत अच्छा गुनगुनाया है रफ़ी साहब जी की आवाज़ में, लेकिन कुछ मदर्स के लिए जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगी या दो लाइनें कुछ?
1: तो कितनी अच्छी है

0: इतने प्रेम से मम्मा को बुलाएंगी जो दौड़ी चली आ जाएंगी। बहुत ही खूब, बहुत प्यारी आपकी आवाज है मैम। और ये अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतना प्यारा आप गुनगुनाती हैं, गाती हैं, दिल को मेरे छू गया है और हमारी ऑडियंस को, ये दिलों पर भी ये गीत आपका राज कर रहा है हम जानते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इसकी शिक्षा ली है?
1: नहीं नहीं, गॉड गिफ्टेड है।
0: अच्छा, ये बचपन से आपका शौक था?
1: गॉड गिफ्टेड है।
0: ओके,
1: शायरी भी मेरे को अपने ग्रैंडफादर से मिली है, वो भी इंडिया फेम के थे, बहुत जाने माने शायर थे, वो हुमा के नाम से लिखते थे।
0: अच्छा,
1: और मेरे जो पिता हैं वो भी अर्श के नाम से लिखते थे।
0: okay.
1: तो हमारा कुछ ये मतलब उसमें मिला है हमें, जीन्स में।
0: हाँ, तो मैम लाइक आपने छोटे से स्टार्ट किया गाना, तो कहीं परफॉर्म किया है आपने स्टेज पर लाइक?
1: हाँ, अपने स्कूल में तो बहुत किया है,
0: प्रेयर
1: सॉन्ग्स वगैरह सिखाए बच्चों को।
0: ओके,
1: लेकिन कभी ऐसा बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका नहीं मिला।
0: अच्छा, लेकिन इतनी प्यारी आपकी आवाज है और लाइक मैं तो हैरान हूँ, मेरे एकदम गुण वो बोलते हैं ना,
1: गूज़बम्स।
0: हाँ, गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को, और मेरा भी लाइक पैशन है।
1: अगर आपके जो श्रोताओं का आशीर्वाद रहा और आपकी मेरे साथ दुआएं रही, प्रेयर्स रही, तो हो सकता है मैं लाइमलाइट में आ जाऊं।
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है,
1: क्योंकि टैलेंट ही होना जरूरी नहीं होता, कई बार लक भी होना जरूरी
0: होता। लक भी, दोनों ही जरूरी होते
1: हैं। दोनों ही जरूरी। सारे टैलेंटेड लाइमलाइट में
0: नहीं आते हैं। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट,
1: बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसे रह जाते हैं, जो लाइमलाइट में आ गया वो भाई
0: छा गया,
1: लता बन गए, अमिताभ बच्चन बन गए।
0: जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। तो चलिए श्रोताओं, अभी हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, लेकिन मैं उनसे पहले कहना चाहूंगी आपसे कि आप मुझे बताइएगा एवरीवन, हमारे साथ जो बहुत ही ब्यूटीफुल मैम यहाँ पर बैठी हैं और गुनगुना भी रही हैं, इतनी खूबसूरत सी उनकी आवाज है, आपको कैसा लग रहा है मैम का गीत? फटाफट से आप मुझे व्हाट्सएप करो, अभी हमारा लाइव ऑन ईयर शो चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आपको अपनी फीडबैक मैसेज शेयर करना है हमारे साथ। और बताइएगा अभी जो मम्मा इस समय किचन में खाना बना रही हैं, कुछ अभी गर्मा गर्म यू नो क्या स्पेशल बन रहा है? भाई खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है आपके किचन से मैम, हमें भी बता दीजिएगा, हम भी थोड़ा सा यू नो खाने नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर फील तो कर
1: फील
0: सकते हैं,
1: कर सकते फील करके खुश हो सकते
0: हैं, हैप्पी हो सकते हैं। और अभी बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, उसके बाद मैम से और भी कंटिन्यू बातें करने वाले हैं। एवरीवन, आपका दिल लग गया है ना, अब मन आपका मन भी नहीं कर रहा है कि मैम से थोड़ा सा दूर भी रहा जाए। दोस्तों बस लौट कर आते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के, उस पर सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, खुशी है आपके साथ, मुस्कुराइएगा।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल एवरी लिसनर्स। वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और देखिए खुशी अकेली नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल मैम यहाँ पर बैठी हैं हमारे साथ साक्षात। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत लकी भी हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला है मैम के साथ इंटरव्यू करने का। एंड लाइव साक्षात हम इनको सुन रहे हैं और इनसे बहुत ही ज़्यादा बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक ऐसा लग रहा है कि हम अपनी मम्मा के साथ ही हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और आइए उनसे बातचीत आपकी करवाते हैं। हेलो मैम, वंस अगेन वेलकम बैक, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम।
1: मुझे भी खुशी है आपको देखकर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी है।
0: थैंक यू सो मच। लग नहीं रहा कि हम पहली बार बातचीत कर रहे हैं, पहली बार मिले हैं।
1: बेतकल्लुफी से और

0: क्या बात है, हमारा पूरा स्टूडियो भक्तिमय हो चुका है और एवरीवन बहुत बहुत ही ज़्यादा हमारा स्टूडियो एकदम भक्तिमय हो गया है और बहुत ही आनंद आ रहा है हमें, एंड हमारे सुनने वाले सभी श्रोता भी आनंदमय होंगे और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हमारे इस लाइव सेशन को मैम। और आपकी आवाज़ तो सच में दिल में उतर गई है और मन नहीं कर रहा है कि मैं आपको छोड़ूं, दिल कर रहा है कि बस बिठा कर मैं सुनती रहूं आपसे।
1: ये तो आपका बड़प्पन है कि आप एक मामूली से इंसान को।
0: अरे मैम, ये मल्टी टैलेंटेड है आप इतनी ज्यादा। और मैम से हम कुछ और भी सुनना चाहते हैं एवरीवन, एंड वो हम सुनेंगे क्या अभी आपको आकर बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। और मैंने आपसे कहा एवरीवन कि आप भी मुझे मैसेज कीजिएगा आपको मैम की आवाज कैसी लग रही है और इतना खूबसूरत वो गुनगुना रही है, कुछ आप भी मैम के लिए कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह दीजिएगा, ये अवसर आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। लौट कर आती हूँ मैं इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। यह है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। मेरे साथ में यहाँ पर हैं डॉक्टर मोनिका यादव जी, जो कि बहुत प्यारा गुनगुनाती भी हैं, बहुत अच्छी पोएट्री भी करती हैं और टीचर भी हैं, मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आपने गाना तो सुना ही है कि आपके भी होश उड़ गए और दिल कर रहा है कि ओए होए ऐसी आवाज तो हम सुनते रहे, है ना, ये मन कर रहा है ना। हाँ चलिए अभी सुनेंगे मैम से, लेकिन उससे पहले एक बहुत प्यारा सा गीत।

0: बिल्कुल दोस्तों, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। मम्मा पापा भगवान का ही रूप है और आप साक्षात देख सकते हैं कि वो हर पल हमारे साथ होते हैं, चाहे हम दुख में हों चाहे वो सुख में हों। हम कुछ उनसे ना कहें फिर भी वो हमारे दिल के जज्बात, हमारी बातें, हमारी फीलिंग्स को जान लेते हैं। कि बच्चा अगर मुस्कुरा रहा है और उसके पीछे तकलीफ़ है तो वो मुस्कुराहट की वजह नहीं पूछेंगे, वो तकलीफ़ का रीज़न जान लेते हैं बिना बोले कि बच्चा परेशान है मेरा। और सच में कहते हैं ना कि भगवान हमेशा पास नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान जिन्हें खुद तो नहीं आ सकते, उन्होंने माँ को भेज दिया है। और मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपके पास मम्मा है तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि दोस्तों वो सबसे अनमोल तोहफा है। पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमें बड़े बड़े तोहफे दें, बड़े बड़े गिफ्ट दें, नहीं। आप उनसे 2 मिनट भी अगर बात कर लोगे ना तो वो खुश हो जाएंगी। और आप ये समय दे सकते हैं जो कि बहुत मोस्ट है। मैम, आपका मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगी बहुत बहुत, और मोस्ट वेलकम। आज मेरा एक क्वेश्चन भी है आपसे। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आजकल की जेंजीज हैं, आजकल के यूथ हैं, युवा हैं, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो गए हैं, तो इस समय वो अपनों को, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए एज अ टीचर?
1: नहीं नहीं, कितने भी बिजी हैं ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई चाहें, वेदर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ भी हम अगर चाहें तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हैं। उन्हें कोई बहुत ज्यादा ना आपका रुपया चाहिए ना पैसा चाहिए, उन्हें सिर्फ आपका वक्त चाहिए, आपके 2 मीठे बोल चाहिए कि आप उनके पास बैठ के थोड़ा उनका सुख दुख पूछ लो। क्योंकि रिटायर होने के बाद जैसे कोई वर्क नहीं रहता इंसान को, तो वो कहाँ बिजी हो।
0: बिल्कुल,
1: तो इसलिए जो है उनके साथ आपको थोड़ा बहुत, अगर
0: जो हमारे लिए पूरी जिंदगी देते हैं तो उनके लिए भी हमें वक्त देना चाहिए।
1: उन्होंने तो ऐसा नहीं किया था जब आपका ब्रॉटअप किया था
0: जी,
1: उन्होंने अपनी बड़ी कई सैक्रिफाइसेस किए।
0: यस मैम,
1: है ना, कभी अपने अपने लिए नहीं और आपको आपको खिलाया, अपने लिए नहीं सोचा, आपके लिए सोचा, फर्स्ट प्रेफरेंस पे हमेशा बच्चों को रखा,
0: बच्चों को।
1: हमारा भी आज कर्तव्य बन रहा है कि हम वही रिटर्न करके दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश पूरी करनी चाहिए कि माँ पापा को उतना ही प्यार दें जितना हमें मम्मा पापा ने दिया है, पेरेंट्स ने दिया है। और बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनको परिवार, मम्मा पापा का प्यार मिलता है।
1: ये तो बहुत बहुत भाग्य की बात है, अगर मौका मिल रहा है ना, अगर माँ बाप के
0: सेवा करने का
1: है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं
0: जी।
1: जो बहुत भाग्यशाली हैं,
0: बिल्कुल, जो हर किसी को नहीं मिलता है,
1: किसी को नहीं मिलता।
0: और फिर बिलीव इन कर्मा, जो हम कर्मास करते हैं वो रिटर्न में हमें मिलता है, तो अच्छा कर्म करेंगे आप।
1: वो है एक, आपने सुना होगा एक साइंटिफिक वो भी है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी हमारे कर्म है ना वो हमारे पास वापस आते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जो हम देते हैं वो रिटर्न में मिलता है। अब हम सोचें कि हमें चीजें अच्छी अच्छी मिले, लेकिन आप अच्छा नहीं दे रहे हो तो आपको अच्छी कैसे मिल सकती है? तो आपको बदले पहले देना होगा ना। अच्छा, जब आप अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा भी आपको। पूरी उम्मीद रखिए खुद पर भी और ऊपर वाले पर भी, एंड अपने पेरेंट्स पर तो रखते ही हैं। एंड मैं मैम से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो मेरे दिल में, मतलब मेरे जो दिल में है ना वो खलबली ही मचा रहा है। मैं जानना चाहती हूँ मैम, आप इतनी प्यारी हैं, इतनी स्वीट हैं, और आप बहुत अच्छा कुक भी करती हैं, बहुत अच्छा खाना भी आप बनाती हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी मम्मा सबसे स्पेशल डिश कौन सी बनाती थी जो आपको आज भी बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट आप भुलाए नहीं भूलती, चाहे आप कितना भी टेस्टी खाना बना लेती हैं।
1: ये तो कह रहे हैं, माँ के हाथ का स्वाद आज तक दोबारा, वो तो मेरा शेर है भी।
0: अच्छा,
1: अभी मैंने जो गजल पढ़ी थी उसमें है भी, अब वो स्वाद ना रहा, माँ का नाराज है मुझसे,
0: नाराज है मुझसे।
1: ये कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे दिल की ही टीस है, जो उसमें दिल का ही दर्द है जो उभरा है,
0: आपने उसमें बयां किया।
1: मेरी माँ तो खैर बहुत ही वेरी गुड इन कुकिंग, मतलब शी वाज वेरी, मतलब शी वाज आल्सो मल्टी टैलेंटेड।
0: वाओ,
1: और वो सबसे ज्यादा होते तो ये तो हलवा, सूजी का हलवा इतना टेस्टी बनाती
0: थी। भूख लगने लगी है हलवे के नाम से मेरे को।
1: और एक मटर पनीर,
0: अरे वाह क्या बात है,
1: बहुत बहुत टेस्टी बनाती थी। मतलब ऐसा मैंने इतना पार्टीज वगैरह में भी जाती है, लेकिन वो वाला टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला।
0: जो माँ के हाथ में स्वाद है वो प्यार से बनाना, और वो खुशबू, पड़ोसी के घर भी खुशबू जाती थी, पड़ोसी भी पूछते होंगे अरे आज तो
1: आंटी ने हलवा
0: ही बनाया है,
1: हम भी आ जाएं।
0: हाँ हाँ राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो हुई मम्मा की बातें, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या स्पेशल बनाते हैं जो भैया को बहुत पसंद आता है?
1: मेरे बेटे को?
0: हाँ जी,
1: मेरे बेटे को तो मेरे हाथ की एक तो पकौड़ी बहुत पसंद है।
0: अरे वाह,
1: वेजिटेबल पकौड़ा।
0: ओ वाओ,
1: माँ जब भी रहेगा, माँ ये आपके जैसे कोई नहीं बनाता।
0: जब भी भैया घर आते हैं तो आपके हाथ का वो खाते हैं,
1: जरूर खाते हैं वो।
0: अरे
1: और मीठे का वो ज्यादा शौकीन नहीं है।
0: ओके, हाँ होता है, सबका अपना अपना चॉइस होती है,
1: पराठे या वेजिटेबल पकौड़ा।
0: ओके, तो हम भी आपके घर आएंगे फिर वो पकौड़े जरूर खाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। और अभी हम आपसे सुनना चाहेंगे एक प्यारा सा भजन जो अभी आप गुनगुना रही थी बड़ा प्यारा. मैंने कहा श्रोताओं हम ही क्यों सुने, अपने ऑडियंस को भी हम सुनाना चाहते हैं इतनी प्यारी सी मधुर सी आवाज, और ये अवसर हमें आज मिला है तो हम इसको कैसे मिस कर सकते हैं. तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं मैम की आवाज में एक प्यारा सा और भजन.
1: राधे कृष्ण
0: राधे कृष्ण.

0: क्या बात है, पूरा भक्ति में ही माहौल हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं बरसाने में यही डोल रही हूँ बैठे बैठे। बहुत ही आनंद मुझ को आ रहा है और हमारे श्रोताओं को भी आ रहा है। मैम वृंदावन बरसाना यहीं पर लग रहा है मुझे और बहुत ही आनंद आया। आई एम सो एंड हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी गर्ल। सच में मैं दोबारा से यही कहना चाहती हूँ, अभी लाइव में हमारे साथ मैम है और सच में एक बहुत ही ये शाम जो है मुझे हमेशा यादगार रहेगी और जब जब मदर्स डे आएगा
1: मुझे भी यादगार रहेगी।
0: मैं हमेशा याद रखूंगी कि हम जुड़े थे मोनिका मैम से जिन्होंने इतना प्यारा गुनगुनाया है और क्या ही बोलूं मैं, शब्द मेरे पास कम पड़ रहे हैं मैम।
1: नहीं नहीं, मैं भी बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि इतना अच्छा, इतना अच्छा खुशी ने बोला और कितना मेरे को एक मामूली से इंसान को बिल्कुल आसमान पे बैठा दिया। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद खुशी, तुम्हारा भी, तुम्हारे पर भी राधे कृष्ण की कृपा रहे, सारी मदर्स पे, सब पे।
0: बिल्कुल, एक मैसेज जाते जाते जो सभी मदर्स को आप देना चाहती हैं।
1: हाँ, मैं यही देना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को बहुत प्रेम करें और बदले में वो भी आपका सम्मान करें। बस यही मेरी राधे कृष्ण से वो है कि एक माँ का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता,
0: नहीं ले सकता। हाँ, राइट मैम।
1: और माँ का कभी अपमान ना करें, माँ का हमेशा सम्मान करें, माँ का हमेशा कहना माने, माँ को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका सम्मान चाहिए।
0: सम्मान चाहिए, बिल्कुल। बहुत प्यारा मैम ने ब्यूटीफुल बोला है, बहुत खूबसूरत लाइनें बोली मैम ने कि माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ को सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट ही चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। एंड उसके अलावा आप समय दीजिए और बाकी माँ को कुछ भी नहीं मिलता ना तो भी वो बहुत प्यार करती हैं, तो भी वो ब्लेसिंग्स देती हैं अपने बच्चों को हमेशा भरपूर, चाहे आप दूर रहें या पास रहें।
1: उनका प्रेम निस्वार्थ होता है,
0: निस्वार्थ होता है,
1: वही बदले में वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती सिवाय सम्मान के।
0: सम्मान के, बिल्कुल मैम। बहुत ही अच्छी आपने लाइनें बोली और बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने सभी मदर्स को दिया है। एक और मैसेज मैम मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सभी मदर्स को देना चाहिए, वो सभी का ख्याल रखती हैं लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रख पाती।
1: आपको भी अपना रखना चाहिए क्योंकि बच्चे भी, अगर आप बीमार हैं तो बच्चे भी दुखी होंगे।
0: बिल्कुल।
1: और अगर आपकी अपनी हेल्दी बॉडी नहीं है तो आप दूसरे की सेवा कैसे कर पाएंगे,
0: नहीं कर पाएंगे।
1: आपको अपना भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का भी।
0: बिल्कुल, मैं यही कहती हूँ सभी मदर्स को कि मैम आप सबका ख्याल रखती हैं लेकिन आप सबसे पहले खुद को समय दीजिए, खुद से प्यार कीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो फिर आप पूरे संसार को, पूरे परिवार को अच्छे से संभाल पाएंगी। तो फर्स्ट यही करना है आपको, खुद को समय देना है, खुद का ख्याल रखना है, खुद से प्यार करना है। सेल्फ लव मोस्ट है मैम। तो श्रोताओं, अभी मैम और मैं आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ।
0: नहीं मैम, नहीं।
1: अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया है।
0: ऐसा मत कीजिए आप। आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे जरूर सीखूंगी क्योंकि मुझे भी सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं आपसे जरूर प्रेरणा लूंगी मैम। थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए, मोस्ट बिग थैंक यू।
1: राधे राधे।
0: राधे राधे आपको भी। तो चलिए एवरीवन, एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम आपसे थोड़ी और बातचीत करेंगे।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
10: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
9: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
10: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
11: कॉल 7500153841।

0: resume sounds like everyone else's?
1: सुबह-सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पॉल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़।
5: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यूनेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

ಇನ್ನಾಯ ಇದು.

0: चतुरा एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मर

0: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
1: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
0: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यहीं चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
1: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: छोड़ो
1: देखा दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझ।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के।

0: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
1: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
0: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
1: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
1: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
2: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
1: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

विकास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
0: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
1: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
0: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

विकास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।